0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: देखें, अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना एमपी छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है आत्मा रूपी दीप जगाना ही सच्ची दीपावली मनाना है। दीपावली से कुछ दिन पहले ही लोग क्या करते हैं, घर की सफाई करा लेते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि श्री लक्ष्मी के आह्वान के लिए स्वच्छता और पवित्रता जरूरी है। वे घर के कचड़े को झाड़ू से तथा कमरे के कोनों में लगे झाड़ू को भी हटा देते हैं, परंतु हम देखते हैं कि मात्र इस प्रकार की स्वच्छता से तो लक्ष्मी जी भारत भूमि पर आई ही नहीं। तभी तो आज हमारा देश दिनों दिन आर्थिक दृष्टिकोण से तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। जिस देश में काम वासना के कारण जनसंख्या में अति तीव्र वृद्धि हो रही हो, रिश्वत और चोरबाजारी के कारण सारा आर्थिक ढांचा ही बिगड़ गया हो, और मिलावट तथा बनावट का दौर हो, वहां श्री लक्ष्मी के पधारने के लिए न केवल बाह्य स्वच्छता की आवश्यकता है, बल्कि ज्ञान द्वारा मन मंदिर में झाड़ू देने की तथा ब्रश से पुराने संस्कारों रूपी झाले को उतारने की भी जरूरत है। यहाँ एक तरफ हम देखते हैं देवी देवता का अंधकार में वास नहीं, दीपावली के दिन भारत के लोग दीप जलाकर अपने मकानों और दुकानों को भी खूब रोशन करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि श्री लक्ष्मी अंधकार में नहीं आती है। परंतु वे नहीं जानते कि अंधकार से अभिप्राय जो है रात्रि का अंधकार नहीं, ना उजाले का अभिप्राय है दीपक का उजाला है, बल्कि अंधकार शब्द जो है अज्ञानता तथा उजाला शब्द ज्ञान प्रकाश का वाचक है। भाव यह है कि जब तक घर घर में हर नर नारी का आत्मा रूपी दीप नहीं जगता, उनकी बुद्धि में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होता, उनके मन से तमोगुण मिटकर सतोगुण स्थापित नहीं होता, तब तक श्री लक्ष्मी नहीं पधार सकती, क्योंकि देवी और देवता का अंधकार में वास नहीं होता। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपनी आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है आत्मरूपी दीप जगाना ही सच्ची दीपावली मनाना है। देखते हैं सर्वत्र सुख का जो राज्य है वो दीपावली के दिन लोग श्री लक्ष्मी और नारायण का पूजन करते हैं। वे बड़े चाव से श्री लक्ष्मी का इस धरा पर आह्वान करते हैं, परंतु जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण तो इस धरा पर तभी पधारते हैं जब यहाँ पूर्ण रूपेण पवित्रता हो और हर नर नारी की दृष्टि तथा वृत्ति सात्विक हो। वे तो सतयुग ही में समस्त भूमंडल पर अटल अखंड निर्विघ्न तथा अति सुखकारी राज्य करते हैं। तब ना कोई शत्रु होता है, ना कोई लड़ाई, ना दुर्भिक्ष ना होता है और ना ही दरिद्रता, ना अकाले मृत्यु और ना ही आपदाएं मनुष्य को पीड़ित करती है, बल्कि सर्वत्र सुख स्वास्थ्य और शांति का ही साम्राज्य होता है। सतयुग में दिव्यता कैसे आती है? सोचने की बात है कि कलयुग में तो संसार में कलह, क्लेश, कटुता, कर्म में भ्रष्टता और कालीमा ही होती है। तब सतयुग में इसकी विपरीत दिव्यता और सात्विकता कैसे आ जाती है? इस प्रश्न के उत्तर को समझने से मनुष्य अपने कल्याणार्थ जो है वो भी सही पुरुषार्थ कर सकता है। वास्तविकता यह है कि कलयुग के अंत में जब अज्ञान का अंधकार छाया होता है, तब सदा जागती ज्योति परमात्मा अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा की ज्योति जगाते हैं और उन द्वारा अन्य मनुष्य आत्माओं को भी प्रकाशित करते हैं। उसके फलस्वरूप ही भारत में फिर से श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य होता है। अतः दीपावली जो है वास्तव में पुरुषोत्तम संगम युग का ही स्मरणोत्सव है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है आत्मा रूपी दीप जगाना ही सच्ची दीपावली मनाना है। एक होता है शुभ कर्मों का खाता। दीपावली के अवसर पर लोग अपने हिसाब किताब के पुराने बही खाते बंद करते हैं। जो नया बही खाता खोलते हैं वह भी वास्तव में संगम युग की याद दिलाता है, जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, जब परम पिता परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान दिया तो उन्होंने अपने पुराने कर्मों और संस्कारों का लेखा जोखा समाप्त करके शुभ कर्म करना प्रारंभ किया। यहाँ पर एक और हम देखते हैं मनमुटाव कि जो मकड़ी के जाल को प्रेम की झाड़ू से सफाई करना, और एक होता है आत्मज्ञान के डिस्टेंपर से जीवन भवन की पुताई करना, दिव्य ज्ञान गंगा के जल से सारा भवन का धुलाई करना और दिव्य गुणों की बंधन मारे द्वार द्वार बंधवाना, पंच तत्व सोने का दीपक ज्ञान घृत से भरना, और होता है भावों की पाती से जो दृढ़ संकल्प की अग्नि जलाना, पवित्रता लक्ष्मी पूजन कर सुख संपन्न बनाना और शिव ज्ञान दीपक रोशन कर सब अंधकार मिटाना। एक होता है मुरलीधर की ज्ञान मुरलियां सुन और सुनाओ, और निज आत्मा की जो ज्योति है उसे जगाकर सबकी ज्योति को जगा दो। दृष्टिवृत्ति प्रवृत्ति बनाकर बहनों की लाज बचाओ। सुसंस्कारों को परिवर्तन कर उसे परिवर्तन कर क्या करना है, विजय का तिलक लगाना है और प्रेम से मीठे मधुर वचन की रोज मिठाई खिलाना है। एक होता है दिव्य गुणों को धारण करके सच्चे दीप जो चलाते हैं वही जलाना है, और इस दीपावली को का जो दीप है उसे घर घर जलाना है। अब हम देखते हैं अंत में जब संगम युग की जो शोभा की जो बेला है तो हमें चाहिए कि हम ज्ञान द्वारा आत्मा का दीप जगाए और नए संस्कारों का खाता खोले। तो यही है सच्ची दीपावली मनाना। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाती भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

107.8 FM, World Renewal Spiritual Trust का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। पति पत्नी के प्यारे से मीठे से उस रिश्ते को हम तलाश रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा आ गया है कि आज वो मिठास कड़वाहट में बदलती जा रही है, इतनी दरारें क्यों पड़ गई हैं। और इन रिश्तों में हमने ये पाया कि कहीं ना कहीं ओनरशिप हमें खुद लेनी पड़ेगी, चाहे वो रिश्ता किसी दूसरी आत्मा के साथ है लेकिन वो मुझसे होकर गुजरता है, इसीलिए दायित्व मेरा हो जाता है कि उस रिश्ते को मैं क्या मोड़ दे रही हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को थोड़ा और छानते हैं, खंगालते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, उस रिश्ते को हम देख रहे हैं अब, जो कि कहा जाए कि नींव है, हर घर की नींव होती है या समाज की नींव भी मानी जाती है, एक गृहस्थ जीवन, एक पति पत्नी का जीवन, और वही आज कहीं क्वेश्चन मार्क पर है। आज तो वक्त ये आ गया कि लोग कहने लग गए हैं कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज ऑब्सोलीट, इट शुड बी फिनिश्ड, लेकिन अभी भी धुरी वही है, पहली सीढ़ी उसे ही माना जाता है। इवन सक्सेस का भी या सफलता की भी बात करते हैं, उसे हमने कई रूपों में देखा, कई तरह से देखा कि किस तरह से रिस्पेक्ट को हम अलग तरीके परिपेक्ष में देख रहे हैं। और हमने पिछली बार बात की थी कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन को एक बार थोड़ा सा और हम छूना चाहेंगे, क्योंकि हमने पिछले कड़ी में उसको काफ़ी उस पर बात की थी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जहां हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें हर बार शायद हम अपनी आवाज़ को ही सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। वॉट इज़ एग्जैक्टली मेंट बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन?
1: इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ दूसरे की बात को सुनना इस भाव से कि दूसरा भी सही कह रहा है,
0: अपने परिपेक्ष में।
1: अपना थिंकिंग पहले बिल्कुल रेडी कीजिए, अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए फॉर दैट कम्युनिकेशन, और फिर उसी पर्सपेक्टिव से सुनिए कि वो अपने पर्सपेक्टिव से राइट कह रहे हैं, तो उस भाव से उस बात को पूरा सुनना। और कभी भी कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं ना ब्रेक डाउन, वो कभी नहीं होना चाहिए। घरों में कई बार होता है आर्ग्यूमेंट हो गई, डिस्कशन हो गई, झगड़ा भी हो गया शायद, फिर उसके बाद बोलचाल बंद हो जाती है। अब किसी के घर में कुछ घंटों तक बंद रहती है, लेकिन कई परिवारों में ऐसा

0: पाया जाता है स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कि कई दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती है, मतलब बिल्कुल बोलचाल नहीं है. एंड इसमें क्या हो रहा है कि ईच इज वेटिंग कि दूसरा आकर पहले बात करेगा, क्योंकि दोनों यही सोचते हैं कि दूसरे की गलती है, तो जिसकी गलती थी उसी को तो आकर बात करनी चाहिए. तो दोनों वेट करते रहते हैं एंड इस प्रोसेस में कई दिन, कई बार एक एक महीना. तो जैसे ही बात हुई, डिस्कशन हुई, भले बड़ा से बड़ा आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन इट्स फाइन, स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू. वी हैव टू, योर इट इज अ हैव टू, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, हैव टू.
1: एंड वी वॉन्ट टू ऑल्सो,
0: या इवन इफ, आई मीन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू, लेकिन अगर आपके परिवार के लिए वो ही हेल्दी है. क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन होता है ये हमारे आपस के रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट करता है और बच्चों पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. क्योंकि इतने दिन तक बात नहीं करना ये बहुत अनहेल्दी,
1: वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, बहुत स्ट्रेनुअस भी हो जाता है. पूरा माहौल इतना स्ट्रेनुअस रहता है कि आप भागते हैं.
0: और इसमें कई बार ये भी हो जाता है कि पहले कौन बात करेगा. और इस प्रोसेस में एक्चुअली इतने दिन गुजर जाते हैं. तो आई थिंक इन दिस ब्यूटिफुल क्लोज रिलेशनशिप हमें वेट नहीं करना चाहिए कि दूसरा बात करे. मेरी गलती थी या सामने वाले की गलती थी, हाउ डज इट मैटर? दिस इज नॉट ऑफिस. इवन ऑफिस में अभी हमें इस तरह की चीजों पर नहीं वेट करना चाहिए, लेकिन ये तो परिवार है हमारा.
1: और जितनी हम देर करते जाएंगे उतनी रिजेंटमेंट बढ़ती
0: जाती
1: है, और कहानी अपने अंदर हम कुछ ना कुछ
0: और उतनी नेगेटिव एनर्जी हम एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं. हार्मनी इन रिलेशनशिप हम कहते हैं, हार्मनी, यू नो, इसको हम लोग बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कि मैंने हार मानी, कोई बात नहीं. हार मानी, जहां एक ने हार मानी तो रिलेशनशिप्स में वो हार्मनी हो जाएगी, नहीं तो.
1: लेकिन अगेन हार मानना यहीं से पड़ेगा. ये एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, एक बार अगर टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ता, अगर गांठ पड़ जाए तो वो गांठ ही पड़ती है. लेकिन हर बार हम ये कहते हैं कि रॉन्ग बिलीफ पे हम अपना जो है थॉट क्रिएट करते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, डू यू बिलीव इन दैट?
0: जस्ट वन थॉट अवे आपका वो धागा खुलना, जस्ट वन थॉट अवे. इनफैक्ट हमें किसी का फोन भी आया और उन्होंने यही एपिसोड्स देखकर और कहा कि हमारी तो इतने साल से रिश्ता खराब है, यू नो, बिल्कुल ही हम एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल अब वापस आना? वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि कितना इजी है वापस वो नजदीकी लाना, क्योंकि वो हमें दूसरे को नहीं परिवर्तन करना ना. तो वन थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे, बट यू हैव टू डू इट एंड सी इट. इस पर अगर हम सोचते रहेंगे कि कैसे नहीं हो सकता, इतनी बिटरनेस थी, इतनी दूरियां थी, कैसे हो सकता है, नहीं. वन थॉट एंड इट्स डन, एब्सोल्युटली.
1: अगेन वही एक थॉट, एक माइंडसेट का शिफ्ट जो है.
0: अभी तक हम उनको गलत समझ रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को गलत समझ रहे हैं. बस वो गलत को सही आप जब कर लेंगे और इंटरनली कन्विंस होकर, ऊपर से बोलने के लिए नहीं कि नहीं वो अपने दृष्टिकोण से सही थे, आपका धागा बिल्कुल सुलझ जाएगा, वो गांठ खत्म हो जाएगी. क्योंकि जब आपको लगा ये सही थे तो फिर आपके अगेंस्ट कोई, मेरे अंदर मन में कोई हैवीनेस नहीं आ सकती है. And everything is sorted out.
1: That's beautiful. But आप समझ लेंगे, सामने वाला समझेगा या नहीं?
0: No, only one person needs to do it first. अगर हम वेट करते रहेंगे कि दूसरा भी कब करे, चलो मैं तो कर लूं, लेकिन वो तो नहीं करेंगे. एक ने ही करना है, दूसरा तो वैसे ही रेडी बैठा है. एक्चुअली दोनों रेडी बैठे होते हैं, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स अ गुड रिलेशनशिप, लेकिन वो ये कौन पहले करे. और हर एक ये सोच रहा है कि मैं करूं तो पता नहीं वो रेडी हो या नहीं. तो एक जना करके देखो, आप करें, दूसरा रेडी बैठा, जस्ट वेटिंग टू कम फॉरवर्ड, जस्ट मूव योर हैंड फॉरवर्ड एंड आपको वो दूसरा हाथ वहां से आता हुआ दिखाई देगा. बिल्कुल
1: सिस्टर शिवानी, आज के इस दौर की जो बात हम कर रहे हैं कि जब घर से बाहर हम ज्यादा वक्त गुजार रहे होते हैं या कहीं ना कहीं वहां बाहर रिलेशनशिप ज्यादा आसान लग जाता है क्योंकि वहां इतना बोझिल हो चुका होता है, तो ये सबसे ज्यादा देखा गया है, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दिया जा रहा है. समाज के हर एस्पेक्ट में हमें वो नजर आ रहा है. एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों इतना ज्यादा है, ये क्यों इतना सहज हो गया है, हमने सारे आदर्श सारी मान्यताएं क्यों ताक पर रख दी? और दूसरी बात ये कि वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसे कभी भी मैरिज में कन्वर्ट करने वाली बात नहीं आती है. It has to be retained. Marriage is being retained. क्यों हम इतने हो गए हैं कि दो चेहरे ओढ़कर ही हम रहना चाहते हैं? क्या हम इतने कहीं depleted हैं?
0: हाँ, एक तो आत्माएं हम बहुत कमजोर हो गई हैं वर्तमान समय. और क्यों हमारा झुकाव दूसरी तरफ बाहर जा रहा है? क्योंकि हमने एक इमेज बनाई है.

0: सी वी सेड एवरी रिलेशनशिप हम अपनी कॉन्शियसनेस में एक इमेज क्रिएट करते हैं. तो फॉर अ हस्बैंड और फॉर अ वाइफ स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके माइंड में एक इमेज है कि मेरी वाइफ इस तरह से होनी चाहिए और द अदर वे अराउंड. अब व्यक्ति कोई और उसमें होंगे प्लस एंड माइनस. तो कुछ चीजें आप एक्सेप्ट तो कर लेते हैं एंड आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, चल रही है ठीक से, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी उनको चेंज करके अपने इमेज की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा उतना ज्यादा रेडी नहीं है चेंज होने के लिए. अब कहीं ना कहीं चलते हुए अगर आपको कोई मिल जाता है जो आपकी इमेज के साथ ज्यादा मैच करता है,
1: पूरा वो भी नहीं करेगा,
0: पूरा तो कोई भी नहीं करेगा, पूरा तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन कोई एक मिल जाए ऐसे व्यक्ति बाहर जो आपके इमेज से मैच करता है, तो देन यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, यू नो, बिकॉज अच्छा ये था मेरे माइंड में एक्चुअली, दिस इज हाउ माय वाइफ शुड बी और दिस इज हाउ माय हस्बैंड शुड बी. एंड तब थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाता है. हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस की जो इमेज है उसके साथ वो हो रहा है. हम ज्यादातर चाहते हैं कि हमें ये सारा रिलेशनशिप हो भी रहा है क्यों कॉम्प्लिकेटेड, हम लोगों से खुशी चाहते हैं, हम लोगों से प्यार चाहते हैं. हमने पहले ही देखा कि आत्माएं सारी बहुत कमजोर हो चुके हैं. सबसे पहले ये बिलीफ सिस्टम चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें किसी और से खुशी मिलती है या खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है. नाउ द हस्बैंड वांट्स हैप्पीनेस फ्रॉम द वाइफ, ही डजंट रियलाइज कि हैप्पीनेस इज माय ओन क्रिएशन, आई कैन क्रिएट इट. अब अगर वाइफ से नहीं मिली वो हैप्पीनेस, इट मीन्स स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप वो उस हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी और से मिलने से शायद वो उस हैप्पीनेस को क्रिएट कर पा रहे हैं. और उनका बिलीफ ये बन रहा है कि मुझे इनसे खुशी मिल रही है, मिल उनसे भी नहीं रही है, ये सिर्फ ये है कि मैं उस व्यक्ति से मिलने से अपने अंदर वो खुशी क्रिएट कर पा रहा हूँ. बट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रिएटिंग इट एंड आई कुड हैव क्रिएटेड इट इवन हियर. But I'm creating it there, and then I start thinking that I'm getting it from that person. And तब हम कहते हैं जो मुझे आपसे नहीं मिला
1: वो वहां से मिल रहा है.
0: मिला
1: एक्चुअली अपने आप से ही,
0: मिला अपने आप से,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड हो गया कि मेरे इमेज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जो मुझे मिल गया.
0: राइट तो मिला अपने आप से है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है. मैं अगर इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहूँ तो मैं इसमें रहकर भी उसको क्रिएट कर सकता हूँ. बट अगेन देन आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ माय मैकेनिज्म वर्क्स. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, एक तो आपका रिलेशनशिप चूज करके हुआ, इट्स आउट ऑफ चॉइस, एंड सम रिलेशनशिप्स विच आर नॉट विद चॉइस. अब ये जो मैरिज का रिलेशनशिप है ये तो ऑलरेडी बन चुका है ना, उसके बाद आगे परिवार भी है, तो ये रिलेशनशिप को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं यू गॉट अ चॉइस टू ऑल्सो स्पेंड मोर टाइम विद समबडी एल्स, तो आपने वो भी करना शुरू कर दिया. एंड इट स्टार्ट्स विद जस्ट यू नो यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद अनदर पर्सन. क्यों? क्योंकि शायद आप अपनी वो वाली, अगेन दिस इज कमिंग बिकॉज घर पे लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है. अगर मैं आपसे अपनी कोई बात शेयर करना चाहता हूँ लेकिन पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे कोई और चाहिए जिससे मैं वो शेयर करूँ. सोचते हैं कि मुझे कोई और चाहिए, तो फिर हम किसी और से शेयर करना शुरू कर देते हैं. अब दूसरे को तो डजंट हैव टू स्पेंड द लाइफ विद मी, तो वो हमें एक्सेप्ट करता रहता है, करता जाता है, करता जाता है. और जो हमें एक्सेप्ट करेगा ये नॉर्मल है, आत्मा का संस्कार, कि जो हमें एक्सेप्ट करेगा हम उसकी तरफ ड्रॉन होते हुए चले जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई वी फील एक्सेप्टेंस इज द फंडामेंटल ऑफ एवरी रिलेशनशिप. अगर आप घर के अंदर, इवन जो आपने कहा था ना पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चे फ्रेंड्स की तरफ क्यों चले जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है, पेरेंट्स से नहीं मिलता है. अगर पेरेंट्स से मिले फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो बॉन्डिंग होगी ये कभी नहीं टूटेगी. सेम विद द हस्बैंड वाइफ, यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, किसी और से वो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, अपने आप झुकाव हो जाएगा. फिर आप अपनी हर बात वहां शेयर करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वहां होगा. और जहां वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुआ तो घर वाला जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा कमजोर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा. बट इसमें भी बहुत इजी है ऑपोजिट पर्सन के लिए. अगर आप चाहें तो आप अपने रिलेशनशिप को फिर से जोड़ सकते हैं. डू नॉट गिव अप क्योंकि ये जो जुड़ता है बाहर रिलेशनशिप, ये बहुत एक मोमेंट्री रिलेशनशिप है. ये सिर्फ इसको एक ये फ्रेंडशिप है. ये एक फ्रेंडशिप है एंड इट्स फाइन. ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है. अगर इसको हम वो राइट फाउंडेशन पे ले आएंगे तो वो एक फ्रेंडशिप ही रहेगी. फ्रेंडशिप इज फाइन, दिस विल ऑल गेट बेटर. हम ज्यादातर डिस्टर्ब इस चीज से हो जाते हैं कि हम उस रिश्ते को कैसे तोड़े. हम ये नहीं समझते हम इस रिश्ते को कैसे जोड़े.
1: जो ये पुराना रिश्ता था, जो रिश्ता था ऑलरेडी, जो एक्चुअल में रिश्ता है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा उसको जिया होता है और एक पूरा परिवार खड़ा किया है. सो दैट इज माई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एक्चुअली.
0: राइट, बट व्हेन वी कम टू नो कि ईदर माई हस्बैंड और वाइफ इज हैविंग अ रिलेशनशिप आउटसाइड, ऑल माई एनर्जी, फर्स्ट आई हेट द पर्सन, सेकेंड आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया. यू नो, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया तो आप एक क्रिमिनल हैं, आपने ये गलत किया. तीसरा पूरा थिंकिंग ये होगा कि वो रिश्ते को कैसे तोड़ा जाए. क्योंकि हमने ये सोचा कि वो रिश्ता टूटेगा
1: तभी ये जुड़ेगा,
0: तब ये घर आ जाएंगे वापस. मतलब द पर्सन विल बी ड्रॉन बैक
1: टू अस. ऑप्शन नहीं रहेगी.
0: दैट्स नॉट द ट्रूथ. वो भले रिश्ता टूट जाए, आप कुछ भी करके तोड़ भी दें उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जुड़ गया जो टूटा हुआ है. क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ क्रैक है, तब तो कहीं और जुड़ा. तो नेवर फोकस योर एनर्जी ऑन द डिस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ इट. हमारी सारी एनर्जी डिस्ट्रक्शन पार्ट पर होती है, उसको कैसे तोड़ा जाए. इट शुड ओनली फोकस ऑन जो है फाइन, इसको कैसे जोड़ा जाए. वील हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमें हमेशा लगता है कि उनकी गलती थी इसीलिए दे आर हैविंग दिस रिलेशनशिप, आई हैव टू रिमेम्बर दैट इफ माई हस्बैंड और वाइफ goes into a relationship, problem is here. क्यों गया व्यक्ति घर की तरफ छोड़कर दूसरी तरफ क्यों जाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ वो बॉन्डिंग नहीं थी ना. बॉन्ड एक ही जगह जुड़ेगा. अगर यहाँ जुड़ा हुआ होता ठीक से फिर तो दूसरी तरफ ना जाता. तो ये बॉन्डिंग को क्यों ना स्ट्रॉन्ग कर ले. अगर कुछ हुआ है, the person has gone and had another friendship outside, no problem. हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए they found a need to talk to somebody else. Can I heal this back? And now, what is needed is instead of nafrat dena, itni, you know, upset hokar wo negative energy throw karna, aapko bilkul opposite dena padega. Kyunki aap wo bond ko, if you wanted to work. Again, isme aapke paas do choice hai. Ya to aap jo rishta thoda sa bana hua hai, usko puri tarah se tod de. But agar jodna chahe, to easy hai. बहुत इजी है, लेकिन अंदर से बहुत क्लीन ये थॉट चाहिए, एकदम क्लीन, विदाउट एनी बिटरनेस, कि इट्स जस्ट बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू क्रिएट दैट बॉन्डिंग, नाउ आई विल क्रिएट इट. मैं शायद उतना वो रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं दे पाई तो अब वो एनर्जी देना. लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम उस टाइम इतनी नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर कि वो रिलेशनशिप और दूर हो जाता है. तो हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा, एक चीज कमजोर है, एक कड़ी कमजोर है, उसको स्ट्रांग करना है तो उसको और ही क्यों खींच रहे हैं. उसको स्ट्रांग करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो उसको डालो. एनीवन ट्राइज दिस इट विल वर्क.
1: लेकिन वो व्यक्ति जो किसी और रिलेशनशिप में है वो वापस कैसे आएगा, क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है वहां.
0: मेरा थॉट ही ये नहीं होना चाहिए कि वो कैसे टूटेगा. से अपनी एनर्जी को हम एक ही जगह लगा सकते हैं. अगर हम अपनी एनर्जी को इस एंगल पर लगाएं कि वो रिश्ता कैसे टूटेगा, वो रिश्ता कैसे टूटेगा, वो वापस कैसे आएंगे, नो. मुझे क्या देना है, आप देते जाइए वो खिंचकर वापस आ जाएंगे. क्योंकि इट्स अ लॉ कि जहां वो पॉजिटिव एनर्जी, जहां वो प्यार जाएगा, वो आत्मा वापस खिंची हुई आ जाएगी. इट इज डेफिनेट. लेकिन इट हैज टू बी वेरी क्लीन एंड वेरी प्योर एंड वेरी पॉजिटिव. ये जो विच इज लिटिल प्रैक्टिस, ये चाहिए डेफिनेटली कि आप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहिए कि आपके अंदर बिल्कुल बिटरनेस नहीं हो, आपके अंदर ये थॉट नहीं हो कि पाप कर दिया है, यू नो, ऐसा कुछ कर दिया है. आपकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे. रिस्पेक्ट थी कि आई थिंक आई लाइक दिस पर्सन एज द पर्सन इज, वो इंटैक्ट रहे. गिव सो मच लव, जस्ट वेट एंड सी, मैजिक विल हैपन. नॉर्मली बहुत लोग वापस घर की तरफ आना चाहते हैं लेकिन दे आर नॉट वेरी श्योर. कि उनको घर पे वो वायुमंडल वैसा मिलेगा, परिवार से वो एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली घर में सारे लोग उनकी तरफ इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जैसे कि पता नहीं क्या करके आए हैं। तो वो दृष्टिकोण इतनी नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ फेंकता है कि वो उस घर से पास आने की बजाय और दूर हो जाते हैं। तो घर का वातावरण इतना वेलकमिंग हो कि कुछ भी नहीं हुआ है, यू आर फैमिली एंड वी आर फैमिली एंड एवरीथिंग इज फाइन, that person will want to come back home, definitely.
1: That's the most difficult thing, you know, to accept. That's what I'm saying, that even if you accept verbally,
0: one thought away, one thought away to accept, kuch nahi hai,
1: it will happen again, you know, these
0: are questions. I want to make this relationship work. Mujhe, I want to make this relationship work and I will accept. Jaise hum sara din mein choti moti bahut sari galtiyan karte hain, एक गलती और हो गई थी, दैट्स ऑल, बट आई वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, आई विल बी वेटिंग, एब्सोल्युटली। एंड उसके बाद जब वो व्यक्ति वापस घर की तरफ आ जाते हैं, इट शुड बी वेरी पॉजिटिव, ये नहीं, यू नो, कई बार हमने देखा कि द वाइफ फॉरगिव्स द हस्बैंड, लेकिन फिर वो एक्सपेक्ट करती है कि यू नो, जैसे कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है आपके ऊपर, आपको फॉरगिव करके, नो, and then she'll keep on rubbing it in, you know, bahar bahar rubbing karenge ki nahi aapko, aapne ye kiya tha, aapne ye kiya tha,
1: forget to nahi hua,
0: ha, to bar bar yaad dilane ki koshish karegi ki main kyon trust karu, main kyon trust karu aapne, to so that is damaging. Aap jod rahe hain ek rishte ko, actually us incident ko uske baad thought mein bhi aana nahi chahiye,
1: because lekin wo victim banne ka jo hamara
0: wo hum apna kaam nikhwane ke liye karte hain. If I want to get, you know, things my way, तो मुझे दूसरे को नीचे गिराना पड़ता है ना, तब तो मेरी सुप्रीमेसी हो जाती है उसके ऊपर। तो जैसे ही दूसरे की गलती दिखाकर दूसरे को नीचे किया, तो मेरी बात मानी जाती है। तो I use it as a weapon, which is very harmful.
1: And in fact, it's much more important not to remember, but it's the most difficult part. But again, when you said about healing, you know, meditation is the only process we know which actually can heal, because I think somewhere the person who has been waiting needs to heal more.
0: Absolutely.
1: You know, she has to be, or he, whoever, needs to be much, much more stronger themselves.
0: Right, तो उन्हें ये जब realize हो जाएगा ना कि it's okay, it's again a karmic account which pulled. एक karmic account ही था जो अपनी तरफ खींच के ले गया, वापस आ गए हैं। और जितना हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, अपनी शक्तियों को फिर से बढ़ाएंगे, तो जो चीज लगती बहुत मुश्किल है, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती नहीं है। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये साउंड कर रही होंगी शायद कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, और ये एक्चुअली डिस्कस करने जैसी भी बात नहीं है, इसको बस कर दीजिए। दे आर सो सिंपल व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। करना बहुत मुश्किल नहीं होता, यहाँ स्वीकार कर लेना सिर्फ मुश्किल होता है।
1: सिस्टर शिवानी, बात वही आती है कि जब कोई भी बाहर से किसी रिश्ते से लौटता है, तो क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं उसे स्वीकारने को?
0: Do we have a choice? I have to ask myself that. That's what. मुझे अपने आप के साथ कैसे फील करना है, और मैं इस रिलेशनशिप को या इस रिलेशनशिप में कितना और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, दैट पर्सनल डिसीजन आई विल टेक। Forgiving or not forgiving is not something very big I'm doing. बात सिर्फ ये है कि if I say I'm forgiving, तो सबसे पहले मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपकी की हुई किसी बात को जो मुझे तकलीफ देती है, अगर मैं उसको होल्ड बैक करके रखती हूँ, तो मेरा वो मनन उस पर चलता रहता है, तो वो मुझे तकलीफ देती है। और अगर मैं उसको लेट गो कर सकती हूँ कि ठीक है, मेरे लिए ये एपिसोड एक था जो कि फिनिश हो गया, नाउ आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, इट्स ओवर, तो मैं अपने आप को हल्का कर सकती हूँ। तो इट्स मोर अबाउट मैं अपने आप को कितना पेन देना चाहती हूँ। So it's forgiving basically, whenever we forgive somebody else for the biggest thing that they've done, it's forgiving myself. Because when I say I've forgiven you, means I have just taken it out from here. And thodi der, roz, apne aap ko empower karne ke liye samay nikale. Aur ye bahut zyada expect nahi kare ki jo vyakti wapas ghar aaya hai, वो बहुत ज्यादा आपके लिए कुछ कर सकेगा उसमें, क्योंकि वो खुद बहुत दर्द से गुजर रहा है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, क्योंकि यहाँ गिल्ट है, फिर यहाँ लग रहा है कि सब लोग सोच रहे होंगे मैं गलत करके आया हूँ, फिर एक जो बाहर एक अटैचमेंट हो गई थी तो अटैचमेंट से किनारा करके आए हैं
1: तो वहां का
0: वो दर्द है, फिर उस रिश्ते को ठुकरा दिया वो गिल्ट है, सो मेनी थिंग्स एंड प्लस अपने अंदर कॉन्शियसनेस कि राइट किया या रॉन्ग किया, किसके साथ राइट किया, इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट पर्सन, अब उसको क्या चाहिए, सो मच हीलिंग पावर। उससे उस हालत में हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये कुछ तो करें, इतनी गलती करके वापस घर आए, ये इस रिश्ते को जोड़े, नहीं वो उस हालत में नहीं है, वो बिल्कुल जैसे डिस्चार्ज टोटली गिरे हुए हैं यहाँ पे मेंटली, सो मच हीलिंग इज नीडेड, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, यस वी आर इन लॉट ऑफ पेन बट द पर्सन हु हैज कम बैक इज इन मच मच मच मोर पेन बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज्यादा और फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं, तो ही नीड्स लॉट ऑफ ही और शी needs lot of love and healing. तो उसके लिए हमें खुद को empower करना पड़ेगा.
1: Meditation
0: उसमें बहुत मदद करेगी.
1: Meditation की technique एक बार फिर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा एक और सवाल कि जब हम बाहर कहीं pull है, attraction है, जैसे कि आपने अभी कहा कि उस रिश्ते में भी जब हम जा रहे होते हैं, जैसे आप वापस लौटे हैं तब भी guilt है, जब जा रहे होते हैं, जब वो pull है, तभी तो कहीं ना कहीं हमें मालूम होता है
0: गिल्ट है,
1: कुछ गलत करने जा रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पता है कि हम गलत करने जा रहे हैं, लेकिन वही है ना, जैसे जब कोई कुछ भी हम काम करने जाते हैं हमें अंदर एक आवाज तो आती है, आवाज भी मतलब क्या, मन में दो प्रकार के थॉट्स चलते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे डिसाइड करके यू डोंट गो इनटू अ रिलेशनशिप, वो शुरू कैसे होगी, धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे ज्यादा कुछ शेयर करना, फिर और ज्यादा बहुत सारी बातें शेयर करना, दैट्स हाउ अ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, यू डोंट गो एंड हैव अ बॉन्डिंग लाइक दिस, दैट्स नॉट अ बॉन्डिंग, दिस वी आर टॉकिंग ऑफ अ बॉन्डिंग, तो वो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है, तो शायद हमने इंटेलेक्ट को बहुत ज्यादा उस दौरान यूज नहीं किया, और इंटेलेक्ट अगर कहीं ना कहीं जजमेंट दे भी रही थी कि ये रॉन्ग है, लेकिन हमें वो चीज अच्छी लग रही, और सोल कॉन्शियसनेस जब हमें समझ में आता तो रिलेशनशिप्स हैं क्या, आत्मा का आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज, वी विल नॉट हैव टू यू नो देन कंपार्टमेंटलाइज इट कि दिस रिलेशनशिप एंड दैट रिलेशनशिप, इट्स अ सोल टू सोल एक्सचेंज एंड प्योरिटी, मैं आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप प्योरिटी है, तो वो प्योरिटी इतनी इमर्ज होती जाएगी कि इम्प्योरिटी का ट्रेस भी थोड़ा सा फर्निश हो जाएगा, लेकिन रोज की अपनी चेकिंग, सवेरे इंट्रोस्पेक्शन, टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड टॉकिंग टू गॉड डेफिनेटली, एंड रात को सोने से पहले अगर आप अपनी दिनचर्या को चेक करें तो आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म हो जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े, ये हो नहीं सकता, क्योंकि रोज की चेकिंग हो रही है ना, पछताते तो हैं हम बहुत समय बाद कि ये मेरे साथ क्यों हो गया,
1: क्योंकि वो निकल चुका होता है,
0: यू नो अ लॉट ऑफ पीपल दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप, दे नो यू नो इट्स गॉन रॉन्ग एंड देन दे विल से बट आई डोंट नो व्हाई आई गॉट इनटू दिस रिलेशनशिप,
1: हियर आई वांट टू आस्क यू बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग, देयर माइट बी मेनी पीपल हु आर स्टिल इन्वॉल्वड, दे वांट टू कम बैक, व्हाट टू डू, हाउ टू गेट आउट,
0: वन थॉट अवे अगेन, if they want to come back, agar wo mentally bilkul ready hai to come back, matlab kya, ek attachment hai jisse apne aap ko kinara karna padega aur wapas jo apni zimmedariyan hain, jo sambandhiyan hain, unki taraf wapas aana hoga,
1: aur kitna kya jiske sath apne sambandh joda tha,
0: again you will have to talk and discuss it out, but it is in the long run beneficial even for the opposite person na, to aap koi kisi ke sath galat nahi kar rahe, lekin it is all because ye rishte ka bhi to koi future nahi hai, bilkul koi future nahi hai, to jab already pata hai कि जिस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, जिसमें अभी शायद लग रहा है कि बहुत अच्छा है लेकिन आगे जाकर दर्द ही दर्द है, तो उसको और ज्यादा बढ़ाने का कहां तक बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो उसको अगर आप अभी भी रियलाइज कर लेते हैं, टॉक इट आउट एंड सॉर्ट इट आउट बिकॉज इट्स पॉसिबल, एंड आप खुद बहुत हल्के हो जाएंगे उसके बाद, वो व्यक्ति भी बहुत हल्के, मे बी अ लिटिल पेन, यस हो सकता है कि थोड़ा समय एक पीरियड बीच में आएगा जो बहुत यू नो दर्द वाला होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो फिर भी बेनिफिशियल होगा, इवन फ्रॉम दैट पर्सन फ्रॉम होम यू हैव टू ब्रेक अवे, इवन फॉर दैट पर्सन इट इज बेनिफिशियल।
1: सचिन शिवानी, आज वो पर्सपेक्टिव हमने लिया जिससे कहीं ना कहीं पूरी नींव समाज की हिली हुई है, और इतनी आसानी से एक थॉट, हर बार आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक संकल्प है जो वापस ला सकता है उस नींव को उतना ही पुख्ता कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: परिवार की इस धुरी पर हमारी सारी जिंदगी घूमती है। वो रिश्ता जो हमें सभी रिश्तों से प्यारा लगता है, हम उसके लिए अपनी जान लगा देते हैं, उस रिश्ते को जीवन भर तलाशते भी रहते हैं, और जब उस रिश्ते में हम जी रहे होते हैं तो शायद खुद ही इतनी गलतियां कर जाते हैं कि उस रिश्ते में ही दूरियां बढ़ जाती हैं। बातचीत का दौर, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी मत छोड़िए अपने किसी भी रिश्ते में। और अगर कहीं ट्रस्ट की बात है तो वो आपकी अपनी फैकल्टी है, आपको अच्छा लगता है कि आप ट्रस्ट करें, ये सब बातें भी याद रखें। कहीं बाहर कोई ऐसा पुल है, कोई ऐसा अट्रैक्शन है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो उसे एक कार्मिक अकाउंट समझ के ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और एक दोस्ती में बदला जा सकता है। जो जिम्मेदारी हमारी अपनी है उस परिवार के प्रति जो हमने खुद खड़ा किया है, वो जिम्मेदारी हम अपनाएंगे, यही एक शक्तिशाली आत्मा का स्वरूप है, यही उसकी पहचान है। कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3445 9999 3446, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। रिश्तों को कुछ नए पैमानों पर देखेंगे, एक नए अंदाज में देखने की कोशिश हम करते रहेंगे। मुलाकात होगी अगली कड़ी में। दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये है। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। अगर आपसे मैं आज ये सवाल पूछूं, तुझे क्या चाहिए जिंदगी, तो हो सकता है आपके पास ये जवाब हो कि मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में मुझे लगता है ज्यादातर हम में से ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे सुख चाहिए। हम इस पर कई बार बातें कर चुके हैं कि क्या सुख हमें बाहर से मिल सकता है, क्या खुशी हमें बाहर से मिल सकती है, क्या खुशी अपने अंदर ही नहीं है, अंदर कैसे तलाशें। और जो हम पूरी ये चर्चा कर रहे हैं उसमें पिछली बार हमने ये बात की थी कि एंगर यानी कि गुस्सा जो है उसके क्या कारण हैं और किस तरह की सिचुएशंस में हम एंगर को जस्टिफाई करते आए हैं। एंगर एक वेपन जरूर है लेकिन उससे कभी कोई मंजिल नहीं मिलती है, कभी भी वो जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं दे सकता है। और आज बात करेंगे खुशी की कि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जान पा रहे हैं कि हमें खुशी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमें खुशी चाहिए। कैसे मिल सकती है वो खुशी, क्या है खुशी, हैप्पीनेस कैसे डिफाइन की जा सकती है और कौन से रास्ते पर चलकर हम उसे पा सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सुशील शिवानी। अ वेरी वार्म वेलकम।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जो अगर हम पिछली कड़ी में देखें तो हमने ये डिफाइन किया था कि एंगर के कारण क्या है और कहीं ना कहीं जो हम वेपन के रूप में, एक शस्त्र के रूप में उसे देखते थे वो नहीं है, उसे कभी हमें मंजिल नहीं मिलती है। एंगर का ही एंटीडोट या एंगर से दूर जाने का एक तरीका हैप्पीनेस है, ये आपने कहा था। तो क्या हम हैप्पीनेस को डिफाइन कर सकते हैं आज के इस वक्त में, क्या सुख को या खुशी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ?
1: मैं समझता हूँ कि डेफिनेशन में इतना जाना नहीं चाहिए। देखो, आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, प्यार की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है या प्यार इम्पोर्टेंट है?
0: प्यार।
1: आपको प्यार चाहिए? डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन कुछ भी हो, प्यार मिल गया संतुष्ट होंगे जीवन में। तो वैसे ऐसे ही है कि सुख की डेफिनेशन में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। बस जनरल बात पता होनी चाहिए हमें, ध्यान में तो ये रखना चाहिए कि कौन सी बात आपको सुख देती है वह एक और इश्यू है, परंतु वह सुख सदा के लिए टिकता है या नहीं। या मुझे थोड़ा समय 2 घंटा सुख का अनुभव हुआ फिर दुख का अनुभव हुआ, ऐसी स्थिति हमारी न रहे। और एक जो लेवल है वह सदैव आनंद की स्थिति, मन आपका हल्का है, शांत है, खुशनुमा है, इस प्रकार की स्टेज आपकी जब टिक जाए, एक जिसको परपेचुअल हैप्पीनेस कहे, वह सबसे बेस्ट है।
0: एटर्नल हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं, हमेशा हम सुख का अनुभव
1: करते रहे।
0: लेकिन सिस्टर शिवानी, बात उसी पे आती है कि आज जब हम सब कुछ तलाश रहे हैं, जब हमारी सारी पुरानी धारणाएं जिसपे हम ये कहते थे कि इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे खुशी मिलेगी, अब जब वो सारी मान्यताएं तोड़ने पे आए हैं, हम नए बिलीफ सिस्टम्स को ले रहे हैं या नए एहसासों को ले रहे हैं, ऐसे में जो जो बातें मैं अभी तक मान रही थी कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, क्या मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, अपना परसेप्शन चेंज करना है? खुशी बेसिकली, अगेन डेफिनेशन वाली बात नहीं, लेकिन एक एहसास है, वो एहसास कब तक कायम रहेगा और क्या वो सही मायने में मैं उसे समझ पाऊंगी?
2: हैप्पीनेस जैसे भाई साहब ने कहा, एक एहसास, एक फीलिंग है, एक एनर्जी है। जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, एक वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। यू नो, ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है, ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता। बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई

0: इट्स माई चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट.
1: और अगेन बात वही आ जाती है कि फीलिंग कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय थॉट. सो फाइनली एवरीथिंग एक्चुअली यू नो अगर हम देखें तो कम्स डाउन टू थॉट. तो खुशी की जो बात की है, जो हमने फीलिंग की बात करी है, वो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करते हैं. थॉट्स जनरेट जो होते हैं. अब रॉन्ग बिलीफ्स पे हम जी रहे थे, वो हमारे थॉट्स जनरेट करते थे. बिलीफ्स बदल रहे हैं, नए बिलीफ्स लेकर आते हैं. तो क्या वो नए बिलीफ्स कॉन्स्टेंटली मेरे पुराने बिलीफ्स के साथ टकराएंगे और मैं उनको ओवरपावर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? और क्या मैं नए जो थॉट्स आ रहे हैं, क्या मैं वो भी सही हूं, सही लेकर चलूं? बिकॉज अगेन वी हैड टॉक्ड अबाउट इट दैट द थॉट्स आर ग्रे. देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट थॉट. कोई एक प्योर नेगेटिव या प्योर पॉजिटिव थॉट नहीं होता है. तो वो ग्रे में होता है. तो तभी मुझे लगता है कि वो फीलिंग्स जो है वो प्योर हैप्पीनेस या प्योर दुख वाली नहीं आती है, वो कहीं बीच में ही रह जाती है, कभी खुशी कभी गम वाली.
0: नहीं, लेकिन वो डिपेंड है ना, आप कितनी देर उस तरह की थॉट को क्रिएट कर सकते हैं और कौन सी चीज वो खुशी आपसे. जैसे हम कहते हैं अभी हम खुश थे, अभी ये लैपटॉप खरीदा, आई वॉज वेरी हैप्पी. उतनी देर में आप सामने से आए, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब खुशी नहीं है, अब गम है. ये भी मैंने ही क्रिएट किया था, ये भी मैंने ही क्रिएट किया. तो इट्स ऑल माई क्रिएशन. तो इट्स नॉट कभी खुशी कभी गम, बट इट इज लाइक आई हैव अ चॉइस कि मुझे कितनी देर के लिए वो अच्छी वाली थॉट क्रिएट करनी है. देर विल बी अ वेरिएशन. एक परफेक्ट 100 स्कोर नहीं है कि दिस इज द बेस्ट थॉट, लेकिन देर आर सो मेनी थॉट्स विच विल गिव मी दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. इट्स जस्ट दैट आई डेवलप दैट एटीट्यूड ऑफ क्रिएटिंग दैट राइट काइंड ऑफ थॉट. यू नो इट वोंट बी वन सिंगल थॉट, बहुत सारी थॉट्स हैं जो हमें वो एक अच्छी फीलिंग जेनरेट कर सकते हैं. तो हम वो सारी तरह की थॉट्स क्रिएट करें. यू नो एक पोजिशन तक पहुंचना है. लोग खुश नहीं होते जब तक वो उस डेजिग्नेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं. और फिर जिस दिन उस डेजिग्नेशन पर पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वो एक सो कॉल्ड के आई एम वेरी हैप्पी टुडे, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी टुडे, बट आफ्टर 2-3 डेज नाउ आई हैव समथिंग एल्स. तो फिर इसीलिए फिर दैट्स माय चॉइस, देन आई एम अलाउइंग माय सेल्फ टू बी हैप्पी जस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज एवरी कपल ऑफ इयर्स. उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट टारगेट रख दिया.
2: सक्सेस इज नॉट एट द एंड ऑफ द जर्नी, बट सक्सेस इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ऑन द पाथ. वो जो रास्ता अपना आप वहीं पर हर मुकाम पर आपको सुख का अनुभव हो, वह सचमुच सक्सेस है.
1: अगर हमारे थॉट्स हमारी हैप्पीनेस को गवर्न करते हैं, बिकॉज फीलिंग को गवर्न कर रहे हैं, एंड दैट फीलिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट. मैं कॉन्स्टेंट अपने जो थॉट्स है उन्हें चेक कैसे कर सकते हैं?
2: उसको चेक करने के लिए आपको जागृत होना हो. यहाँ पर भी अवेयरनेस की बात है, भले इस पर डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए. अगर आप सदैव जागृत है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या फीलिंग्स हो रही है, वह जागृति होगी तो आप पकड़ सकेंगे. एक भी छोटा सा भी नेगेटिव थॉट आया, समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर सकते हैं. तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस है.
1: मैं जागृत नहीं हूँ लेकिन मैं हैप्पीनेस चाहती हूँ, तो मैं वो जो पूरी जर्नी है उसमें भी तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के साथ उस जागृत होने के जो पूरा प्रोसेस है उसमें चल सकती हूँ.
0: दैट्स सी अवेकनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और वो भी होता है कि जागृत होने के बाद भी बीच बीच में सो जाते हैं. यू नो इट्स नॉट, दिस इज नॉट लाइक एक बार आप जाग गए तो आप जाग गए. इट्स लाइक यू नो, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाती हैं और आप फिर वही पुराने बिलीफ सिस्टम की तरफ चले जाते हैं. दूसरे ने मुझे परेशान कर दिया. एट दैट टाइम यू हैव टू क्विकली वेक योर सेल्फ अप. सो इट्स नॉट कि आप हमेशा जागे हुए हैं. आप बीच बीच में फिर वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम कभी कभी वापस आ जाता है. बट इट्स ऑल अबाउट कितनी जल्दी आप अपने आप को फिर से याद दिलाते हैं कि यू फॉलन ऑफ टू स्लीप, वेक अप.
2: अवेयरनेस इज डिफरेंट आई थिंक. एक जागृति अलग बात है.
0: अवेयरनेस
2: जो बोल रहा हूँ वो अवेयरनेस कह रहा हूँ. इस समय मैं बैठा हूं, है ना, मुझे क्या हो रहा है कि भी पैरों में क्या हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी है उसके बारे में सजग हो जाना, दैट इज अवेयरनेस. और आप में अगर वह सजगता आ गई तो एक भी नेगेटिव विचार आएगा पता चल जाएगा. और फिर उसको आप मोड़ सकते हैं. वह नेक्स्ट स्टेप है, परंतु वह जब तक जागृति नहीं है मोड़ना इम्पॉसिबल. और क्योंकि आज लोग अवेयर नहीं है, यहां तक कि आपको पूछे कि भी सवेरे क्या नाश्ता किया था याद है, कई बार आप देखेंगे आपको पता ही नहीं क्या किया. बिकॉज यू हैव नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट विथ अवेयरनेस. तो ऐसे सचमुच तो हर स्टेप अभी कैसे बैठे हो वो जागृति के साथ बैठो, क्या हो रहा है दिमाग में.

0: क्या हो रहा है, चेहरे में क्या हो रहा है, वह जागृति हो तो आप कंप्लीटली पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल
1: है. दैट्स वंडरफुल एक्चुअली. सजगता के साथ अगर हम जिंदगी जीते रहे तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आएगा एहसास तो हो ही जाएगा कि दिस इज समथिंग यू नो व्हिच इज नॉट गुड.
2: और इसके लिए शायद अगर बीच बीच में साइलेंस में हो जाए तो वो सजगता इजीली आ जाती है.
0: कि ब्रह्मा कुमारी में हम अब तो हर घंटे ही अभ्यास करते हैं.
2: वही जस्ट अ मिनट, एक मिनट के लिए हर घंटे
1: की जो हम बात कर रहे हैं कि एक हर एक घंटे बाद खुद अपने आप से बात करने के लिए थोड़ी देर मौन में जाएं हम.
2: मौन एंड चेकिंग. सी मौन एक होता है कि फिजिकली आप चुप हो गए, बट दैट्स नॉट इनफ. फिजिकली चुप होकर करना क्या है? करना यह है कि मन में देखना है इस टाइम क्या चल रहा था. इज इट द राइट डायरेक्शन? इफ इट्स राइट इट्स फाइन, इफ इट्स नॉट स्टॉप चेंज.
1: लेकिन कई बार तो खुद उस वक्त जैसे चल रहा अभी आज मुझे अभी कहें आप बातें करते करते पॉज लेकर मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे अंदर क्या चल रहा है.
2: आप रुक कर देखेंगे तो धीरे से वो स्क्रीन के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है अभी. सिर्फ पॉज करना है. शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा देखने में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने उस तरफ कभी देखा नहीं है. तो एकदम से देखेंगे तो बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा, टू मच कन्फ्यूजन बहुत है. लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस कर फिर भी करते रहिए, इवन अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी करते रहिए, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन योर थॉट्स. अभी वो बहुत फास्ट है तो वो बिल्कुल कंफ्यूजन लगता है, लेकिन ये पॉजेस करने से धीरे धीरे उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी. और जैसे ही स्पीड कम होती जाएगी बहुत क्लियर दिखाई देगा कि क्या चल रहा है, एंड देन इट बिकम्स इजी टू चेंज. लेकिन अगर रुक के कभी देखा ही नहीं तो क्या चल रहा है तो चेंज करने की मर्जी नहीं है.
1: टेकिंग अ पॉज एंड थिंकिंग अबाउट इट कि क्या चल रहा है, क्या नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं.
2: नॉट थिंकिंग अबाउट इट. सी हियर दैट्स द डिफरेंस. डोंट थिंक एनीथिंग एट दैट टाइम. जस्ट स्टॉप एंड लुक
1: कि क्या हो.
2: यू नो डोंट क्रिएट न्यू थॉट्स. नो क्रिएटिंग न्यू थॉट्स. थिंकिंग कि मैं जस्ट स्टॉप एंड लुक. इट्स लाइक आई स्टॉप एंड लुक व्हाट आर यू वेयरिंग. सिमिलरली आई जस्ट स्टॉप एंड आई लुक व्हाट एम आई थिंकिंग. आई डोंट स्टार्ट थिंकिंग एनीथिंग डिफरेंट. देयर इज अ डिफरेंस.
0: लुक जो कह रहे वही बात है. व्हाट इज गोइंग ऑन. वॉच योरसेल्फ. इसने बहुत अच्छा कहा है कि ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर. कि जो अंदर में ऑब्जर्वर है उसी को ऑब्जर्व करो.
1: एक्चुअली वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही कर सकते हैं.
2: बस आप एक बार अभी करके देख लीजिए. हर एक सारे दर्शक अभी बैठकर देख सकते हैं. कुछ भी सोचना बंद कीजिए. जस्ट चेक कीजिए अभी क्या चल रहा है मन में.
0: और जब हम ये करते हैं तब और एक बात आती है कि when you watch then you realize कि you know somebody else is watching. I am not this body. फिर ये कहना नहीं पड़ेगा, ये तो समझाना पड़ता है कि भई आप ये शरीर नहीं है, एक चेतना है. परंतु अगर आप ये ऑब्जर्व करने की आदत डालो तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कि अंदर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो और कोई चेतना है, यह शरीर नहीं है.
1: बिल्कुल.
0: ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी.
1: जब हम अपने आप से ही थोड़ा ऊपर उठ के खुद को देखेंगे. बहुत ही खूबसूरत है ये कि हर घंटे अगर हम देख पाए. डॉक्टर साहब, हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस हर पल जो हैप्पीनेस हम उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहें, ये कई बार हम नहीं रह पाते, नहीं पॉसिबल हो पाता. कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कितनी कितनी देर तक मुझे खुशी दे सकती है. दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट एट टाइम. हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने ये लैपटॉप खरीदा, मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी हुई. मैंने कुछ और खरीदा, कुछ और चीजें की, वो व्यक्ति मेरे साथ मिल गया, ज्यादा देर तक हुई. कौन सी ऐसी बात हो सकती है हमारी जिंदगी में जो उस राहत तक हमें ले जाए जो इटर्नल होगी, इटर्नल हैप्पीनेस की बात हो.
0: थोड़ा सा सोचा इसके बारे में. कहते हैं कि भी आपको एक दिन के लिए अगर सुख चाहिए तो फिशिंग करने के लिए जाओ तो एक दिन आपको सुख मिलेगा. एक मास के लिए सुख चाहिए तो मैरिज करो.
1: अच्छा, बस
0: देखना सचमुच आप स्टडी करना. वो जो हनुमान पीरियड है ना तभी सुख होता है. उसके बाद फिर से बस खुशी गम वाली स्थिति स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद नहीं तब रियलिटी को फेस करना पड़ता है. फिर कहते हैं कि भी एक साल के लिए हैप्पीनेस चाहिए तो इनहेरिट अ फॉर्च्यून. कहीं से पैसे मिल जाए तो एक साल तक आपको सुख मिलेगा. तो जीवन भर आपको सुख चाहिए तो हेल्प समवन. इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ कॉज हायर देन योरसेल्फ. और कहेंगे कि अनेक जीवन के लिए आपको अगर सुख चाहिए तो राजयोग का अभ्यास करो. ताकि वह संस्कार बनेंगे। ये जो सारा प्रोसेस संस्कार बनेंगे, इस जीवन में तो मैं सुख का अनुभव करूंगा ही, परंतु आने वाले अनेक जीवन में भी सुख का अनुभव होगा।
1: क्योंकि वी अंडरस्टैंड दिस कि ये जर्नी जो है ये कंटिन्यूअस है, मतलब वही लिबास हम बार बार बदल लेते हैं, लेकिन आत्मा जो है उसका स्वरूप तो वही रहता है और वो फिर कार्मिक डेप्थ साथ साथ चलते हैं। क्या जो हमारी हैप्पीनेस है, जो पूरी ये जर्नी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक, क्योंकि कई बार क्या होता है अनएक्सपेक्टेडली समबडी गिव्स मी अनहैप्पीनेस, आई डोंट इवन नो यू, लेकिन आप के साथ मेरा काम करना मुझे अनहैप्पीनेस दे रहा है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या कोई चीज कोई बात मुझे अनहैप्पीनेस दे रही है। इज इट बिकॉज ऑफ ए टाइम्स वी कैन से दैट इट इज कार्मिक डेथ?
2: इट इज, सी एवरीथिंग इज अ कार्मिक अकाउंट एक्चुअली। हर चीज जो हो रही है, हर इंटरेक्शन जो हो रहा है, हर शब्द जो हम एक दूसरे से बोल रहे हैं, दिस इज समवेयर कनेक्टेड, तो वो कार्मिक अकाउंट है। लेकिन हम हर चीज में उसको कार्मिक अकाउंट सी वी डोंट वांट टू यूज एनी वेपन जहां हम अपने आप को फिर लिबर्टी देना शुरू कर देते हैं।
1: ऐसा तो होना ही,
2: इन्होंने ऐसा किया, कार्मिक अकाउंट है मेरा, यू नो मुझे, नो इट्स नॉट ट्रू। उन्होंने जो किया, देन अगेन इट कम्स टू द सेम थिंग, उन्होंने जो किया वो कार्मिक अकाउंट था, अब आपके ऊपर है। अगर आप स्टेबल रहेंगे उस परिस्थिति में तो वो कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ। लेकिन अब अगर आप डिस्टर्ब हो गए और आपने फिर वो यू नो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वर्ड्स बोले, फिर अब आप एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको फिर आपको रीसेटल करना पड़ेगा। तो हम लोग कई बार ये चेक करते रहते हैं कि हम एक कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं या हम एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहां हम इंटरनली स्टेबल हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, तो एक कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। क्योंकि सेटलमेंट, जैसे मैंने कर्जा लिया था किसी से और मैं कर्जा आज लौटा रही हूं, तो लौटाते समय बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो दैट इज स्टेबिलिटी। लेकिन जहां मैं कर्जा ले रही हूं तो वो एक बोझ हो जाएगा कि मैंने एक कर्जा लिया। तो जहां स्टेबिलिटी है अंदर, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। जहां डिस्टर्बेंस है अंदर, एक नया कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है।
1: तो अनहैप्पीनेस क्रिएट हो रही है किसी व्यक्ति के कारण, मेरी जिंदगी में अनहैप्पीनेस क्रिएट हो रही है। कई बार देखा गया ऑफिस में जब हम काम कर रहे होते हैं, या कहीं पे भी घर में मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का जो एक मेजर अनहैप्पीनेस का एक रिश्ता कई बार डेवलप होता है, बेटा और बच्चा और यू नो फादर एंड सन का बेसिकली कई बार देखा गया है, देयर इज अ मेजर टसल गोइंग ऑन। तो क्या वो अगेन इज इट अ कार्मिक,
2: इट इज अ कार्मिक अकाउंट, सो हाउ डू आई सेटल इट नाउ? क्योंकि एट अ वेरी हायर लेवल, लेकिन मेडिटेशन टीचेस अस अ वे टू सेटल इट, कि हम जैसे जब योग में बैठते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, वी आर चैनलाइजिंग आवर थॉट्स, तो तब हम उस व्यक्ति को या कहें उस आत्मा को इमर्ज करते हैं, यू नो आई इमर्ज दैट पर्सन इन माई माइंड, एवरीथिंग इज इन माई माइंड, तो आई इमर्ज दैट पर्सन इन माई माइंड एंड गिव वेरी पॉजिटिव थॉट्स कि नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आप जो भी कुछ करेंगे आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। वी डू दैट एट द एनर्जी लेवल, एंड ये अगर हम कर लेते हैं, अगर हम वर्ड्स से ये करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हमारा ईगो ये बहुत बड़ा बैरियर बीच में आ जाता है। लेकिन हम अगर थॉट पावर पे ये कर लेते हैं, तो हमने एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल बिगड़े हुए रिलेशनशिप्स में भी यू नो इट जस्ट स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आप उस आत्मा तक उस एनर्जी को पहुंचा रहे हैं। वो बोल से बोलकर करने की जरूरत नहीं है, गिफ्ट देकर या कुछ बाह्य चीज करके करने की जरूरत नहीं है। आप हर रोज कुछ दिनों तक इसको प्रैक्टिस कीजिए कि हर रोज उस आत्मा को इमर्ज कीजिए और उसको ये प्योरिटी पॉजिटिविटी की एनर्जी यू नो डेलिबरेटली मेक एन एफर्ट टू सेंड दैट एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी कि हो सकता है हम दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, लेट्स फिनिश इट नाउ, अब नहीं, अब हम और एक दूसरे को ये तकलीफ इस पेन से नहीं लेके जा सकते हैं। आई फॉरगिव यू, यू नो इफ इन केस समबडी हैज डन समथिंग टू यू, सो वेरी इंपॉर्टेंट इज हम थॉट पावर से वो वाइब्रेशन भेजते हैं, आई फॉरगिव यू, आपने कुछ नहीं किया है, एंड इन अदर केसेस प्लीज फॉरगिव मी, यू नो व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द केस। ये एनर्जी लेवल पर अगर हम कर लेते हैं, थॉट लेवल पर, रिलेशनशिप्स में बहुत एक यू नो यू विल फाइंड अ डिफरेंट रिलेशनशिप. इट रियली वर्क्स. इसको थोड़े दिन के लिए, महीना दो महीना या जब तक वो नहीं होता है, एंड एक तो इसको मेडिटेशन के दौरान करें, और दूसरा जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है, just emerge that thought all over again without saying or doing anything. Just look at the soul and say, it's okay, everything is fine between internally. This is not, you know, superficially. Ye bahut conviction ke saath, and this is what you want. It's not superficial. You want that relationship to work. And positivity, not attachment. Attachment wala nahi work karega. It's that positive relationship with the soul. It works.
1: इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कार्मिक डेब्ट्स इसी जन्म में, जहां हमें एहसास हो, हम सेटल कर सकते हैं, और हम अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं. प्रारब्ध को बदलने की बात जो कही जाती है. डॉक्टर साहब, अगर ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो नहीं, कहीं ना कहीं हमें अनहैप्पीनेस दे रहा है, तो क्या ये पूरा का पूरा कहीं कोई केमिकल रिएक्शन भी है कि वाई देर आर पीपल जस्ट, हम देखते ही हमें उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और कई बार टोटल अनहैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है उसमें?
0: मोर देन केमिकल रिएक्शन, मैं कहूंगा कि उनका जो ऑरा है वो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है.
1: ऑरा मींस जैसे
0: कि वी आर नॉट इन ट्यून विद ईच अदर. आमतौर पर
2: हमारी
0: फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती. वो भी सत्य है, लेकिन ऑरा तो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं. क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा फोटोग्राफ लिया जाए तो डिफरेंट लेयर्स आती है, राइट लेफ्ट टॉप में. ऐसे ही दूसरा एक है जिसको कहा है पीआईपी कैमरा, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी. यहाँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी एक कैमरा है. हमने कुछ रिसर्च भी की इसके ऊपर. एक छोटी सी बात जो इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ, एक हमने इनोवेटिव बात सोची कि एक व्यक्ति को का हाथ ऐसे रखो और उसका पीआईपी का फोटोग्राफ लिया गया, तो सारे उसके लेयर्स आ रहे थे. दूसरे को कहा तुम्हारा भी करो, उसके भी लेयर्स आए. फिर दोनों को आप नजदीक लाओ ऐसे, और फिर फोटोग्राफ लिया. तो एक यूनिक चीज है सामने आई. भले एक एक्सपेरिमेंट था, परंतु बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति का सब जो यहाँ पर येलो रेज आ रहे थे, तो जब दूसरे ने ऐसे रखा तो इसके येलो शिफ्ट हो गए.
1: ओके.
0: और इसका इसके जो रेज थे वहां आ गए.
2: और दूसरे तो के क्या थे मतलब?
0: वो जो भी थे
2: तो उसके ऑरा ने इनके ऑरा पे
0: इफेक्ट किया. हाँ, तुरंत मुझे इंटरफेरेंस हुआ कि भी दिस पर्सन इज मोर पावरफुल. इसका ऑरा पावरफुल है, जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया तो इसका शिफ्ट हो गया. तो ऐसे हमें भी करना चाहिए. तो हम मतलब अपने ऑरा को इतना पावरफुल
1: कैन बी चेंज आवर ऑरा आल्सो.
0: वी कैन मेक इट पावरफुल. यू नो मेडिटेशन से चेंज होता ही है. थॉट से ही होगा. जो आत्मा की स्थिति है वो वास्तव में तो एनर्जी फील्ड है कहेंगे. कि हमारे में एक तो आत्मा है, दूसरा ये शरीर है, और जो आत्मा के वाइब्रेशन शरीर में जाते हैं वही ऑरा क्रिएट करते हैं. कि जो शरीर से बाहर भी आएंगे, क्योंकि अणु अणु उस वाइब्रेशंस को बाहर ट्रांसमिट करेगा, तो वही वास्तव में ऑरा है. तो आत्मा की स्थिति अगर इम्प्रूव हो, अब ज्यादा शांति का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो, तो आपका ऑरा भी इम्प्रूव होगा. तो ये करना चाहिए.
1: आत्मा कि हम अपने टेक ओवर कर ले जब, तो आपका और स्ट्रांग हो जाता.
2: नहीं नहीं, आत्मा तो है ही. आत्मा टेक ओवर नहीं करेगी. आत्मा ने थॉट्स की क्वालिटी को चेंज किया. जब ये किरलियन फोटोग्राफी लेते हैं, तो जिन लोगों की बहुत नेगेटिव थॉट्स होती है, बहुत टॉक्सिक थॉट्स होती है, तो उनका ये पूरा एरिया वो लाइट का ग्रेश की तरफ आता है, ग्रे कलर, डार्क पर्पल, ब्लैकिश. और जिनकी बहुत प्योर और पॉजिटिव थॉट्स है, उनका येलो, क्रीम, व्हाइट आएगा. एनर्जी लेवल तो है ही, लेकिन वो जितनी प्योरिटी की तरफ होगा वो ऑरा लाइट कलर का होगा. इसलिए आप देखिए, देवी देवताओं के लिए, धर्म पिताओं के लिए वो व्हाइट सर्कल जो हम दिखाते हैं, दैट इज द ऑरा, प्योर सोल का,
1: जिसे कहा जाता है. ओके. तो अगेन हमने पूरा ये जो हमारी बातचीत रही आज, उसमें कई सारे एस्पेक्ट सामने आए कि हैप्पीनेस अगेन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. आज हम हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, खुशी की बात कर रहे थे. वो फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हम हमेशा के लिए भी, कभी खुशी कभी गम ना करके, अपने साथ रख सकते हैं. और उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है. और जो एक बहुत ही खूबसूरत एहसास हमें हुआ आज की, कहीं ना कहीं हर एक घंटे में अगर आप अपने थॉट्स को चेक कर लें खुद, कि क्या हम सही डायरेक्शन में है, क्या हमारे थॉट सही डायरेक्शन में है, सो दैट विल हेल्प. एंड अगेन, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है अगर जो कहीं ना कहीं हमें अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है, हम अपने कार्मिक डेब्ट्स भी आत्मा के स्तर पर पहुंच के उसके साथ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या सॉल्व कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं. इसमें ऑरा भी काफी मायने रखता है। आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू।
1: बहुत कुछ जाना आज हमने अपने बारे में, कुछ ऐसे एहसास जो अभी तक नहीं हुए थे, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे, दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाएंगे। और तब हम जब कहते हैं कि मेडिटेशन करनी चाहिए, तो जिंदगी जो है वही मेडिटेशन बन जाएगी। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात।
3: नमस्कार, मैं वर्षा उसगांवकर, तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करें।
3: सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से ना कभी उफ कहते हैं, कौन है ये लोग। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता वीर पढ़ रहा था दोस्त आपके लिए। ये वो वीर है जिनको हम फौजी कहते हैं, लेकिन हम में से कई फौजी ऐसे भी होते हैं जो कि केवल फौज या आर्मी से नहीं जुड़े हुए होते, लेकिन वो आर्मी में रहते हुए उनकी सेवा करते हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में यशस्वी भारत कार्यक्रम में एक ऐसी ही हस्ती आई हुई है। 90.4 FM रेडियो मधुबन यशस्वी भारत कार्यक्रम में आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे अतिथि जिनका मैं अभी आपके सामने नाम लेने वाला हूँ, उनके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले तो वो एक बहुत बड़ी उदाहरण है। मैंने कहा बहुत बड़ी उदाहरण है, मतलब वो एक महिला है, एक गृहिणी है, एक माँ है, एक बेटी है, और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी है। और केवल डॉक्टर ही नहीं, वो एक फौजी डॉक्टर है। इन सभी चीजों को अपने बीच में, अपने में धारण करके जो आज हमारे बीच में आई है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कांतिकार जी, जो कि भारत देश की वो यशस्वी बेटी हैं जिनको परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया 2022 में। उनकी सेवाएं फौज में तो थी, लेकिन फौज में डॉक्टर के रूप में थी। आज वो हमारे बीच में है, आइए उनका स्वागत करते हैं। माधुरी जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे श्रोता साथियों के साथ अपना समय, बेशकीमती समय गुजारने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद चांदनी जी, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सब लोगों तक पहुंच सकती हूँ आपके जरिए।
3: माधुरी जी, मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहूंगा कि ये जो नाम है आपका माधुरी और फिर फौज मिलिट्री, ये थोड़ा सा लोगों के लिए या जहन में जमता नहीं है, लगता है कि ओ माधुर्यता, कोमलता, एंड यू नो हम जनरली नारी के साथ या महिलाओं के साथ इन सौम्य गुणों को बहुत ज्यादा एसोसिएट करते हैं, और जैसे कोई बोलता है कि वो मिलिट्री में है या आर्मी में है, तुरंत हमको ऐसा लगता है ये क्या कह दिया। तो जब आप इस फील्ड को चूज कर रहे थे, तब आपको भी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा था?
4: ऐसा कोई फेस नहीं करना पड़ा, और ये भी मैं कहती हूँ कि आप जो एक प्री कंसीव्ड हमारे दिमाग में कुछ चलता है ना कि ऐसा होना चाहिए, ये एक तरीके का बायस ही होता है, और उसको हम अपने आप को एक सीमा में अंकित कर देते हैं। उसके बजाय हम बड़ी सोच तो कोई दिक्कत नहीं आती है, मतलब एक दुर्गा माँ भी तो एक स्त्री ही है, तो इसलिए ऐसा कोई ये नहीं है। और दूसरी मजाक की बात बताऊंगी कि मैं शुरू से ही काफी मतलब डेयरिंग और ये, अब नाम तो माँ बाप ने रखा था, लेकिन मेरी माँ ने भी मेरा नाम चेंज कर दिया बाद में, देख के कि मेरा हौसला, और वो देख के कहती तो इतनी भागती रहती, तेरे नाम हमने माधुरी रखा लेकिन तू बन गई है मैड हरी।
3: That's very sweet. माधुरी से मैड हरी, बट वो मैड हरी जो है that has started showing from the very early age. मतलब बहुत शुरुआत से ही आपने अपने आसपास वालों को ये समझाया कि आप कोई जनरल माधुरी नहीं होने वाले हैं, ये आप में कुछ एक खास बात है।
4: बिल्कुल, पर क्योंकि शुरुआत से ही माहौल भी ऐसा था। मेरी दादी खुद एक बहुत मुश्किल समय से गुजरते हुए उस हद तक पहुंची थी। वो एक बाल विधवा थी और अनाथ हो गई थी जब बचपन में। उसे कुछ तब मामा जी ने उससे करवे स्त्री शिक्षण संस्था उन दिनों में अर्ली 1900 तो उनके पास उन्हें छोड़ दिया। और उनके पास रहते हुए इतनी पढ़ाई और दिमाग का इस्तेमाल करके वो डॉक्टर बनी उन दिनों में। तो इसलिए हम जब बढ़ रहे थे तभी घर में उन्हीं की कहानियां हमेशा सुनने को मिली। पिताजी भी ऐसे थे कि बहुत यंग है तब, उन दिनों में डबल प्रमोशन मिलती थी, तो एज 17 में वो इंजीनियर बन गए। और कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए PhD करी और देश के पहले टेलीकम्युनिकेशन के PhD बने। तो ऐसी चीजों ऐसे माहौल में बढ़ते हुए हमें हमेशा, एक तो हम तीन बहने थे, कभी लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता था। और पिताजी भी यही कहते थे कि भाई क्यों नहीं कर सकते, अगर हमने सोचा कि ये नहीं, कहते सब जिसको जो करना है कर सकता है। तो इस माहौल में बढ़ते हुए तो ये तो मतलब मेरे पेरेंट्स को मैं उनके आशीर्वाद से ऐसे माहौल में बड़ा बड़े होने का परवरिश हुई कि ऐसी चीजों की आदत हो गई थी। और दूसरा मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इन सब में हमेशा हमने भाग लिया। और लेकिन पहला जो सचमुच का चैलेंज था जिसपे मतलब ये था कि मुझे फौज ज्वाइन करने के लिए AFMC ज्वाइन कर AFMC तब पापा ने भी कहा कि भाई डॉक्टर बनना ठीक है लेकिन फौज में क्यों, बाकी भी चीज जगह है जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन तब पता नहीं क्यों जो एक वर्दी का शौक था और जो डिसिप्लिन, मैं कॉलेज में एक विजिट करके आई मेरी सहेली लेके गई थी तो उससे देख के जो स्फूर्ति आई मन में, तो मैंने कहा तब मैंने उसी को यूज किया, इस्तेमाल किया जो कि सब कुछ कर सकते हैं। मैंने पापा से भी यही कहा कि आपने कहा सब कुछ कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं मैं कर सकता।
3: एक्चुअली माधुरी जी, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने यही देखा कि आप बहुत प्रेरणा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लेते हैं, स्पेशली अपनी दादी जी से। और आपने मेंशन भी किया कि आपकी दादी जी ने अफ्रीका में भी बहुत सेवा किया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो सेवा का भाव है और जो वो सेवा का भाव जनरली हम फौज के साथ बहुत जल्दी एसोसिएट कर लेते हैं कि भाई प्राण देकर के भी देश के लिए सेवा भाव रखना, ये फौज के साथ एसोसिएट होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी आप पे इम्पैक्ट किया होगा। और दूसरा जो आपका AFMC विजिट है, आप कह रहे हैं AFMC, साथियों मैं यहाँ बताना चाहूंगा आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो है वो ना केवल डॉक्टर्स तैयार करता है लेकिन वो ऐसे डॉक्टर्स तैयार करता है जो कि फौज में हमारे जो जवान हैं उनको मदद करता है, उनकी देखरेख का जिम्मेवार होता है, प्लस वो और भी देश में जो चीजें हो रही होती हैं, चाहे आपदा है विपदा है, उस समय किस प्रकार से उनको डील करना है उसमें भी वो हमें मदद करता है। तो ये छोटा सा जानकारी AFMC के बारे में था, बट माधुरी जी हमें और भी उसके बारे में बताएंगे।
4: बोल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एकमात्र कॉलेज है जहाँ पे हम मतलब जिस टाइम एडमिशन लेते हैं उसी टाइम बॉन्ड साइन करते हैं कि हमें, और मैं हमेशा बाद में जो जब बच्चे आते थे इंटरव्यू में, जब वहां पे डीन बन के गई और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पूछते थे, मैं यही कहती थी, मैंने कहा बॉन्ड सिर्फ एक नाम है, आपको कोई बांध के बॉन्डेज में नहीं रख रहा है, ये आपको एक मौका दे रहा है आपके देश के लिए कुछ करने का, तो इसको तो आप बल्कि सर आंखों पे उड़ा के उसे अपनाइए।
3: एक मजेदार बात यह है कि मैंने भी AFMC का एग्जाम ट्राई किया था, मैं क्वालिफाई नहीं किया, बट ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका लाइफ आपको वापस वहां लेकर गया था। आज इस इंटरव्यू के माध्यम से आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑल दैट बैक, बट आपके लिए भी आप वापस आए AFMC में, आप भी चाहते तो आप भी बाहर जा सकते थे, आप भी अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ क्लिनिक या कुछ भी, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते थे। कई बार क्या होता है जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम उस जगह को बहुत कोसते हैं, हमको लगता है यार इससे अच्छा तो कहीं और भी हो सकता है, ये जगह इज नॉट द बेस्ट वन, लेकिन वापस घूम फिर करके वहीं आना और वहां पर डीन बनना, ये कैसा रहा आपके लिए?
4: मेरे लिए तो वो बहुत मायने रखता है। मतलब अगर मैं हमेशा कहती हूँ मेरी पूरी सर्विस में कोई भी पूछता है कि आपका सबसे मतलब दिल चाहने वाला समय कौन सा था, तो वो मैं कहती हूँ वो सिर पे जो ताज होता है, मैंने कहा वो जाके अपने ही कॉलेज में जिससे बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं जब गई थी और इंटरव्यू दिया था, मैंने यही कहा था कि मैंने पूरी जिंदगी और सारी ट्रेनिंग में इस कॉलेज से लेती गई, आज मुझे मौका है कुछ देने का। ये जो मतलब मैं अपना भाग्य समझती हूँ, सबको नहीं मिलता है।
3: ये जो आपने बात कही कि हम कई बार सिर्फ लेते हैं, चाहे वो किसी रिश्ते से ले रहे होते हैं, चाहे वो अपने आस पड़ोस से ले रहे होते हैं, चाहे वो हम पर्यावरण प्रकृति से ले रहे होते हैं या वो देश से ले रहे होते हैं, देते हम कितना है, इस चीज का अगर हम कभी भी बैठ करके सोचते नहीं है तो शायद हमारा जीवन जो है वो एक ऐसे चक्रव्यूह में घूम रहा होता है विच इज लाइक अ डाउन साइड इरोजिव सर्कल। लेकिन जब हम ये बैठ करके सोचने लगते हैं कि नहीं कुछ मुझे देना भी है, तब हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है। जैसे आपने बैठ करके सोचा कि भाई मुझे मेरे को इस कॉलेज को कुछ देना है वापस, और इसलिए आप डीन बन करके आए। तो डीन जब आप थे उस समय आपने जरूर अपने समय के कुछ ऐसे परिस्थितियां होंगी या चैलेंजेस होंगे जिनको चेंज किया होगा या परिवर्तित किया होगा, जिसके वजह से कॉलेज में एक नया वेव ऑफ एक्साइटमेंट आया होगा। कोई ऐसी स्टोरीज आपके उस समय से एज अ डीन ऑफ AFMC जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
4: जब मैं कॉलेज से स्टूडेंट फर्स्ट आई थी, यूनिवर्सिटी में कमीशनिंग हुआ था, तब भी उस टाइम कमीशन के पहले मेरे खुद डायरेक्टर भी मेरे पिताजी को बुला के बताया कि इसने इतना मतलब अच्छे नंबर लाए, आप चाहते होंगे तो इसको फॉरेन भेज सकते हैं आगे की पढ़ाई, ये एक बहुत एक्सीलेंट ये कर सकते मतलब करियर बना सकती है क्या आप इसे, क्योंकि उन दिनों में सिर्फ 30,000 का बॉन्ड था। उन्होंने पिताजी को बुला के एक्चुअली ऑप्शन दिया कि आप ये पे कर सकते, तो तब भी पिताजी ने कहा कि ये अपने मन से आई थी कि सिर्फ वर्दी पहननी है, मैं फिर भी आपके सामने उसे पूछता हूँ, अगर ये मानी तो मैं निकाल, लेकिन अगर इसकी जिद है तो फिर मैं इसे छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। क्योंकि मैं भी जब छात्र था, मैंने यंग एज में इंजीनियर बना था, तब मुझे भी सबने कहा कि अमेरिका चले जाओ, लेकिन तब भी मैंने अपने लिए भी कि मैं अपने ही देश में रहूंगा। तो ये एक देशभक्ति की जो घर में परिस्थिति जो वातावरण था, तो उससे, और जब वैसे उन्होंने कहा तो मैंने भी उसी इमी बिना सोचे भी एक सेकंड भी नहीं लगाया, मैंने कहा मैंने वर्दी पहननी है और फौज में जाऊंगा, नौकरी करनी, मुझे कहीं नहीं जाना। ये तो लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा था कि चेंज क्या लाई, तो मुझे लगा कि अभी आजकल धीरे धीरे ये जो हमारे हमें देश को स्वतंत्र बनाया, इतनी चीजें हमें मिल रही है, इसकी पहचान, इसकी अवेयरनेस यंगस्टर्स में कम है। तो सब सोचते हैं मतलब इसको हम टेक, जैसे कहते हैं ना, टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम तो कहते हैं ये तो हमारा हक ही है, ये तो हमारे देश ने हमें देना ही है, एजुकेशन तो मुझे दे मिलना ही है। तो ऐसे सोचने में कि हम कोई किसी की मेहनत की वजह से, वेदर इट वॉज फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे देश पर ये किया, या पूर्वजों ने जिन्होंने ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, हमारे जो राष्ट्र के लोग है, हमारे जो गवर्नमेंट है, वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट में कोशिश कर रहा है, तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? तो ये अवेयरनेस मैंने बहुत शुरू से स्टूडेंट्स में डालना शुरू किया कि आप बहुत खुशकिस्मत हो कि यहाँ आए हो आप, फिर जो अच्छाइयां है, क्योंकि सबको जब बॉन्ड शब्द होता है लोग पे आउट करते थे, तो हमने शुरू से उन्हें ऐसी चीजें करवाई, हमने कहा आप स्टूडेंट्स होते हुए आप विजिट करिए, तो उनको मैंने फौजियों यूनिट्स में भेजा, आर्मी नेवी एयरफोर्स के कई शिप में जवानों के साथ उनकी इंटरेक्शंस करवाई, जिससे कि जो पे आउट करने लगे एकदम ड्रॉप हो गया, क्योंकि उन्हें खुद मतलब कोई उनको दिशा दिखाने वाला भी चाहिए ना, तो मुझे लगा कि मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैंने तो बहुत कुछ लिया है फौज से, लेकिन इन बच्चों को कोई सही मार्ग नहीं दिखा रहा है। और आज की युवा जो है देश में, उन सबको ऐसी राह दिखाने वाले लोग चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि, और हम सब जिन्होंने कुछ पाया है, जिन्होंने हासिल किया है, उनका कर्तव्य बनता है। तो इसलिए जो आपने कहा कि आप ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने कहा मेरा इसके लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके जरिए अगर मैं और युवाओं तक पहुंचाऊं कि हम बहुत खुशकिस्मत है, हमें बहुत चीजों का सोचना भी नहीं पड़ता, हम बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, सब कुछ हमें जो है मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम वापस क्या दे रहे हैं, इसको हम सस्टेनेबिलिटी के तौर पे क्या सोच रहे हैं। तो ये सब जो अवेयरनेस है हमें बढ़ा लीजिए, और एक कृतज्ञता जिसको कहते हैं, यू नो, हैप्पीनेस, प्लेजर एंड बीइंग अवेयर ऑफ ऑल दैट वी आर गेटिंग इज इम्पोर्टेंट टू थिंक ऑफ हाउ टू गिव बैक। फर्स्ट स्टेज इज गेटिंग अवेयर, वो काम बहुत जरूरी है।
3: साथियों, जो बात अभी माधुरी जी ने कही कि सबसे पहला कदम ये है कि समझ, जो है वो सबसे पहला कदम है कि क्या मैं समझता हूँ मेरे होने से मेरे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्या ये मैं समझता हूँ कि मेरे कुछ कदम मेरे देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ना केवल मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो समझ है, ये समझ युवाओं में आए, इसके लिए माधुरी जी ने जो प्रयास किया AFMC में डीन रहते हुए, उसका बहुत बड़ा प्रमाण ये रहा कि लोगों, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो ये भय था कि भाई हमको तो बॉन्ड साइन करना पड़ रहा है, ये भय कम हो गया और लैप्सिंग आउट जो है स्टूडेंट्स का वो कम हुआ। इसी चीज पे मुझे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम मेडिकल एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं तो कई लोग AFMC का फॉर्म ना इस कारण से भरते हैं कि भाई अगर हम यहाँ आ गए फिर तो हमारी लाइफ सेट है, हमें बहुत सारे प्रोविजंस मिलेंगे, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी, देशभक्ति की भावना थोड़ी कम होती है। सेकेंड थॉट क्या होता है कि चलो इतने सारे एग्जाम दे रहे तो एक और सही, यहाँ नहीं हुआ तो वहां तो हो ही जाएगा। तो ये जो सेवा भाव से जो इंटेंशन है, उस भावना से एग्जाम लिखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। एंड मुझे लगता है उस भावना से, जब हम भावना को टेस्ट करते हैं तो उससे जो निखार आता है हमारे अंदर, वो हमें बहुत लंबी दूरी तक फासला तय करने में मदद करता है। माधुरी जी, आपके स्टोरी में ये चीज मैंने देखा कि आपकी भावना सदा से ही सेवा की थी, चाहे वो स्टूडेंट रहते हुए आप देश की सेवा करना चाहती थी, या फिर आप जब फौज में आप गए तब आपने नेफ्रोलॉजी यूनिट अलग से शुरुआत किया, जो कि पहले कभी नहीं था, सो इवन वहां पर भी आपका सेवा का भाव था। फिर जब आप डीन बने तब भी आपका सेवा का भाव था कि भाई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो समझे तो सही, तो वहां पर भी सेवा का भाव था। लेकिन इन सभी सेवा के भाव में कई बार आपको ऐसा नहीं लगा कि शायद मेरे परिवार के प्रति जो मेरा सेवा है वो कम पड़ रहा है? आपने बैलेंस कैसे किया इसको?
4: बैलेंस मतलब, अगर वैसे ही जैसे, क्योंकि परिवार में उसी में सबको साथ लेके, उनमें भी यही वैल्यू सिस्टम्स जो है, जो घर में वही होता है जो हम करते हैं। और ऐसा नहीं था कि मैं 24 घंटा सिर्फ नौकरी कर रही थी, बाकी टाइम वक्त बच्चों के साथ भी गुजारती थी। और कभी कभी जब होता था कि बहुत मुश्किल के टाइम, जैसे बच्ची बीमार थी और पोस्टिंग हमारे साथ नहीं होते थे, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो भी फौज में थे, वो कहीं और होते थे, मैं कहीं और होती थी, बच्चे नाराज हो जाते थे। कभी कभी बेटी कहती थी अभी बीमार होना पड़ेगा तो मम्मी आप मेरे साथ बैठोगी, तो ऐसे मतलब गिल्टी फील कराते थे जरूर बच्चे। तो मैं सीधा उन्हीं को पूछती थी कि भैया देखो ये हिसाब किताब है, क्या आप चाहोगे कि मैं छोड़ के घर बैठूं? कहते नहीं नहीं नहीं मम्मी आप बहुत अच्छा कर रही हो, क्योंकि मैं हमेशा उनको अपने साथ लेके मैं क्या कर रही हूँ उसकी समझ उनमें भी लाती थी। ऐसा नहीं कि मैं अपना काम गई तो वो सेपरेट कर दिया, तो वो भी बहुत प्राउड फील करते थे कि मम्मी कुछ बहुत अच्छा कर रही है। तो इसलिए कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मतलब घर की तरफ, और अभी दोनों बच्चे सेटल्ड है, वो भी शादीशुदा है, और उनमें जब ऐसी झलक आती है कि भाई कहीं पे कि हम कुछ अच्छा करें, ताकि यू नो क्वालिटीज जो एक्सप्रेस करते हैं और टफ बनते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बचपन में उन्होंने ये देखा, जैसे मेरे ऊपर मेरे दादी के संस्कारों का फायदा हुआ, शायद मेरी सेवा का उनके ऊपर भी हो रहा है।
3: और वैसे भी जब माँ डॉक्टर हो तो बीमारी का बहाना तो चलता ही नहीं है। मतलब बच्चे भी बहाना देके कहाँ जाएंगे, मम्मी तो खुद डॉक्टर है, उनको तुरंत ही कुछ गुट्टी पिला देंगी और फिर बच्चे ठीक, इसलिए वो बहाना भी काम में नहीं आएगा। बट जहां तक मैं समझता हूँ, आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे श्रोताओं के सामने रखा कि एक एक व्यक्ति ना केवल अपने परिवार का लेकिन अपने खुद के भी वजूद का, अपने खुद के भी ड्रीम्स एंड सपने जो भी हैं उनको कनेक्ट कर सकता है देश के साथ। मतलब कई बार हमको लगता है अगर देश के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए कब करेंगे, अपने लिए कर रहे हैं तो परिवार के लिए कब करेंगे, ऐसे ऐसे चीजों में ना हम गुथ जाते हैं, उलझ जाते हैं। जबकि चीज बड़ी सिंपल है, आपने बताया अगर हमारी मूलभूत प्रिंसिपल्स आदर्शों को हम पकड़ के रखें तो हम अपने साथ साथ परिवार के साथ साथ देश के साथ साथ पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए कोई चीज को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। और आपने एक बहुत अच्छे माँ, गृहिणी, देश की बेटी, एक डॉक्टर, हर प्रकार से आपने अपने आप को सिद्ध किया, जिस वजह से भारत सरकार ने आपको, मतलब साथियों हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कांतिकार जी है जिनको की भारत सरकार ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। ये बहुत खास सम्मान होता है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और आज हमारे बीच में इनका होना हमारे को ऐसा फील हो रहा है कि हमें सरकार ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है, आपने हमें बहुत सम्मान दिया है। जब ये सम्मान आपको प्राप्त हो रहा था तब आपका क्या फीलिंग था, कि ऐसा लगा कि लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया या ऐसा लगा कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई अब मेरे ऊपर?
4: एक्चुअली मतलब मैं जब पूरे इतने साल तकरीबन 39 साल हो गए थे फौज में, जब तक निवृत्ति होके रिटायर हुई थी, और ये अवार्ड जब मिला एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि दो चीजों से, एक तो मैं उसके पहले मेरे हस्बैंड थे उनको भी 4 साल पहले ये अवार्ड मिला था, तो वो उस दिन उन्होंने कहा था कि एक दिन तुम्हें भी लेफ्टिनेंट जनरल बनना है और ये अवार्ड लेना है। तो मतलब बच्चों के साथ जब हम वहां गए, बेटा भी साथ था, बहू भी साथ थी, तो उस टाइम एक बहुत आनंद सा मिला कि दोनों ने मतलब मुश्किल ये करी लेकिन इसका फल बहुत अच्छा मिला है। लेकिन एक्चुअली वास्तव में बताया तो मुझे मन में ये भी लगा कि मुझे रिवॉर्ड्स तो हर रोज मिलता है, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन होता है, जिस खुशी से जो आनंद मिलता है रोज के काम में, अभी आज मैं यहाँ पे कुलगुरु का मतलब और जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली है और यहाँ पे भी इतने बदलाव लाए हैं, इतने साथ यहाँ के 600 लोग साथ जुड़ गए हैं और एक परिवार यहाँ पे भी बन गया है मेरा, तो वो करते समय मुझे रोज का, तो उसके बाद एक और अवार्ड जब मिलता है तो वो कहते हैं जैसे ना कि आप इंग्लिश में कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, मतलब केक तो आपको मिल ही गया है, आप खा चुके हैं, अब आपको और आइसिंग भी मिल रही है।
3: ये जो आपने बताया कि जैसे सोने पे सुहागा जैसा कहते हैं, वैसा वाला एक क्षण है कि रोज तो मुझे वो तृप्ति, वो संतुष्टि प्राप्त हो ही रही है मेरे काम से, लेकिन जब उस

0: है, उस सिस्टम के अंदर है। तो जब हम अंदर होते तो हमें कई चीजें ऐसी भी दिखती जो शायद नहीं देखनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए सिस्टम में। तब क्या आपके दिल में मलाल नहीं होता था देश के लिए या सिस्टम के लिए?
1: मतलब ऐसे होना ही नहीं चाहिए, वो उस ज्यादातर देख के मेरे निजी प्रॉब्लम्स के लिए था। लेकिन जो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सौभाग्य से मतलब नौकरी कर रही थी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ देश के लिए था, तो ऐसी चीजें तक मुझे कोई याद नहीं है कि ये मतलब जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं लगा। निजी प्रॉब्लम जरूर होते थे और उसमें बहुत दुख भी होता था, जैसे पोस्टिंग ना मिलना या यू नो कि थोड़ी डिलेज होना, कभी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज, ये मेरी पर्सनल शॉर्टकमिंग्स थी, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स थी। तो उसमें मुझे जरूर लगता था कि भाई ये फर्क होना चाहिए, और उन लेकिन ऐसा हुआ कि उन चीजों को मैं अपनी सर्विस में केस टेकअप करके बाकियों के लिए उसका फायदा जरूर हुआ। तो वो भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि ठीक है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी लेकिन मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन के मतलब उसको मैंने नजरअंदाज नहीं किया, मैंने तरीके से हायर अथॉरिटीज के साथ वो ले आई और उसकी वजह से आज लेडीज को ज्यादा फायदा मिल रहा है। और जैसे जैसे सिंपल चीज बता रही हूँ, ओवर द इयर्स कि मेरे जो सीनियर्स थे उनको मेटर्निटी लीव मिलती ही नहीं थी, हमारे टाइम तक 2 महीना मिली थी, लेकिन तब भी वो लगता था कि भाई ये कम पड़ रहा है, कभी पुट अप करो, लोगों से बात करो। और आज लेडीज जो सर्विस में है उनको 6 महीने मिलती है, पोस्टिंग्स भी ज्यादातर मदद करते हैं, फिटनेस स्टैंडर्ड्स लेडीज के लिए अलग बने हुए हैं, हाइट वेट चार्ट्स अलग, जो हमने ज्वाइन किया नहीं थे क्योंकि बहुत कम मात्राएं में लेडीज, लेकिन हमने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया ताकि आगे की लेडीज के लिए रास्ता थोड़ा मिला। तो इसलिए ये भी एक आ, आ, पार्ट था जिससे सेटिस्फेक्शन मिला।
0: मतलब आपने जो भी कमी देखी, चाहे खुद में या जो भी है, उस कमी को कमी समझ करके नहीं छोड़ दिया, उस पे समझा कि इसको कैसे सामने पेश किया जाए जिससे इसके आधार पे सुधार हो सके। लेकिन माधुरी जी,
1: आपको
0: मैंने
1: एक
0: कई
1: उदाहरण मैं सिंपल बताती हूँ। जैसे मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन आगे की पढ़ाई कर रही थी तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, छोटा बच्चा घर में और मेरी पढ़ाई भी होती है, तो कभी भाई काम वाली, कभी मेरी माँ आती थी, कभी सासू मां जी आती थी। तो मैंने इसलिए जब एफएमसी डीन गई, मैंने कहा मैं अभी यंग लेडीज के लिए क्या कर सकती हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्रेश खोला। मैंने
0: वेरी
1: कहा ये
0: स्वीट।
1: क्रेश होना चाहिए ताकि यंग गर्ल्स है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, ट्रेनिंग कर रही है, काम कर रही है, सबको प्रॉब्लम आती है, तो क्यों ना हम अपने ऐसा करें कुछ किस लोगों की मदद, और ऑर्गेनाइजेशन को भी अच्छा लगा, सबने साथ दिया और एफएमसी में क्रेश खड़ा हो गया।
0: वाह, दिस इज प्रैक्टिकल। साथियों, ये यहां से सीखने की बात है कि कमी कमजोरी अगर नजर आती है तो वो मुझे ही क्यों नजर आ रही है, क्योंकि शायद मेरे पास उसका एक जवाब है। लेकिन क्या वो जवाब मैं आपस में शेयर करता हूँ, उसमें बल भरता हूँ और उस पर कुछ करता हूँ, ये बहुत मुद्दे की बात होती है। माधुरी जी, मेरा ये सवाल पूछने के पीछे एक और तात्पर्य था, वो ये कि कई बार होता है कि आजकल जो मैंने ज्यादातर देखा है, लोग जो है कमेंट पास करने में, क्रिटिसाइज करने में कुछ थोड़े ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है वो एक अहम भूमिका निभा रहा है। सोशल मीडिया की गलती है ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो केवल एक साधन है। वो किसके हाथ में है, वो अपनी बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करता है, वो उस व्यक्ति का प्रॉब्लम है। लेकिन जब ये वेव ऑफ सोशल मीडिया चल रहा है, जहां पर लोग कमेंट, क्रिटिसाइज, क्रिटिक करना बहुत फास्ट कर देते हैं, ऐसे में आप ना केवल यूथ को बट हर किसी को कैसे, क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे कि What is that I should do? क्या करना चाहिए मुझे ऐसे समय में?
1: आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और इसको जब भी मैं लोग पूछते हैं मैं यही कहती हूँ कि जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया की ये गलती नहीं है, इस्तेमाल करने वाले की। अगर मेरे हाथ में चाकू है उससे मैं सेब काटू तो ये अच्छा काम कर रही हूँ, लोगों को बांट रही हूँ काट के, लेकिन उससे मैं किसी का खून करूँ तो वो चाकू की गलती थोड़ी ना है, वो तो मेरी है। तो सेम वे अगर हम जिम्मेदारी निभाए जब हम यूज करते, तो एक सिंपल चीज है कि मैं कुछ मेरे पास कोई फॉरवर्ड

0: आया हुआ है उसमें सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने और 10 लोगों को फॉरवर्ड करने के बजाय अगर या तो मैं इन चीजों में ना पढ़ू और अगर पढ़ रही हूँ तो उसमें कोई दम है, कुछ एक्चुअल ये है, तो ये सोच थोड़ी सी रुक के सोचे हम इसे। और दूसरी चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी चीज से, किसी मेरे कहने से किसी को दुख मिलने वाला है, किसी को परेशानी या किसी को तंगी होने वाली है, तो वो मैं ना करूं तो भला है। क्योंकि अगर मतलब जो शब्द मेरे मुंह से निकल जाते हैं वो मैं वापस नहीं ले सकती। तो एक बार मैंने वो फॉरवर्ड का बटन दबा दिया बिना सोचे, और 10 लोगों को अगर गलत और किसी से अगर कोई जोक हो ये हो तो फर्क भी पड़ता है, लेकिन क्रिटिसिज्म जिससे किसी और की इमेज को या किसी और को दुख पहुंचेगा उसको मैंने उसमें साथ दे दिया, तो मैंने वही किया ना कि कोई फोन कर रहा है तो मैंने भी जाके वाह वाह बहुत बढ़िया आप करो। तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए। और मैं इस सभी लोगों को, श्रोताओं को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक मेच्योरिटी दिखाइए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी लीजिए कि आप जो पढ़ते हो आगे करने के पहले आप एक पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प नहीं लगाना है, आपने चिट्ठी पढ़नी है पहले कि आपके पास आई और फिर सोच समझ के आगे।
1: माधुरी जी, आपने जो ये चाकू का एग्जांपल दिया ना, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि उसी चाकू से एक डॉक्टर भी जो है ना ऑपरेशन करता है, किसी की जान बचाता है, तो वो चाकू जो है उस चाकू की नियत में कोई खोट नहीं है, चाकू तो बस चाकू का काम करेगा। नियत अच्छी, बहुत अच्छी और बुरी बन जाती है उस चाकू जिसके हाथ में, उस पे डिपेंड करता है। तो साथियों, ये जो एक बहुत जरूरी चीज उन्होंने बताई कि आपके पास कोई मैसेज आता है, आप उसको तुरंत किसी और को नहीं फॉरवर्ड करें, आप पहले उस पे ध्यान दें, समझे उससे किसी का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है। इन चीजों पे अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो हमारे हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ति आती है, एक नेगेटिव न्यूज, एक नेगेटिव एनवायरमेंट को रोकने से हम बचा सकते हैं हमारे देश को, हम बचा सकते हैं खुद को, हमारे समाज को, इस प्रकार के एक वातावरण से हम खुद को बचा सकते हैं। माधुरी जी, यहाँ पर मुझे आपसे एक चीज पूछने का मन करता है, आप सर्विस में रहते हुए भी आपने बहुत बहुत बहुत सारे ऐसी घटनाओं को देखा होगा, क्योंकि फौज में सर्व करना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि जब हम सिविलियन सुनते हैं तो हमारे को भी लगता है कि वाओ, क्या मेरा देश इतना महान है। तो क्या आप हमारे श्रोताओं के बीच में ऐसी कुछ कहानियां रखना चाहेंगे जिससे हमें भी फील हो कि चलो फौज में तो नहीं है लेकिन फौज की कहानियां तो है हमारे पास।
0: बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जो मैंने मतलब कर पाई कोविड के टाइम। आपने देख, जब कोविड में अपना देश इतनी मुश्किल से गुजर रहा था और जहां पूरी दुनिया ने कहा कि इंडिया में तो इतना पॉपुलेशन है, गरीबी है, मतलब ना कोई खास पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, तो लोग तो मक्खियों की तरह मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूरा देश जुट गया और जो हमारी वीकनेस थी पॉपुलेशन वो हमारी कामयाबी में बदली। और सारी लीडरशिप से लेके जब मोदी जी ने कहा कि भैया ये युद्ध है और हमें संघर्ष करना है, तो हर हर भारतीय के दिमाग दिल में एक ही वही उभर आया कि भाई इसमें कुछ ना कुछ करना है। सबने बात मान ली। जब लॉकडाउन हुआ लोगों को बहुत मुश्किलें हुई, बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया। मास्क जो है इंडिया ने दुनिया को दिया। जब लोग कह रहे थे कि ये कपड़े का मास्क नहीं चलेगा, तब इंडिया ने पहला कपड़े का मास्क यूज किया और दुनिया ने नमस्ते दुनिया तक पहुंच गई। तो हमने लगा कि हमारा देश देखो कैसा मान है। और जो मतलब हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, महीनों के अंदर पूरे देश में बच्चा बच्चा भी RT-PCR नाम जानने लगा। तो ये हमारा भारत महान है। तो एक तो ये कहानी है जिससे लगा कि भाई ये भारत देश ये ऐसा कर सकता है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, जो वैक्सीन भारत ने बनाई वो बाकी देशों के साथ शेयर करें। जब बाकी बड़े बड़े देशों ने mRNA इधर उधर की वैक्सीन बनाई तो पहले अपने ही सिर्फ सोचा, भारत ने अपने साथ साथ अपने साथ वाले देशों को भी देना शुरू। तब हर एक भारतीय को लगा होगा कि ये मेरा भारत महान है। तो ऐसी चीजें कई हुई। अच्छा, दूसरी छोटी सी घटना बताती हूँ, वो मतलब अब फौजी के हिसाब से, जैसे कि मैं नॉर्दर्न कमांड उधमपुर जम्मू पोस्टिंग थी और पूरे मेडिकल की इंचार्ज थी मेजर जनरल केस पे, जहाँ मेरे अंडर पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया आया था। और उसी टाइम आर्टिकल 370 जो 370 वाला अपना आर्टिकल है वो एब्रोगेट हुआ था, और लोगों को लगा कि अभी तो बहुत गदर होने वाला है अभी तो। लेकिन आपने देखा कि कितना स्मूथली और उसके बाद इतने मतलब दिन तक पूरे, और हमने पूरे देश ने कश्मीर की तरफ, कश्मीर ने देश की तरफ, सब एक जुड़ के मिल गए। तो तब लगा कि भाई कैसे हम एक साथ जुड़ के, जो वल्लभ भाई पटेल ने कहता उनका सपना पूरा, हम साथ जुड़ के देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ थी। और तब फौज ने बहुत बढ़िया काम तब भी किया। उसके साथ साथ एक छोटी सी मजेदार वाली बात, ले मैं श्रोताओं तक पहुंचा, जब मैं सारी एरिया ट्रेवल करती थी, मैं पहली महिला थी वहां पे उपस्थित थी, और ये जिम्मेदारी ली थी वॉलंटियर करके कि मुझे अभी उस साइड एरिया में करनी है नौकरी। तो काफी जगह, और अभी सारी हमारी मेडिकल ऑफिसर्स लेडीज फील्ड दूर दूर तक सारी फील्ड एरियाज में पोस्टेड है। तो मुझे जब सीनियर ऑफिसर्स, जनरल ऑफिसर कमांडिंग डिविजन एरियाज में जाती थी, तो काफी लोग मतलब सीनियर ऑफिसर कहते कि हमारे पास थोड़ी लेडीज की मात्रा ज्यादा है फील्ड हॉस्पिटल्स में, और यहाँ पे पेट्रोलिंग करना पड़ता है, ड्यूटीज कॉर्डन ड्यूटीज करनी पड़ती है। तो उसमें तो मैंने इनको सिर्फ पूछा कि क्या लेडीज मना कर रही है ये करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम ऐसा नहीं है, वो तो बल्कि जिद करती है कि मैं ही जाऊंगी। तो मैंने कहा फिर आप क्यों उनको रोकते हैं, आप उन्हें लेडी जैसे मत देखो, आप उनको भी एक भारतीय मतलब बेटी है, जो वो भी उतना ही काम करना चाहती है, उसका हक बनता है, उसे बेफिक्र जाने दीजिए और करने दीजिए। तो उस टाइम लगा मेरा भारत महान है, देखो कैसी अपनी बेटियां आगे का सब जगह पे करने को तैयार है।
1: ये जो बात आपने कही ना कि दुर्गा भी तो एक बेटी है, तो वैसे ही जो हमारे मतलब आई थिंक प्रोफेशंस में जेंडर नहीं देखना चाहिए,
0: नहीं,
1: प्रोफेशन प्रोफेशन होना चाहिए। डॉक्टर डॉक्टर है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किन्नर हो, लेकिन अगर वो डॉक्टर है तो उसकी उसकी जो सारी खासियत है उसके पेशे में है, और पेशे में कोई भी लिंग जाति भेद ये नहीं होना चाहिए। ये आपने बहुत एक अच्छा मैसेज दिया अपने अफसरों को भी, एंड आपने हमारे साथ तीन बहुत पावरफुल स्टोरीज शेयर की, और तीनों पावरफुल स्टोरीज में मुझे कुछ लिंक दिखा, जिसे कोविड में आपने बताया कि देश की जो एकता है उस एकता की ताकत ने दुर्व्यवस्था होने से हमको बचाया, एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हमको देश पूरे विश्व के सामने एक एग्जांपल बनाया। दूसरा जो आपने एग्जांपल दिया उसमें आपने ये भी बताया कि अगर हौसले बुलंद है तो यू कैन वॉलंटियर फॉर डिफिकल्ट टास्क, और तीसरा जो स्टोरी था आपका कश्मीर का, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कई बार हम यहाँ जब बैठते तो हमको लगता है कश्मीर में तो बहुत कुछ चल रहा होगा, या जो हम न्यूज में सुन रहे होते हैं। तो आपने जो वो कश्मीर का एक बहुत ब्यूटीफुल हिस्सा हमारे सामने रखा कि ऐसा नहीं है, हमेशा वहाँ केओस है ऐसा नहीं है, वहां की खूबसूरती जो है जिसके लिए हमीनस्तो कहा गया है, उस चीज को हम सामने लेकर के आए, उन चीजों पर हम अपना गौर करें। माधुरी जी, मुझे ना आपसे घंटों बात करने का मन करता है, इतना सारा स्टोरीज होगा आपके पास, बट आई नो आपके पास भी समय का अभाव है, आपने अपने बहुत कीमती टाइम टेबल में से हमारे लिए एक छोटा सा टाइम निकाला है। आई एम श्योर आप हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे तब हम आपसे और विस्तार में बात करेंगे, स्पेशली हम बात करना चाहेंगे आपके इस नए रोल पे जो कि अभी महाराष्ट्र शासन में, महाराष्ट्र शिक्षा में आपका एक बहुत बड़ा अहम भूमिका है। फौज से या AFMC से निकल करके एक सिविलियन मोड ऑफ वर्क में आना कितना डिफिकल्ट लग रहा है?
0: डिफिकल्टी जरूर थी, लेकिन ऐसी कोई इतनी परेशानी नहीं थी, क्योंकि प्रिंसिपल सेम थे, इरादे वही थे, और ये जो मैंने एक नया चैलेंज स्वीकारा वो अपने मन से, जैसे फौज में अपने मन से आई थी, अभी भी मुझे कोई जबरदस्ती तो थी नहीं, लेकिन मुझे लगा जो मेरे इतने साल का तजुर्बा है, जहाँ पे मैंने एक डॉक्टर के तौर पे लोगों की सेवा करी है, एक सोल्जर वर्दी पहन के इतनी सारी डिसिप्लिन मुझ में आई हुई है, और एक जो टीचर है, मैंने काफी मतलब प्रोफेसर डीन रह चुकी हूँ, तो इनको लेके जो देश में अभी क्या समस्या है, समस्या ये है कि हमारा दुश्मन अभी हेल्थ बना हुआ है। पुअर हेल्थ हैज बिकम एन एनिमी। और इसमें सिर्फ अगर हम हर एक सोचे कि कोई और करेगा तो काम, सो हर एक को अपना अपना करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं वो प्राइम मिनिस्टर साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी में भी मेंबर हूँ, तो वहां पे मैंने यही कहा था कि हमारा जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो एक तीन तिकोना प्रॉब्लम है। एक कोने पे है हमारे जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेजेस है जो शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी कोने पे है हमारे जैसे ICMR है, CSIR है, सारे बड़े बड़े लेबोरेटरीज है जहाँ पे बहुत सुंदर अनुसंधान हो रहा है, और तीसरी तरफ है जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ वगैरह प्रोग्राम्स है, नेशनल प्रोग्राम्स है जो पब्लिक की के आरोग्य की तरफ देख रहा है। लेकिन ये तीन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। अगर आप रोज की इसमें देखो तो सब अपने अपने इसमें माहिर है, सब बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी और जो नए नए चीजें आ रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI, इन सबको अगर हम कैसे इस्तेमाल करके एक इनको साथ जुड़ जाए, तो अगर ये करें तो शायद हमारा जो हमारी तरक्की हो रही है वो शायद दुगुने स्पीड से, तिगुने स्पीड से चलेगी। और इसमें सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि अब मेरा वक्त आया है कि मैं इसको कैसे करूं, तो उसी चैलेंज को लेके मैंने इस जॉब के लिए मतलब अप्लाई किया, मुझे सिलेक्ट किया, और मेरा सौभाग्य है कि ये सब करने को मुझे मौका मिला है। तो अभी भी इसके पहले मैं कोर्स कर रही थी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच टू वेलनेस, क्योंकि आज हम जो ह्यूमन हेल्थ को है हम टुकड़ों में कर देते। मैं उसको कहती हूँ सबको क्या हुआ है, इस्टाइटिस, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, और आइटिस मतलब हम कहते हैं आर्थराइटिस, कार्डाइटिस मतलब इन्फेक्शन हो गया। तो मैंने कहा हमें क्या हो गया है, सबको इस्टाइटिस हो गया है, तो इससे अगर बाहर निकलना है तो हमें वेलनेस के लिए सोचना पड़ेगा। तो क्या हम लोगों के परिवर्तन, और ये सबसे बड़ी हेल्थ यूनिवर्सिटी है, 496 कॉलेजेस अलग अलग के इसके अंडर है, 1,00,000 से ज्यादा छात्र हैं, तो उन तक कैसे हम एक, मैं अकेली तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर एक मूवमेंट शुरू कर दी तो इसको जो है जैसे अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जन आंदोलन, तो अगर ये युवा पीढ़ी अगर जुड़ गई और इन्होंने थोड़ा थोड़ा बदलाव करना शुरू किया, तो हमारा देश मतलब पूरी कोई शक नहीं है कि और जल्दी से जल्दी इसमें हेल्थ का जो है, मैं उसको कहती हूँ रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, अभी एवोल्यूशन की जरूरत है, हेल्थ एवोल्यूशन, हेल्दी एवोल्यूशन, और ई को यूज करके डिजिटल टेक्नोलॉजी, और ऑलरेडी देश का ये है जो डिजिटल हेल्थ की तरफ जा रहा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनी हुई है, तो इनको सिर्फ हम क्या उधर तक छोड़े या हम ग्रास रूट लेवल तक ले जाए, तो ये चैलेंज मैंने अपनाया।
1: ये जो चैलेंज मुझे लगता है आपने अपनाया है, लेकिन ये चैलेंज हम सब फेस कर रहे हैं। और ये जो आपने इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की, आई थिंक दिस इज अ बिग सोल्यूशन। ये एवोल्यूशन भी है बट सोल्यूशन भी अपने आप में। यहाँ पर मुझे एक चीज आपसे जानने का मन करता है कि आपके अंडर में 1,00,000 स्टूडेंट है जो कि आज देश में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, देश के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें आरोग्य लाने के लिए। लेकिन जो ये ब्रेन ड्रेन हम देखते हैं कि सिर्फ इस पेशे में नहीं, हर पेशे में ही होता है, जहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ लिख लेने के बाद दे स्टार्ट फीलिंग कि नहीं, यहां तो कुछ नहीं रखा है, हम बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जैसे आपने भी बताया कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हुई एंड यू आर ए मेरिटोरियस स्टूडेंट, आपके जो अवार्ड्स हैं हम फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं वो आपसे भी बड़े बड़े अवार्ड्स हैं तो आपके पेरेंट के सामने में भी एक चुनौती था या एक ऑप्शन था, आपके सामने में भी था कि आप चले जाओ बाहर, थोड़ा और अच्छा कर लो। ऐसे में आपने खुद को कुछ ऐसे उसूल दिए होंगे जिसकी वजह से आप यहाँ रहे। क्या आपको लगता है हमारे युवाओं के पास भी कुछ ऐसे उसूल होने चाहिए जैसे भले वो बाहर जाए लेकिन वापस आने का जो उसूल है, या देश को वापस देने का कुछ पैरामीटर्स है आपके पास? हाउ डू यू वॉन्ट टू ट्रेन दीज यंग माइंड्स?
0: आई ट्रेन देम एग्जैक्टली दिस कि कोई जबरदस्ती हम डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे जैसे हमने इंडिपेंडेंस फाइट में देखा कि अगर किसी एक का हत्या होती थी तो 10 खड़े हो जाते थे, तो अपने पास सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी अपने देश के पास है। आज यंगेस्ट पॉपुलेशन दुनिया में हमारे पास है, 65% हमारे लोग 35 साल की उम्र के नीचे है, अंडर है, तो जो जाना है जाए, लेकिन अब वक्त आ गया है जैसे कि अपने प्रधानमंत्री और सारे कहते हैं कि अमृत काल अगले 25 साल में होना है, तो जिसको जाना है किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम सब तक पहुंचाए कि बदल अगर आना है तो आप उस बदलाव का हिस्सा बनो, आप इस मूवमेंट का पार्ट बनो और उसका फल देखो, क्योंकि अब वक्त वो आया है। मतलब शुरुआत से हम लोग जो था ना कि ईस्ट लुक्ड वेस्ट, कि फॉरेन देश में चले जाए, अब देखिए युवा पीढ़ी यहाँ है, यूथ यहाँ है, एजुकेशन यहाँ आएगा, स्किलिंग यहाँ आएगा, तब वेस्ट जो है ईस्ट को देखेगी, हमारे पास उसके लिए जवाब होंगे जब हम साथ जुड़ेंगे। अगर हमने सब छोड़ दिया कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं है मैं चला जाऊंगा, तो ये एक सोच है। दूसरी सोच है कि अगर मैं मुझे चीज दिखाई नहीं देती है तो महात्मा गांधी जी ने जैसे बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी, अगर आप देखना चाहते हो आप क्या कर रहे हो, तो अगर मैं इस कुर्सी पे बैठी हूं, एक है कि ये कुर्सी अब मुझे क्या पावर दे, दूसरा है कि मैं इस कुर्सी तक क्या अपनी तरफ से दे सकती हूँ, व्हाट कैन आई गिव बैक। तो उदाहरण के लिए अभी मैं वीसी बनी यहाँ पे, मतलब कोविड में 2 साल कोई नहीं, और क्योंकि ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में थी, पूरा जंगल था, लेकिन मैंने कहा बदलाव अगर लाना है तो मुझे सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा, तो पुराना बंगला जहाँ पे टूटा फूटा था उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके मैं एक दिन भी कहीं बाहर नहीं रही, गेस्ट हाउस से सीधा इधर के बंगले में शिफ्ट हुई, और जब लोगों ने देखा कहते मैडम आप कैसे, मैंने कहा अब चलो हम सब साथ करेंगे। 3 महीने में 650 लोग जो यहाँ काम मेरे साथ जुड़ गए, सैटरडे संडे हमने, और आज मेरा कैंपस, हमारा कैंपस आप आके देखिए इतना हरा और इतना सुंदर बन गया है कि सब लोग देखने की ये कैसे हो गया। तो ये एक छोटी सी कहानी है कि हम अगर अच्छा काम करने लगे तो हमारे साथ 10 और जुड़ जाएंगे। तो हर एक में लीडरशिप की क्वालिटी है, कहीं पे छुपी हुई है। अगर हर युवा ने सोचा कि मैं क्या कर सकूं, मेरे 5 दोस्त मेरे साथ, चाहे वो कचरे को सेपरेट कर सेग्रीगेट करे, मतलब आपकी सेवा वही नहीं है कि वर्दी पहन के आप बॉर्डर पे खड़े रहो, आप अपने आसपास जो हो रहा है, अपने गरीब, आपने 5 तय किया कि मैं अपनी जिंदगी में अपने 5 लोगों की मदद करूंगा, चाहे वो छात्र हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे, और किस तरीके से उनको डिग्निटी रखते, उन्हें क्या चाहिए। सबसे ज्यादा हमारे पास कीमती चीज है वो हमारा वक्त। अगर हम किसी जो मायने रखता है, मैं अपना वक्त थोड़ा सा दे दूं, कुछ और थोड़ा, तो मुझे उसका आनंद दुगुना मिल जाए।
1: ये जो आपने बात कही कि बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, छोटे से शुरुआत करें, अपने से शुरुआत करें, अपने आसपास से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें, ये बहुत अहमियत रखता है। और दूसरी चीज जो मैंने आपके आंसर से पिकअप किया खुद के लिए भी, वो ये कि जिसको जाना है वो भले जाए, लेकिन ये याद रखे कि परिवर्तन के समय में मैंने क्या किया, मेरा योगदान कितना था। कहीं मैं सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर के, ऑब्जर्वर या केवल दर्शक बनकर के देख रहा था, या मैं उस कहानी का एक हिस्सा भी था। तो साथियों, ये एक बहुत अच्छा सवाल भी है हमारे लिए कि हम पूछे खुद को, क्या मैं केवल दर्शक हूँ या क्या मैं उस कहानी का एक छोटा सा लेकिन अहम पात्र, भूमिका निभाना चाहता हूँ। माधुरी जी, एक और चीज मुझे आपसे जानना था कि जैसे आपने बताया कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया करती हैं, तकनीक का, जैसे आपने बताया कि एक त्रिकोण है जहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आपने एक ऐप के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, मानस ऐप। क्या है ये मानस ऐप, कौन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए।
0: वी क्रिएटेड इट अंडर द पीएसए ऑफिस, अ मानस ऐप व्हिच इज दे इन देयर ओन टाइम I'm very happy that 10,800 students have downloaded it in my university. And it is about time management, you know, mindfulness, good sleeping habits. It's about mental wellness, looking at ways of reaching them, not expecting them. In fact, a lot of people come to me, can we run these courses? I said, don't stress them anymore. If I tell them, get out from that, it becomes like a compulsion. It adds to their stress. Leave it to them to choose, and in their own time, tell them what can be done, what should not be done, like all these social media and things. So I've started a initiative, it's kind of rare to have that, but I call it Kula Guru Ka Katta. Every month, I come online to listen to problems and give them some kind of an advice. Anyone who wants to join in is welcome to join in.
1: So this app that you shared, is it only for the medical students or is it...
0: No, it's for the general population. But when we developed it and wanted it rolled out, we went to the... See, because the principal scientific advisor's office can fund it only to a certain level. So we got the funding. I got CDAC, NIMHANS and AFMC, the psychologists and psychiatrists. Yeah. And CDAC gave the infra, and it's on the NIC platform, and we launched it. And we asked Ministry of Health to take on this thing, but they were not sure it will work. So I said, okay, I get your point. Why don't I do a testbed launch? So in December, I launched it for MUHS. Anyone can download it from, in fact, it's the short link I've put on my website. But it's there even otherwise for others to use. But first phase, we made it for 18 to 35 year olds. Because I feel this is the most stressful period. Before 18, the parents worry for you. And after 35, you know, you've found your kind of space and you've got into a job. But the youth that is 18 to 35 is the most stressed today. Maximum suicide. So we targeted that age group and created in two languages, Hindi and English. But from this, it's anonymized, its data privacy is there. But we are running a back end, we'll analyze what is the feedback, how many used, how many benefited. Because they're given an option of giving feedback that yes. And if we do that, we're going to go with that to the Ministry of Health. So then it can be converted into all Indian languages and put out, and just like the UPI model, the vision is that plug and play we can have for different age groups, specific for women, for children. So we can all then have it on a common platform and everyone can use it in their own homes, because digital is the way forward.
1: Madhuri ji, aakhir ke kuch sawal jo hai rapid fire round mein le jayenge. हालांकि सवाल तो बहुत है जो कि बहुत पूछने का मन है, बट आई एम श्योर समडे सम टाइम अगेन विल मीट. लेकिन उसके पहले ये रैपिड फायर राउंड, आई एम श्योर यू विल बी ऑलवेज यस सर. शुरुआत करते हैं, AFMC क्या है?
0: जो मेडिकल कॉलेज है.
1: हाँ जी,
0: मेरी जान है.
1: सो स्वीट. शिक्षा क्या है?
0: वही जिससे मैं किसी और के काम आ जाऊं.
1: ब्यूटिफुल. सेवा क्या है?
0: जिससे मुझे और शांति और सुख मिले.
1: वाओ, आई एम लाइक, क्या जवाब है, ब्यूटीफुल. जब आपको 3 स्टार मिले, राइट? 3 स्टार इकट्ठे मिले या एक के बाद एक मिले, राइट? एक के बाद एक. यहाँ तो साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी जी जो है वो देश की तीसरी ऐसी महिला सेवाधारी है फौज की जिनको 3 सितारा पदक मिला हुआ है, विच इज अ वेरी बिग डील. तो मैं आपसे ऐसे क्रोनोलॉजिकली पूछना चाहूंगा, पहला सितारा आपके लिए क्या था?
0: पहला वही था कि अब मैं एक ट्रांजिशन फ्रॉम अ क्लिनिकल, जो मैं तब तक सिर्फ डॉक्टर थी, अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है. मैं बाकी डॉक्टरों के लिए क्या कर सकती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कैसे निभाऊ, वो चैलेंज था और उसको मैंने पहली अपॉर्चुनिटी ली आगे बढ़ी.
1: तो पहला सितारा आपके लिए चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी था. दूसरा सितारा क्या था?
0: मैं डीन बन के AFMC गई, जो सबसे प्यारा सितारा था.
1: सो दूसरा सितारा आपके लिए प्यार और नॉस्टैल्जिया, आपकी मेमोरीज वो थी. तीसरा सितारा आपके लिए क्या था?
0: तीसरा सितारा वो था जिससे मैं पहली बार पूरे देश के लिए कुछ कर सकी, क्योंकि मुझे IDS में जब गई तो लेट जनरल रावत सीडीएस के साथ मैं पहली डीसीएच मेडिकल थी और कोविड आ चुका था और पूरी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पे सौंपी और उसको मैंने कहा ऑपरेशन को जीत, कोविड पे जीत, कोऑपरेशन से जीत, वो मेरी तीसरा सितारे का ताज था।
1: को जीत, कोऑपरेशन से ही जीत होती है, चाहे वो कोविड हो या कुछ भी हो, कोऑपरेशन के बगैर जीत संभव नहीं। एंड जैसे आपने लेफ्टिनेंट लेट जनरल रावत जी का भी जिक्र किया, वो ब्रह्मा कुमारी के साथ और रेडियो मधुबन के साथ भी कई दफा उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया हमारे लिए, तो उनको भी आज हम याद करते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत क्या है?
0: माँ है, बाप पिताजी है, मतलब सबसे ऊपर पेरेंट्स टीचर्स जो कहते हैं ना मातृ देवो भव गुरु देवो भव, उसके ऊपर है भारत।
1: शायद इसलिए भारत की ऐसी बेटी, आप जैसी बेटी सबके लिए उदाहरण है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस अगेन, मतलब मैं आपके जवाब के जो दायरे है ना उसमें चला जा रहा हूँ, मैं सवाल भूल जा रहा हूँ। दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ योर आंसर्स। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा कौन है आपके लिए?
0: युवा कौन है? मेरा भविष्य। मैं हमेशा जब स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ, युवा कहती हूँ, तब मुझमें एक स्फूर्ति आती है क्योंकि उनमें मैं भविष्य देख, ताकत, सब चीज उनमें देख।
1: एक डॉक्टर कौन है?
0: वो जो अपनी पीड़ा, अपने कष्ट को एक साइड रखते हुए दूसरों के कष्ट सुनने के लिए तैयार हो जाता है।
1: वाह। माधुरी कौन है?
0: वह जो मेरे माँ बाप ने घड़ाया, मतलब भगवान ने रचा, वो जिससे पूरे प्रेम और सबकी मधुरता से परवरिश हुई और वही जो अपनी मधुरता देश के लिए अभी कंटिन्यू देना चाहती है।
1: वाह माधुरी जी, आपसे बात करते हुए लगा ही नहीं कि घड़ी भी कोई चीज होती है और समय भी कुछ होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल मैं लेकिन हमारे सारे श्रोता आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे और हम आपसे सीखते रहेंगे, प्रेरणा लेते रहेंगे। और मुझे लगता है कि हमारा देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है क्योंकि उसको गाइड करने के लिए आपके जैसा तपस्वी बैठा हुआ है। साथ में मुझे ये भी कहते हुए बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं लगता है कि हमारे देश में कई ऐसी माधुरियां हैं जो आपको देख करके प्रेरणा ले रही हैं और जो आपके जैसा आगे बढ़ना चाहेंगी, आपके जैसा बनना चाहेंगी, और आपसे आज प्रेरणा लेते हुए मुझे लगता है उनके जीवन में आज एक बहुत बड़ा चेंज आया है। माधुरी जी, आपने हमारे साथ समय बिताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नए प्रोजेक्ट के लिए मैं कहूंगा, और अगर आपके पास कोई मैसेज हो हमारे श्रोताओं के लिए, फॉर लास्ट मैसेज।
0: शांतनु जी, मैं बहुत बहुत और ब्रह्म कुमारी जी सबसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया आके सबसे बात करें, सब तक पहुंचने का। मेरी आवाज आपने काफी युवाओं तक पहुंचाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरा ही दूसरी मेरी की सर्वे संतु निरामया, यही है क्योंकि डॉक्टर हूँ और सब अपनी अपनी देखभाल करे, अपने इस फिट माइंड इन अ फिट बॉडी। अगर अपनी जिम्मेदारी हर एक जन अपने लिए कराए तो अपना देश पूरा स्वस्थ और निरोगी हो जाए।
1: थैंक यू सो मच माधुरी जी, आपने हमारे साथ समय बिताया और हमारे को एक बहुत सिंपल बट पर बहुत पावरफुल मंत्र दिया, फिट माइंड इन अ फिट बॉडी। लेट्स एवरीवन गिफ्ट आवरसेल्व्स अ गुड बॉडी, अ फिट बॉडी। आज हम एक निर्णय लेते हैं कि मैं अपने को एक बहुत अच्छा शरीर, एक फिट शरीर गिफ्ट करूंगा, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अच्छा मन अपने लिए, अपने परिजन के लिए, अपने वतन के लिए जरूर तोहफे के रूप में सामने रखूंगा। इन्हीं विचारों के साथ माधुरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे दोबारा आप हमसे मिलेंगे।
0: यस, थैंक यू सो मच।
1: साथियों, माधुरी जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज अपने जीवन के द्वारा हमारे सामने रखा है कि अपने उदाहरण से दूसरों को उदाहरण बनाया जा सकता है। अपने अंदर छिपी हुई मधुरता, शालीनता, देशभक्ति से न केवल आसपास के समाज में हम उन्नति ला सकते हैं, लेकिन पूरे देश को सशक्त और उन्नत एक साथ बना सकते हैं। माधुरी जी ने हमें ये भी समझ दी कि एक समय होता है जिस समय आवश्यकता होती है मदद की, वो समय आज है। मैं, आप, हमारे युवा, हम सब आज अपने देश में क्या मदद कर सकते हैं, अपने आसपास के परिवेश में क्या मदद कर सकते हैं, वो सवाल आज हम पूछे अपने आप से। और जैसा कि उन्होंने अपने लास्ट मैसेज में बताया, अ फिट माइंड इन अ फिट बॉडी, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ आप सभी श्रोता अपने अपने ऊपर जरूर ध्यान रखते हैं, अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ साथ अपने देश का, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने में बहुत बड़ी दवा है। और मुस्कुराते रहेंगे, रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसे ही कई हस्तियों से आप मिलते भी रहेंगे। दोबारा मैं आपके सामने आऊंगा एक और हस्ती के साथ आपके चहेते कार्यक्रम यशस्वी भारत में, जहां पर मैं, आप और हमारे अतिथि मिलकर के चर्चा करेंगे क्या है भारत, कौन हूं मैं और कैसे मैं और भारत इकट्ठे हो सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच। ओम शांति। जय हिंद। जय भारत।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
3: अश्विनी
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे,
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बरं घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नमस्कार रेडियो श्रोतागण, प्रस्तुत है आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर एक खास घोषणा। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा और बनाइए अपनी जीवन को खास। ज्ञान चिंतन केवल रेडियो पुनेरी आवाज पर, जहां हर आवाज है पुनेरी की पहचान। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक है विचारों का भी उपवास करें। उपवास केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन और विचारों के लिए भी आवश्यक होता है। अक्सर हम भोजन का उपवास करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने विचारों का उपवास किया है? नकारात्मक, अनावश्यक और व्यर्थ के विचार हमारे मन को अशांत कर देते हैं। यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हुए सकारात्मक सोच को अपनाएं, तो हमारा जीवन अधिक सुखद एवं शांतिपूर्ण हो सकता है। मनुष्य का जीवन उसके विचारों से निर्मित होता है। अच्छे विचार जहां जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, वहीं नकारात्मक विचार मनुष्य को कमजोर और निराश कर देते हैं। जब हम अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लोभ और नकारात्मकता को स्थान देते हैं, तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए विचारों का उपवास करने का अर्थ है अनावश्यक और हानिकारक विचारों से मुक्ति प्राप्त करना। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे विचारों का उपवास करें। इसके लिए सबसे पहला और जरूरी काम है नकारात्मकता से बचें। अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास करें। दूसरा, ध्यान और योग अपनाएं। ध्यान और योग के अभ्यास से मन शांत होता है और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ती है। सकारात्मकता को अपनाएं, अच्छे विचारों को पढ़ें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें और आत्मिक विकास पर ध्यान दें। स्वयं को क्षमा करें और दूसरों को माफ करें। मन में पुरानी घटनाओं का बोझ न रखें, क्षमा करने से मन हल्का हो जाता है। संतुलित जीवन शैली अपनाएं। सही खानपान, नियमित व्यायाम और अच्छी दिनचर्या से मन और विचार स्वच्छ रहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि विचारों के उपवास के लाभ क्या क्या होते हैं। सारांश में, मानसिक शांति और आनंद की प्राप्ति, आत्मनियंत्रण और धैर्य की वृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का संचार, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, संबंधों में मधुरता और सामंजस्य। इस चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन का उपवास करते हैं, उसी प्रकार मन को शुद्ध और शांत रखने के लिए हमें विचारों का उपवास करना चाहिए। जब हम अनावश्यक और नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं, तो जीवन अधिक संतुलित, खुशहाल और सफल बनता है। इसलिए सच्चा उपवास केवल भोजन का नहीं बल्कि विचारों का भी होना चाहिए। ये रहा आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
0: हम आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। साथियों बने रहें और अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। रेडियो पुनेरी आवाज पर खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
3: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे। इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकंड, अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अहो ऐकलत
1: का हो सिस्टर शिवानी इज़ विद अस. आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति सिस्टर. मैं एक लाइन शेयर करना चाहूंगा. लाइन बड़ी सुंदर है. व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू आउटसाइड इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ कैपेबिलिटी.

0: But when it comes to the inside, it is just a question of willingness.
1: So sweet. This is so beautiful.
0: Willingness वाली बात last episode भी मैं आपसे पूछी थी मैंने कि मन मेरे को कैसे मैं करूं, will कैसे आए, willingness ही नहीं आती है.
1: Willingness, जैसे walk करनी है morning, तो एक दिन करते हैं, फिर कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, फिर दो दिन करते हैं, फिर जैसे ही उसको करने लग जाते हैं और उसकी रिजल्ट दिखाई देती है, फिर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल. फिर अगर एक दिन नहीं करते हैं तो कहते हैं आज समथिंग इज मिसिंग, आई डिडंट गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक. बट दिस लाइन, सी द डीपर मीनिंग ऑफ इट, वॉट वी कैन डू और कैन नॉट डू आउटसाइड इज अ क्वेश्चन ऑफ केपेबिलिटी, बट वॉट वी कैन डू इनसाइड is only about willingness. मतलब inside के लिए capability की बात नहीं है. क्यों? क्योंकि inside का काम करने के लिए हर एक उतना ही equally capable है. उसमें capability नहीं चाहिए, capability हर एक के पास है. क्यों? क्योंकि हर आत्मा की वो original quality. Let's say acting skill, ये आपकी capability है. ये आपके पास है, मेरे पास नहीं है. किसी के पास इंटेलिजेंस कम, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कोई स्किल कम, किसी के पास ज्यादा. लेकिन अंदर की जो चीज है, ये द इनर वर्क, ये कैपेबिलिटी हर एक के पास इक्वल है. अब इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस, मतलब करने, क्योंकि हर आत्मा ओरिजिनली क्या है.
0: लेकिन एक आत्मा वीक है, एक आत्मा स्ट्रांग है.
1: लेकिन हर आत्मा ओरिजिनली पावरफुल है. सी इट्स लाइक दिस, सपोज आपकी ड्रेस एक लाइट ब्राउन कलर है, मेरी व्हाइट है, तो फिर आप कितना भी ट्राई करें, आप कितना भी स्क्रब करें उसको, आप उसको व्हाइट नहीं कर पाएंगे. लेकिन क्योंकि अंदर की कैपेबिलिटी सबकी सेम है, विच मीन्स हर एक की ड्रेस व्हाइट है, हर एक की व्हाइट है. अब कितने भी दाग अलग अलग लगे हो, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल कैपेबिलिटी, ओरिजिनल कैपेसिटी हर एक की सेम है, सो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ विलिंगनेस नाउ कि कितना स्क्रब करना है. लेकिन जैसे एक्टिंग का टैलेंट आपके अंदर है, अगर मेरे अंदर विलिंगनेस भी हो, विलिंगनेस भी है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, तो कितना भी कर लो
0: टैलेंट ही नहीं है.
1: नहीं है, ये चीज है जो आउटर टैलेंट स्किल्स है, इसमें कैपेबिलिटी चाहिए.
0: जैसे गाना गाना है,
1: अब मैं कितना, मैं सपोज आई क्रिएट अ वेरी पावरफुल थॉट कि मुझे सुंदर गीत गाना है, विलिंगनेस भी है, मैं उसके लिए 24 आवर्स अटेंशन रख के दिन में 12-12 घंटे रियाज करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन वो मास्टर क्या कहेगा? कहेगा नहीं है ये आपके पास, डोंट स्पेंड एनी मोर टाइम एनर्जी ऑन दिस, क्योंकि ये चीज आपके पास.
0: ये भी तो दिखा सकता ना मास्टर आपको कि ये चीज नहीं है तो आपके पास ये है,
1: दैट्स ओके,
0: इसको फीड कीजिए.
1: हाँ, मतलब कैपेबिलिटी अलग अलग है, कम और ज्यादा, लेकिन अंदर की स्थिति के लिए अलग अलग नहीं है.
0: रियली?
1: यस.
0: मैं समझ रहा था गुरुओं के पास, संतों के पास ज्यादा है, या गिरवे कपड़े वालों के पास ज्यादा है, जो मेडिटेशन बड़े गाँव.
1: अपने साथ ही कंपेयर कर लो, पहले ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दिया, तो यू हैव मूव्ड टुवर्ड्स बिकमिंग अ सेंट. नो, दिस इज इट. सेंट मींस कौन? जिसने अपनी स्क्रबिंग करने शुरू कर दिया. आप अपने आप को ही देख लीजिए कि कल अवेयरनेस नहीं थी तो एक अलग लेवल पर थे, आज है चेंज आया तो एक अलग लेवल पर है. सो यू आर कमिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ सेंट, दिस इज इट. हो गया, मतलब स्क्रबिंग होनी शुरू हो गई है. What was required? Willingness. Only willingness. कि मुझे, that's why we had said the want to change. Why to change? How to change? बहुत easy है. The want to change अगर है तो it's going to happen. तो willingness. और अब willingness हमारे अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने खुश रहने के लिए सारे तरीके try कर लिए हैं, सब कुछ खरीद लिया है, लोगों से मांग लिया है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हुआ है, संतों से मिल लिए, फॉरेन ट्रिप्स पे हुआ है, सब कुछ तो हमने कर लिया, कुछ बचा नहीं है. अभी कहाँ खुशी ढूंढेंगे, कहाँ शांति ढूंढेंगे?
0: एक प्रॉब्लम बचा है सिस्टर, कि जब तक पुराना स्वभाव था तब तक सब डरते थे, चुप रहते थे, लेकिन जैसे सब देखते हैं कि मैं आजकल ये परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ये मेडिटेशन करता हूँ, आपके एपिसोड्स करता हूँ, ये प्रोग्राम करता हूँ, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, और बड़ी चुभती है बात कि जो मैं 5% भी इम्प्रूव कर रहा हूँ वो नहीं देखते हैं। लोग बोलते देखे अभी तक वही गवाही है, उनको तो 95 दिख रहा है, देखा अभी तक वही है। तो कभी मन करता क्यों करूं फिर, मैं छोड़ो ना वापस चलो उधर।
1: अपने लिए, हम किसके लिए कर रहे हैं, मेरे अंदर कितना चेंज आ रहा है ये बाहर बाद में दिखाई देगा, पहले मेरे अंदर दिखाई देगा। पहले भी अगर आप चलो गुस्सा करते थे वो तो अलग बात, अगर बहुत मीठा बोलते थे हमेशा, हमेशा प्यार से बात करते थे, लेकिन आपकी सोच कैसी थी वो किसी को नहीं दिखाई देगी, वो सिर्फ आपको ही पता है। लेकिन आज आपकी सोच में कितनी क्लीनलीनेस आ रही है, कितनी सफाई आ रही है, कितनी सोच पहले जो थी उससे थोड़ी सी ऊपर उठ रही है। पहले किसी की बात को पकड़ के रखना, अब उसी बात को इजिली लेट गो कर देना। दूसरे को क्यों 95 दिख रहा है, जैसे आपने कहा विशेषता का चश्मा पहनना, वो अभी तो हमने पहना नहीं है ना सबने, हम सबको सारा दिन क्या दिखाई देता है, कमजोरियां। तो अगर आपने 95% पुराना है संस्कार, 5% चेंज है, लेकिन मेरी दृष्टि अगर 95 पर ही जानी है तो जब आपका 5% कमजोरी रह जाएगी और 95% अच्छे पर चला जाएगा तो भी मेरी दृष्टि वो 5% पे जानी, क्योंकि वो मेरी दृष्टि की प्रॉब्लम है, वो मेरा क्रिटिकल एटीट्यूड है, वो मेरा पुराना लेबल है जो मैंने आप पर लगाया है और आपको उसी के थ्रू देखना है। वो मैं देखती रहूंगी जब तक 1% भी बचेगा। लीव दैट टू बी माय प्रॉब्लम, दैट्स माय हीलिंग दैट हैज टू हैपन। आपका फोकस सारा किस पर होना है, अपनी हीलिंग पर, अपनी परसेंटेज देखते रहें कि 5 था आज 6 हुआ, आज 7 हुआ, ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल। तो इसकी अटेंशन हमें रोज रखनी है, जैसे आपने कहा कि रोज की प्रेपरेशन जो हम करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में हम इसको 4 सब्जेक्ट्स की तरह कैटेगराइज करते हैं कि 4 सब्जेक्ट्स हमें रोज ध्यान रखना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा।
0: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा।
1: ज्ञान मतलब डेली स्टडी, रोज जैसे हमने देखा पहले कि सवेरे उठकर वो दुनिया की बातें, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, न्यूज, टेलीविजन, ये बाद में, सुबह सुबह ज्ञान का सब्जेक्ट। ज्ञान का सब्जेक्ट मीन्स 15-20 मिनट, आधा घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज, ये नॉलेज को ग्रहण करना, पढ़ना, सुनना। अगर आप सेंटर पर आते हैं तो हर शहर में आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं, इनफैक्ट हर एरिया में है, विद इन 5 किलोमीटर्स देयर विल बी अ सेंटर। आज सारे विश्व में 133 कंट्रीज में 8,500 सेंटर्स हैं। तो क्यों इतने सेंटर्स की जरूरत है, एक जगह से भी तो सब कुछ हो सकता था, एक बार पता चल गया अब अपने आप करो, नहीं, सेंटर चाहिए, हर एरिया में सेंटर चाहिए।
0: 8,500 सेंटर,
1: हाँ जी, ताकि क्या करेंगे, हर रोज जो सारे उस एरिया में है वो उधर सेंटर पर आकर रोज सुबह वो ग्रहण करेंगे, डेली स्टडी, ताकि दैट विल बिकम द फाउंडेशन फॉर द डे। जब तक नॉलेज ही नहीं तब तक तो चेंज आएगा ही नहीं। हाउ टू चेंज, द नॉलेज इज नीडेड, इन्फॉर्मेशन विल क्रिएट थॉट्स। तो फर्स्ट चीज जो प्रोवाइड की जाएगी वो है ज्ञान, इन्फॉर्मेशन। फिर दूसरी चीज है मेडिटेशन। कई भाई बहने कहेंगे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, होता नहीं है मेडिटेशन, फर्स्ट स्टेज नहीं होती है, फर्स्ट स्टेज ज्ञान होता है, सेकंड स्टेज मेडिटेशन होती है। इट्स लाइक शरीर कमजोर है तो फर्स्ट स्टेज एक्सरसाइज नहीं होती है।
0: अच्छा,
1: मैं कमजोर है, उठा भी नहीं जा रहा हूं, मैं सोचू मैं आज जॉगिंग करूं, होने नहीं वाला है।
0: एक्सरसाइज के काबिल बनाओ बॉडी,
1: एक्सरसाइज के काबिल के लिए पहले डाइट लेंगे ना। इतना कमजोर है तो पहले उसको ताकत देकर थोड़ा सा तो इस लेवल पर लाएंगे कि चल तो सके, फिर एक्सरसाइज करना बाद में। तो इसी तरह फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान है कि मन के अंदर इतनी अनक्लीन थॉट्स हैं, इतना कुछ भरा हुआ है, पहले कोई श्रेष्ठ चीज भरें तो सही। तो फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान लेना चाहिए, तब तक मेडिटेशन होगा नहीं, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स श्रेष्ठ चिंतन, बहुत अच्छी थॉट क्रिएट करके उसके उस थॉट के अनुभव में जाना। लेकिन वो तो तब होगा जब अच्छी इन्फॉर्मेशन पहले भरेंगे। तो पहले ज्ञान, सेकंड मेडिटेशन, तो वो भी हम सेंटर पे करते हैं जाकर। एंड मेडिटेशन मींस अपने को पहचानना, कि मैं आत्मा हूँ, ये सारा दिन अवेयरनेस, मैं आत्मा हूँ, प्योर, पीसफुल, ब्यूटिफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, ब्लिसफुल, आई एम अ ब्लिसफुल बींग, दैट्स व्हाई वी सेड बींग, द बींग इज ब्लिस. अब मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, वो कैसा है, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ लव. एंड मेडिटेशन मीन्स मुझ आत्मा का उस पिता के साथ एक कनेक्शन, जिससे मुझे उसकी पावर, उसका ज्ञान, ये सारा कुछ मुझ आत्मा के अंदर भरता जाए. तो ये सेकेंड स्टेप. अब ये मेडिटेशन करने से क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेज ली ज्ञान, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की ताकत. सी इट्स लाइक डाइट ली, भोजन खाया लेकिन हिले ही नहीं,
0: हजम कैसे होगा,
1: डाइजेस्ट कैसे होगा. आज हम टीवी ऑन करे तो हम प्रवचन पे प्रवचन पे प्रवचन सुन रहे हैं, किताब उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा बुक्स जो आज बिक रहे हैं मार्केट में, दे आर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स. Gone are the days where it's fiction and all. It's self-improvement books, self-help books. क्योंकि लोग अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, तैयार हैं, तो वो सबसे ज्यादा मटेरियल आज है, वर्कशॉप्स है, सत्संग है, ट्रेनिंग है. लेकिन ये ज्ञान है, भोजन है, अब इसको सेकेंड स्टेज पर लेकर जाना है कि पढ़ा सुना लेकिन डाइजेस्ट मीन्स उस पर मनन, चिंतन, चर्निंग. तो ये सेकेंड मेडिटेशन. तो ज्ञान, ज्ञान के साथ ताकत. अब आई सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, थर्ड, धारणा. क्योंकि ये फर्स्ट टू भी बहुत सारे कर रहे हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, मेडिटेशन भी रोज कर रहे हैं, लेकिन वहां तक उसको रख के थर्ड जीवन में सारा दिन अपना ओल्ड नॉर्मल के डेफिनेशन से चल रहे हैं. तो धारणा में नहीं आया. धारणा मतलब जो लिया अब उसको धारण करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज. हमने क्या सोचा, मैंने मेडिटेशन कर लिया ना सुबह उठकर, जैसे आपने कहा मैंने मेडिटेशन कर लिया ना, तो अब सब कुछ अपने आप होना चाहिए. द चेंज हैज टू कम ऑन इट्स ओन. आई वेंट फॉर अ 10-day मेडिटेशन रिट्रीट, नाउ रेस्ट एवरीथिंग विल हैपन ऑन इट्स ओन. आई वेंट ऑन अ 10-day मेडिटेशन रिट्रीट, आई डिड अ 10-minute मेडिटेशन इन द मॉर्निंग. वो सब मैंने किया शक्ति क्रिएट करने के लिए किया. अभी वो मेरा संस्कार नहीं बना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. राजयोग मेडिटेशन जो हम करते हैं, इट्स नॉट फॉर फीलिंग नाइस कि 10 मिनट अच्छा लगे, इट इज फॉर चेंजिंग संस्कार्स. संस्कार कब बदलेगा, जब तक वो कर्म में नहीं आएगा तब तक संस्कार नहीं बनेगा. हमें संस्कार चेंज करना है. लेट्स से आई एम अ पीसफुल सोल, ये सुबह इन्फॉर्मेशन ली, आई एम अ पीसफुल सोल, मेडिटेशन भी किया, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ, दोनों चीजें अच्छी हो गई, बहुत अच्छी तरह से हो गई. लेकिन अभी ये इधर है, थॉट लेवल पर है. अभी संस्कार कौन सा है, अभी भी गुस्से का, वो तो संस्कार बना हुआ है. वो संस्कार कैसे बना, बहुत बार गुस्सा करके बना,
0: उसकी भी प्रैक्टिस की गई ना, मतलब
1: लेकिन बार, अगर गुस्सा यहाँ होता ना सिर्फ, तो अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग संस्कार न बनता. इट इज बीइंग, डूइंग, बिकमिंग,
0: उसका इस्तेमाल किया गया बार बार.
1: बिकमिंग, सी बिकमिंग कब बनेगा, बीइंग,
0: डूइंग,
1: देन बिकमिंग. आई एम अ पीसफुल सोल, आई क्रिएटेड एट द लेवल ऑफ बीइंग, बट जब तक आई ब्रिंग इट टू
0: डूइंग,
1: इट विल नॉट बी अ बिकमिंग.
0: बिकमिंग,
1: गुस्सा क्या किया, मन में गुस्सा आया, फिर उसको बाहर कर्म में लाया, फिर संस्कार बना. अब आई एम अ पीसफुल सोल, अब उसको कर्म में लाना है. कर्म में आएगा, बार बार आएगा, तो वो बन जाएगा मेरा संस्कार. सो इट्स धारणा. जो आज सब अवेयर हो रहे हैं कि मेडिटेशन इज नॉट 10 मिनट्स, मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट हाफ एन आवर, स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल मींस
0: 24 घंटे.
1: वो चीज कर्म में आने चाहिए, जब तक कर्म में नहीं आएगी परिवर्तन नहीं आएगा. तो अब ये करना है कि सुबह जो लिया, जिस पर चिंतन किया, अब उसको अटेंशन रखना है सारा दिन. जो आपने कहा ना टेंशन, टेंशन नहीं, अटेंशन. अटेंशन और टेंशन में फर्क, अटेंशन मींस मुझे ये करना है, टेंशन मींस हाय मुझे करना है, हुआ नहीं, अगर नहीं हुआ तो, अब मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं, ये टेंशन।
0: कब तक मेहनत करूं, कब तक कोशिश करूं,
1: ये टेंशन।
0: मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं इस लायक ही नहीं हूँ,
1: ये टेंशन। टेंशन मीन्स अनप्लेजेंट थॉट्स। अटेंशन, मुझे करना है।
0: मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, मैंने कहा गुरुजी शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, बार बार सुन के उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि तू शांति मांगता है, शांति के कर्म भी करता है क्या?
1: Absolutely.
0: तो तब समझ में नहीं आई थी। आज आपने इतना सुंदर तरीके से क्लियर कर दिया पॉइंट कि जब मुझे संस्कार बदलना है तो मुझे पहले उस हिसाब से चलना भी है,
1: कर्म में लाना है,
0: डूइंग के बाद
1: बिकमिंग।
0: बहुत सुंदर ये लाइन,
1: सिर्फ आस्किंग से नहीं बिकमिंग होगा।
0: इतना क्लियर हुआ आज मैं, थैंक यू सो मच।
1: आई वॉन्ट पीस नहीं, जब तक वो डूइंग, चूंकि वो यहाँ से नहीं संस्कार बनेगा। संस्कार अगर ऐसे बन जाता तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी। संस्कार ऐसे बनता ही नहीं है। संस्कार बनेगा थॉट, कर्म, संस्कार, थॉट, कर्म, संस्कार। द साइकिल इज ओनली लाइक दिस।
0: एक लाइन जैसे शूटिंग में मुझे कभी कभी नहीं आती थी या रेडियो पे, तो उसको 100 बार पढ़ता, हजार बार भी पढ़ा हुआ,
1: लेकिन आज
0: तो ऐसे 2 मिनट में कर लेता,
1: क्योंकि वो बन गया संस्कार।
0: Oh, nice.
1: वो बन गया संस्कार।
0: ये कब होगा पता नहीं अब मेरा।
1: नहीं, ये रॉन्ग थॉट, ये रॉन्ग थॉट। यू हैव टू से, जैसे मैंने वो संस्कार क्रिएट किया, मैंने ये संस्कार भी कर लेना है, बिकॉज इट नाउ आई नो हाउ टू क्रिएट अ संस्कार।
0: इसमें कोई एज की बात नहीं है, तब तो मैं जवान था या अब ऐसा।
1: आत्मा इतो सर, दैट्स व्हाई इट सेज कैपेबिलिटी आउटसाइड। आउटसाइड चीजें बदलती है ना, एज बदलती है, सिचुएशंस बदलती है, इनर वर्क ओनली विलिंगनेस, उसमें कैपेबिलिटी की कोई बात
0: नहीं। 70 साल 80 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है,
1: हम बहुत साल पुराने हैं। आत्मा तो इटर्नल है, कब से चल रहे हैं, एज मैटर नहीं करेगी, विलिंगनेस टू डू इट। तो धारणा पे बहुत अटेंशन रखना है। एंड द फैक्ट दैट यू नो सम पीपल विल आस्क, इज इट ट्रू दैट आई एम अ पीसफुल सोल? इफ इट वॉज नॉट ट्रू, यू वुडंट बी एबल टू डू इट सो इजिली।
0: नहीं, फिर मांगता भी क्यों मैं बार बार?
1: नहीं, पर आप कर भी ना पाते। मांगता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, बट मैं हूं ही ओरिजिनली वो। इसका प्रूफ इस बात में है कि जिस दिन आपने डिसाइड किया, जिस क्षण आपने डिसाइड किया, आपने उसको कर लिया। क्योंकि अगर आप ये डिसाइड करें कि मेरे को आज एक्टर बनना है, तो जिस क्षण डिसाइड करें उस क्षण नहीं बन पाते हैं।
0: अभी मैं गाना गाने जाऊं
1: तो नहीं कर सकते,
0: लाइन भी नहीं आएगी,
1: क्योंकि वो स्किल है नहीं, वो स्किल को डिवेलप करना है। लेकिन पीसफुल क्वालिटी को डिवेलप नहीं करना है, कहीं से लेके नहीं आना, वो ऑलरेडी है, विलिंगनेस टू यूज इट। जैसे ही वो थॉट क्रिएट किया, वो इतनी इजीली कर्म में आया, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर था। अगर किसी के अंदर शांति का संस्कार नहीं है और वो सोचे आज मैं पीसफुल रहूंगा, दे नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज वो है ही नहीं उनके पास, बिकॉज इट्स देयर। हम जब सोचते हैं और अटेंशन रखते हैं, वो हो जाता है।
0: तो हम सबके पास,
1: एवरी सोल हैज दोज ओरिजिनल क्वालिटीज। तो ज्ञान लिया, योग, मेडिटेशन, पावर, तीसरा धारणा। धारणा पे बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि नहीं तो कई सालों से ज्ञान, 20 साल, 30 साल, 40 साल से मेडिटेशन, संस्कार में चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि धारणा, पूरा दिन में अटेंशन नहीं रखा। दिस हैज टू कम इनटू माय लाइफस्टाइल, माय थॉट हैज टू बिकम माय लाइफ, इट्स माय लाइफस्टाइल, द वे आई लिव। दिस इज हैज टू बी, स्पिरिचुअलिटी हैज टू बी द वे आई लिव, नॉट द वे आई थिंक।
0: Beautiful.
1: It's not the way I think, it's the way I live. And life mein kya aana chahiye? What I think. To start thinking pe hoga, lekin it will be spiritual. You will be a spiritual person when you live that way. Aapke jeevan mein, karam mein wo dikhai
0: de. Live and think.
1: Think and live. Think and then bring it out. And jab ye teen cheeze hoti hai, to chauthi bahut easy ho jati hai. And that is seva. Seva means, jo mujhe mila, जो मैंने अपने अंदर धारण किया, अब मुझे वो सबके साथ शेयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि शेयरिंग करने से क्या होगा, जो चीज भी आप शेयर करेंगे वो आपके पास कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये भी 100% है।
0: ये इसका मतलब,
1: जो फिजिकल चीज है वो किसी और को देने से कम हो जाती है, जो इंटरनल चीज है वो किसी और को देने से, क्योंकि जितनी, जैसे गुस्सा किसी और को देने से क्या
0: बढ़ जाता है,
1: बढ़ जाता है,
0: संस्कार पक्का होता है।
1: इंटरनल चीज, इंटरनल चीज जितना देंगे उतना कहीं गुना बढ़ती जाएगी। तो फोर्थ सब्जेक्ट इज सेवा। सेवा मीन्स शेयरिंग। अब शेयरिंग हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो मुझे मिला ये मैं सबके साथ कैसे शेयर करूं, हाउ डू आई डू दैट,
0: नॉलेज।
1: नॉलेज ये तीन तरह से हम कर सकते हैं। एक, शेयरिंग द एक्चुअल नॉलेज, यू नो, जैसे हमने देखा सपोज ये प्रोग्राम,
0: अभी आप ज्ञान शेयर कर रही है ना,
1: हाँ, सो दिस इज शेयरिंग। ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है, ताकि हमें जो मिला हम इसको अब सबके साथ शेयर कर सकते हैं, फिर हर एक उसको ले सकता है, वो अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा, वो फिर औरों के साथ शेयर करेगा, सो वेरी सून इट विल जस्ट स्प्रेड एवरीवेयर एंड इट विल बेनिफिट, एवरीवन विल यूज इट फॉर देयर हीलिंग। तो ज्ञान शेयर कर सकते हैं। नाउ दिस कैन बी शेयर्ड के हम, जैसे ये टीवी का प्रोग्राम, बहुत सारे भाई बहने बताते हैं हमने देखा ना, फिर हमने मुझे अपने इस फैमिली को भी बोला, फ्रेंड्स को भी बोला, आप भी देखना, दिस वॉज शेयरिंग। क्योंकि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जो चीज मुझे बेनिफिट की आई फील आई शुड शेयर इट विद।
0: छोटे छोटे SMS लोग कितना शेयर करते हैं,
1: दिस इज इट,
0: एक अच्छी लाइन मिलती है तो शेयर, जो मैं पढ़ता हूँ,
1: शेयरिंग। तो आज अगर हम ईमेल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, या वन ऑन वन हम जब किसी से भी मिलते हैं, हमें जो मिला ऑलवेज शेयर। शेयर करने से कई गुना बढ़ जाता है। सो दैट इज एक्चुअल शेयरिंग ऑफ नॉलेज। दूसरा है अपने गुणों से सेवा। आपका गुण, आपकी क्वालिटी जितनी बार कर्म में आएगी उतनी वो क्वालिटी दूसरों को मिल जाएगी। सपोज मैं परेशान हूं लेकिन आपने प्यार से बात की, तो आपने की आपको मिली पहले वो शक्ति, लेकिन सेकेंड वो शक्ति किसको मिली,
0: आपको,
1: वो मुझे मिली। सो यू जस्ट शेयर्ड योर क्वालिटी विद मी, यू जस्ट शेयर्ड योर एनर्जी विद मी।
0: तो आपकी मेरी डबल कैसे हुई आपके साथ शेयर करने से,
1: आपने क्रिएट की, या तो ये सिर्फ पढ़ी थी लेकिन यू यूज्ड इट एवरी टाइम। जितना यूज करेंगे कर्म में आएगा, जितना कर्म में आएगा संस्कार बनेगा। अब आपने क्योंकि यूज किया मुझे मिला, मैं नाराज थी लेकिन आपने प्यार से बात की, शांति से बात की, मुझे मिला, मुझे मिला तो मेरी एनर्जी कैसे हुई, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई। मेरी एनर्जी अच्छी हो गई तो मेरे से आपको क्या मिलेगा, फिर अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो दो बार मिल गई ना, पहले वाइल क्रिएटिंग, देन यू हेल्प्ड मी टू हील माई सेल्फ, देन आई रेडिएटेड दैट बैक टू यू, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अलोंग विद रेडिएटिंग दैट बैक टू यू, आई गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स,
0: दुआएं।
1: देखो मैं कितनी नाराज थी, इन्होंने फिर भी कितने प्यार से बात की, ब्लेसिंग। तो आपके पास कितने गुणा मल्टीप्लाई होकर आ गया,
0: ब्लेसिंग भी मिल गई और मेरी अपनी ही प्यार करने की जो
1: पावर है वो बढ़ गई
0: ना, वो डबल हो गया। पहले मुझे मिला फिर मैंने दिया,
1: पहले आपको मिला फिर आपने दिया,
0: फिर
1: आपने जो दिया उसको मैंने यूज किया, यूज करके मैंने क्रिएट किया, तो फिर मैंने भी रेडिएट किया, अब रेडिएट किया वो आपको मिला। सो सेकंड, फर्स्ट व्हाइल गिविंग, देन व्हाइल getting it back, and third, blessings. Blessings for what you have done. जब भी आप शेयर करेंगे, एक आप रोड ही किसी को क्रॉस करा दो, कोई वहां खड़ा है उससे रोड क्रॉस नहीं हो रही है, वो कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हाय एकदम टाइम पर आए थे मुझे हेल्प करने के लिए, ये ब्लेसिंग्स। तो जब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए ब्लेसिंग मिलती है, तो वो चीज जो हर आत्मा आज ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है, शांति, प्यार, खुशी, वो अगर किसी को मिले तो वो कितनी ब्लेसिंग्स देंगे। पानी पिला दो तो कितनी ब्लेसिंग्स मिल जाती है, आप किसी को एक भोजन खिला दो कितनी ब्लेसिंग मिलती है, शांति मिले उसको। तीसरा, सपोज कर्म में कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं मेरे आसपास, आई एम नॉट कमिंग इनटू इंटरेक्शन विद एनीबॉडी, बस अपनी सोच को सुंदर रखें। जितना आपकी सोच साफ रहेगी, आप रेडिएट कर रहे हैं ब्यूटिफुल vibrations into the atmosphere, ये भी सेवा है। इसीलिए हम यहाँ सीखते हैं कि सेवा भी तीन लेवल पर होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा, तीन लेवल पर। मन से सेवा मतलब हर एक को अच्छी वाइब्रेशन भेजना, यहाँ बैठे हैं मालूम है कोई बीमार है, वहां अच्छी वाइब्रेशन भेजो, मालूम है कहीं अर्थक्वेक हुआ है, बहुत लोग दर्द में है, वाइब्रेशन भेजो, जस्ट सिट बैक. दुनिया में जितने लोग आज बीमार हैं, जितने लोगों को आज कैंसर है, सेंड गुड वाइब्रेशंस. ये हम सेवा कर रहे हैं. यू नो, जैसे हम धन भेजते हैं कहीं कुछ हुआ है, ऐसे ही कहीं कुछ हुआ है बहुत पीसफुल वाइब्रेशन भेजनी है. तो ये हुई मनसा से सेवा. दूसरा वाचा सेवा, नॉलेज जो मिली वो सबके साथ शेयर करनी है. और तीसरा कर्म में सेवा, मतलब गुणों को अपने कर्म में लेकर आना है, उससे औरों को एनर्जी मिलेगी एंड वो मल्टीफोल्ड होकर फैलती जाएगी. एंड व्हेन दिस हैपेंस वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. एक आत्मा भी अपने ऊपर अगर परिवर्तन करे, यू नो, कई बार हम कहेंगे घर में टाइम नहीं है, ये है, हम इतने बिजी है. लेट अस अंडरस्टैंड, अगर परिवार में एक आत्मा भी ये करती है, एक, सारी फैमिली नहीं. कई बार लोग कहते हैं मैं हस्बैंड आएंगे ना तो मैं आऊंगी. डोंट वेट, चेंज बिगिंस विद वन पर्सन.
0: पाकिस्तान से शुरू किया, आज 8,500 सेंटर आपने कहा. मुझे उम्मीद है कि सारे दुनिया में 8,500 नहीं बल्कि हर घर सेंटर बन जाए.
1: Definitely.
0: और सेंटर बन जाए यानी कि ज्ञान का सेंटर.
1: Bilkul.
0: ये कोई रिलीजन तो है नहीं,
1: hey, नहीं.
0: बट प्यार का सेंटर, पीस का सेंटर. सिस्टर, एक मैं लास्ट में कुछ शेयर करना चाहूंगा. मुझे एक छोटी सी बच्ची ने कहानी सुनाई. उसने कहा कि अंकल, एक क्लास में ना बहुत वो लड़का था, नॉटी था. उसने बोला कि मैं टीचर को बोलूंगा, बताऊंगा कि वो हमेशा राइट कैसे नहीं है, रॉन्ग भी तो हो सकती है टीचर. मैं उसको प्रूफ कर दूंगा कि वो रॉन्ग है. तो वो इंटरवल में तितली लेके आया, एक तितली हाथ में पकड़ ली और पीछे बेंच पे लास्ट खड़ा हो गया. और टीचर को उसने चैलेंज किया, कहता टीचर ये बताओ कि तितली जिंदा है कि मरी हुई है. टीचर तो टीचर ही होती है. वो समझ गई कि अगर मैं बोलूंगा जिंदा है तो वो ऐसे मसल देगा वो मर जाएगी. और बोलूंगा अगर मैं कि वो मरी हुई है तो ऐसे छोड़ देगा, दो तरफ से फंसा. तो बहुत सुंदर जवाब दिया उसने. टीचर ने कहा कि बेटा एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स. बेटा सब कुछ तुम्हारे हाथ में है. अब दीदी ने इतना सब सिखाया, बताया, डिस्कशन किया, उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा सारी सेवा की. अब आप क्या लेते हैं, कैसे उसे जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ अब आपके हाथ में है. एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स. थैंक यू सो मच. नमस्कार. थैंक यू सिस्टर.
1: ओम शांति.
2: टू चेंज एनी हैबिट वी टेक केयर ऑफ 4 एस्पेक्ट्स: ज्ञान, नॉलेज, योग, मेडिटेशन, धारणा, इनकल्केशन एंड सेवा, शेयरिंग. स्टडी of spiritual knowledge in the morning and attention on application in situations is dharana. We shift from our reactive behaviors to consciously responding from our original qualities of peace, love and respect. Share the knowledge with others through words, actions and vibrations. When we bring our qualities into action or radiate pure thoughts to others, it is seva. Raj Yoga meditation means connecting to the supreme power, God, and taking his powers and love to heal our blockages and emerge our original sanskars.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga meditation center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 0999974455.
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार. आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज. और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ खाबो का सफर इस प्रोग्राम को। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज विशेष हम लोग ई अक्षर से गाने सुनेंगे और इसका कलेक्शन पूजा के पास है जो हमारे साथ बैठकर आपको एक एक कलेक्शन के बारे में बताएगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी की तरफ से पूजा का बहुत बहुत स्वागत है खाबो के सफर में।
1: थैंक यू सो मच सर, नमस्ते कि आपने मुझे फिर से अपने शो में इनवाइट किया है। तो इसी के साथ मैं अपना पहले जो मेरा पहला गाना है उसका नाम बताना चाहूँगी। तो मैं अपने पहले गाने से शुरुआत करती हूँ और वो मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। तो वो मेरा पहला गाना है, वो है एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये गाना जो है मोहब्बत से रिलेटेड है। तो जो मोहब्बत करता है वो बोलता है सामने वाले को कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे अपने पलकों की छांव में रहने दो। और वो उनसे ये गुजारिश करता है कि आप हमें इसकी इजाज़त दो कि हम आपके साथ रह सके। बड़ी अच्छी लाइन है इसके लिए मेरे पास एक, प्यार में कोई तो दिल तोड़ देता है, प्यार में कोई तो दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई तो भरोसा तोड़ देता है, जिंदगी जीना कोई गुलाब से सीखे, जो खुद टूट कर भी दो दिलों को जोड़ देता है।

ओके पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया, 1961 का जंगली फिल्म का। हसरत जयपुरी साहब ने इसे लिखा है और लता मंगेशकर जी ने इसे गाया है। शंकर जयकिशन का संगीत, जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर हिट गाना है। और जंगली फिल्म का नाम सुनते ही एक और गाना भी याद आता है, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। लेकिन आज उस गाने को नहीं, इस गाने को ही सुनेंगे। आप सुनाए हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज। पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है। अगला गाना कौन सा है आपके पास?
2: सर, अब जो मेरा दूसरा गाना है वो है एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। बड़ा ही अच्छा गाना है। जब हम किसी को अपना दोस्त मानते हैं तो हम पे वो एक एहसान सा हो जाता है। अगर किसी को सच्चा दोस्त मानते हैं और वो हमारे पास नहीं होता तो बहुत याद आती है उसकी। मेरी भी एक फ्रेंड है जो भी बहुत दूर है मेरे से, जिससे एक अलग सी फीलिंग है उसके लिए मेरे दिल में। और जब वो पास में थी तो मैं उससे उतना बात नहीं करती थी, पर अभी वो मेरे साथ नहीं है तो बहुत याद आती है उसकी। इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छी लाइन है जो मैं अपनी फ्रेंड के लिए बोलना चाहूँगी। तेरा एहसान हम कभी नहीं चुका सकते, तू अगर मांगे जान तो इनकार नहीं कर सकते। माना जिंदगी लेती है इम्तिहान बहुत, तू अगर हो साथ तो हम कभी हार नहीं सकते।

चलिए, एहसान मेरा दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया। गबन फिल्म का, 1966 का। गबन ये फिल्म जो है प्रेमचंद का एक उपन्यास का नाम था जिस पर ये फिल्म बना। जी हाँ, अब जो गाना हम लोग सुन रहे हैं वो हसरत जयपुरी साहब का ही लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये बहुत ही खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। और कहा जाता है जब हम दोस्ती करते हैं तो एहसान की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ता है। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनी की आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर इस कार्यक्रम को। और पूजा के पास बहुत ही सुंदर कलेक्शन है जिसको हम लोग एक एक करके सुन रहे हैं, 50s और 60s का कलेक्शन। कहते हैं इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुन्दर कितना दूर है। तो पूजा बताइए, अब अगला गाना कौन सा है आपका?
1: ओके सर, अभी जो गाना है मेरा वो है एक लड़की भीगी भागी सी। सारे गानों के कलेक्शन में सबसे अच्छा जो गाना मुझे लगता है वो ये गाना है, एक लड़की भीगी भागी सी। ऐसा गाना है जिसको सुनते ही डांस करने का मन करता है। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं इसमें। और आजकल पुराने गानों की बात हो रही है तो ये जो गाना है एक लड़की भीगी भागी सी, ये गाना हम भी नए जमाने से हैं अभी के तो, पर ये गाना एक ऐसा है जिसे हर कोई सुना ही है और अभी भी बड़े ही अच्छे से सब सुनते हैं इस गाने को। बहुत ही अच्छा लगता है इसे सुनने में। और इस गाने की बोल बड़े ही अच्छे से एक मोतियों में पिरोए गए हैं। इस गाने के लिए मेरे पास एक डायलॉग भी याद आता है, जैसे कि लड़की बोलती है, जानते हो जानू पापा ने बोला है कि फेल हुई तो रिक्शे वालों से शादी करा दूंगा। लड़का बोलता है, शांति रख शांति, मेरे पापा ने भी बोला है कि फेल हुआ तो रिक्शा ही खरीदूंगा। शायरी भी बोल देती हूँ एक, सच तुम्हें पाने के सिवा इस दिल की और हसरत नहीं कोई, दुनिया में हसीन तो बहुत है लेकिन तुमसे खूबसूरत कोई नहीं।

0: चलती का नाम गाड़ी 1958 का ये खूबसूरत गाना आपने याद करा, जिसे खास मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था और किशोरदा खुद एक्टिंग भी कर रहे थे और गाना भी उन्होंने ही गाया है। तो सचिन देव बर्मन साहब का ये म्यूजिक इस गाने में है, तो आइए सुनते हैं एक लड़की भीगी बागी सी।
1: लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, खाबो का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कहते हैं शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है, जंगल में चुनाव नहीं होते। तो पूजा बताइए, आप आगे किस गीत की तरफ आप ले चल रहे हैं हम सभी को?
2: ओके सो सर, अब जो मेरा अगला गाना है वो है एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। बड़ा ही अच्छा सा गाना है। इसमें बुत एक पुतले से रिलेटेड मीन्स एक मूर्ति मूर्ति को बताता है कि इसमें वो जिससे अपनी महबूबा से प्यार करता है वो उसका मूर्ति बना करके मतलब बुत बना करके उसकी पूजा करेगा और उससे प्यार करेगा और उसके सिवा वो कुछ भी नहीं। इसके लिए बोलना चाहूँगी, अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ। घर से बाहर वो नकाब से निकली, सारी गली उसकी फिराक से निकली, इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से और हमारी ही तस्वीर उनकी किताब से निकली।

ओके ओके, एक भूत बनाऊंगा तेरे घर के सामने, गाना मैंने सुना था। एक घर बनाऊंगा, आपने एक भूत बनाऊंगा बताया। कोई बात नहीं, चलिए असली नकली फिल्म में तो ऐसा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, पूजा ने जिस गीत को याद करा है, 1962 में एक फिल्म आई थी असली नकली, उस फिल्म का ये गाना है, एक भूत बनाऊंगा तेरे घर के सामने और उसकी पूजा करूंगा। तो हर्षद जयपुरी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए।

0: देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। और पूजा के पास बहुत ही सुंदर कलेक्शन है, एक एक करके गाने हम लोग सुन रहे हैं। तो आइए कहते हैं, डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता नहीं है कि डाली कमजोर है, फिर भी वो उस डाल पर है। क्यों? क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंख पर भरोसा है। दोस्तों, तो चलिए, आशा करता हूँ आप भी अपने दिलो दिमाग से कार्यक्रम को सुन रहे हैं और यकीन है आपके पास कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूजा, बताइए आप कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को।
2: ओके सर, अब जो मेरा गाना है वो है तेरे घर के सामने मेरा घर बनाऊंगा। इस गाने में एक जो महबूब होता है वो अपने महबूबा से इतना प्यार करता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता और बोलता है कि तेरे घर के सामने मेरा घर बनाऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं कुछ बोलती हूँ। काश मेरा घर तेरे घर के करीब होता, मिलना तो ना सही, देखना तो नसीब होता। उसका हाथ आ गया है मेरे हाथ में, कितना हसीन है जिंदगी उसके साथ में।

चलिए, आखिर आप 1963 का जिस गीत का जिक्र हमने थोड़ी देर पहले, उस गीत का आपने आखिर याद किया ही। हसरत जयपुरी साहब का लिखा, लता और रफी साहब का गाया हुआ ये खूबसूरत गाना है, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा तेरे घर के सामने। तो आइए सुनते हैं, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, मस्ती भरा गीत था। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा गीत आपके पास है पूजा?
1: ओके सर, अब जो मेरा अगला गाना है वो है एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। सर ये गाने को सुन के इतना सुकून मिलता है, बड़ा ही अच्छा गाना है और हमारे जीवन से रिलेटेड है। मेरे पास कुछ लाइनें हैं इसके लिए, तो मैं वो बोल देती हूँ। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार कर सकते हैं, एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते में इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा और बोल देती हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी जाएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।

ओके पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया 1969 का। इस फिल्म का नाम ही है जीने की राह, ये खुद एक मोटिवेशन लाइन है। और चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया इस फिल्म का, आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी हम लोग सुनेंगे। एक बंजारा गाए जीवन का गीत सुनाए। चलिए, बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन है इस गीत में और कहीं ना कहीं ये गाना आपके दिल को भी छू लेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस गीत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। इस कार्यक्रम को कहते हैं इतनी ठोकरे देने के लिए शुक्रिया ए जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ गया मुझे। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। आइए आगे बढ़ते हैं। पूजा, आपके इस गीत की तरफ आप हमें ले चल रहे हैं।
2: सर, अब जो मेरा आगे का गाना है उसकी लाइन है, एक बेवफा से प्यार किया उसे नजर का चार किया। हम जिसे प्यार करते हैं जरूरी नहीं है कि वो भी हमसे प्यार करे। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ देखने को मिलता है कि उतार चढ़ाव आते हैं, जहाँ पे हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं पर वो हमें धोखा दे देता है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है और हम वहाँ के वहाँ ही रहे। इसके लिए थोड़ी सी लाइन है मेरे पास, उसको बोलती हूँ। चेहरे के लिए आईने कुर्बान किए हैं, इस शौक में आपने बड़े नुकसान किए हैं। महफिल में मुझे गालियाँ देकर हैं बहुत खुश, जिस शख्स पर मैंने बड़े एहसान किए हैं।

ओके, 1951 का फिल्म। ओहो, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। और ये आवारा फिल्म का है, हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर का गाया, शंकर जयकिशन साहब का ही संगीत। तो चलिए, आवारा एस एल्बम का ये खूबसूरत नगमा अभी हम लोग सुनेंगे। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज। पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है। अगला गाना कौन सा है आपके पास?
1: ओके सर, जो मेरा अगला गाना है उसकी उस गाने की बोल है, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। तो इस गाने में शाम का जिक्र किया गया है, और जब कोई जिससे हम प्यार करें अगर वो हमारे साथ में हो या फिर नहीं भी हो या बाई चांस हमें दिख जाए, तो उस टाइम पे तो हमारी जो फीलिंग होते हैं वो अलग ही होते हैं, और शाम का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। तो दिल तो खो ही जाना है, इसके लिए मेरे पास थोड़ी सी लाइन है। एक हसीन शाम को दिल की बात कहने को दिल करता है, दर्द ए जुदाई को सहने से दिल डरता है, क्या करे किस्मत में है दूरियां।
0: ओके, दुल्हन एक रात की, 1966 का ये एल्बम है, ये फिल्म है। राजा मेहंदी अली खान साहब ने इसे लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था, मदन मोहन जी ने इसे संगीत से संवारा था। तो आइए सुनते हैं, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। 1960s के और 50s के खूबसूरत गाने हम सुन रहे हैं पूजा से। तो चलिए पूजा, आखिरी गाना कौन सा आपके पास है जिसे आप सुनाना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को?
2: अब मैं अपने लास्ट गाने की ओर पहुंची हूँ, तो अब जो मेरा लास्ट गाना है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही अच्छा है। और उस गाने की जो बोल है वो है, एक मंजिल राही दो फिर प्यार ना कैसे हो। इस गाने की बोल से ही पता चल रहा है कि दो लोग एक दूसरे से जब प्यार करने लगते हैं तो वो डायलॉग हुआ ना, दो बदन एक जान, तो उसके साथ में जैसे कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, और फिर जब एक दूसरे के विचार एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो फिर कब उन्हें प्यार हो जाता है उन्हें खुद ही पता नहीं चलता। इसके लिए मेरे पास एक बड़ी अच्छी लाइन है जो हर कोई सुना ही होगा लगभग, जैसे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इस गाने में बड़ा ही अच्छा फिट बैठ रहा था इसलिए बोल दिया सर मैंने। और भी थोड़ा सा बोल देती हूँ, ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया, मंजिल ना दे चरांग ना दे हौसला तो दे, तिनके का ही सही तू मगर आसरा तो दे।

ओके ओके पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारे करेक्शन आपने हम सभी को सुना, इसलिए दिल से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अभी जो आपने गीत हमें बताया है, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर और मुकेश साहब की आवाज में ये खूबसूरत गाना है, मदन मोहन जी का संगीत है, संजोग इस एल्बम से 1961 का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छी रचनाओं के साथ, अच्छे गीतों के साथ। हम आपके साथ होंगे ख्वाबों के सफर में ही, तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम, नमस्ते, खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं, तो आज मैं एक यूनिक जो है करियर के बारे में बात करूंगा। वैसे इसको एक परियोजना के बारे में बातें करूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में करियर कैसे आप बना सकते हैं। परियोजना प्रबंधक यानी प्रोजेक्ट मैनेजर, ये भी एक करियर का बहुत सुंदर विकल्प है। आज के दौर में एक अत्यंत बहुत ही पॉपुलर, चुनौतीपूर्ण और बहुआयामी करियर है। ये भूमिका न केवल संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि किसी भी परियोजना की सफलता का मूल आधार भी है। चाहे आईटी सेक्टर हो, निर्माण क्षेत्र हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मीडिया हो, सामाजिक विकास हो, गैर सरकारी संगठन हो, एनजीओ जिसको कहा जाता है, प्रशासन हो, इवेंट मैनेजमेंट या सरकारी योजनाएं हो, हर जगह एक कुशल परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आज के समय में जब समय प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, टीम वर्क और परिणाम उन्मुख कार्यशैली की जो महत्ता बढ़ गई है, ऐसे में प्रोजेक्ट मैनेजर का करियर उन युवाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो नेतृत्व क्षमता वाले हैं, लीडर क्वालिटीज वाले हैं, योजना बनाने की कला और समस्या समाधान की सोच रखते हैं। उनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत ही सुंदर विकल्प है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत होती है। और एक बार आपको पूरे चीजों के बारे में समझ में आ गया, हर एक चीज माना एक टीम होती है, एक कंपनी है समझो, उसको पूरी तरह से लीड करना और रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें उनके साथ करना, ये बहुत बड़ी जो है कला है। तो अब इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग, तो आप सभी को बताएंगे एक प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे होता है और कैसे इस कला को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं। चलिए, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के कुछ उदाहरण भी देता हूँ। भारत में और विदेश में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर रहे हुए थे। जैसे कि दुनिया का सबसे 10 प्रसिद्ध प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम मैं बताऊं, तो पहला आता है होमर जे मुलर, जो नासा अपोलो प्रोग्राम के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। दूसरा है डॉक्टर वर्नन वॉन ब्राउन, ये शत्रुन वी रॉकेट परियोजना के प्रमुख, सबसे बड़ा सफल वैज्ञानिक प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर थे। जे इरविन मिलर, इंटरस्टेट हाईवे प्रोजेक्ट यूएसए, दुनिया की सबसे बड़ी सड़क परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर थे। मेगन स्मिथ, ये भी गूगल एक्स और यूएस सीटीओ बड़े नवाचार प्रोजेक्ट की प्रमुख प्रोजेक्ट मैनेजर रही। पांचवा है फ्रैंक गहरी, विश्व प्रसिद्ध वस्तुकार, बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर। छठवें की बात करें तो एलॉन मस्क, जिन्हें आज सभी जन जानते हैं, ये स्पेस एक्स टेस्ला तकनीकी प्रोजेक्ट के में नेतृत्व शैली के कारण प्रसिद्ध है। सातवां सर जॉन आर्मिट, लंदन ओलंपिक 2012 के निर्माण प्रोजेक्ट के प्रमुख, समय के पहले पूरा किया। आठवां गैंट चार्ट के जनक हेनरी गैंट, आज हर प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाला टूल उनके नाम पर है। नौवां है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, सोशल प्रोजेक्ट मैनेजर, जर्मन बैंक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर, गरीबी हटाने पर नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। दसवां सुंदर पिचाई, गूगल क्रोम प्रोजेक्ट मैनेजर, क्रोम ब्राउजर 2008 में बनाने वाली टीम के वास्तविक नेतृत्वकर्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये हुए जो लोग विदेश में काम कर रहे थे उनके प्रसिद्ध नाम, और भारत में भी कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हुए हैं, जैसे कि ई श्रीधरन, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट निर्धारित समय से पहले और बजट में पूरा किया इन्होंने। दूसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, SLV-3 और मिसाइल विकास कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। तीसरा राकेश कुमार भटनागर, भारत के बड़े रक्षा और वैज्ञानिक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर। चौथा सतीश धवन, इसरो की मजबूत परियोजना संस्कृति के निर्माणकर्ता। पांचवा कर्नल सुनील कुमार शर्मा, बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट, मुश्किल इलाकों में सफल प्रोजेक्ट लीडर।
तो ये थी कुछ खास बातें भारत के कुछ ऐसे नाम जो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में सफल हुए। तो आइए एक बहुत ही पॉपुलर जैसे कि होमर मुलर, इनकी जीवन कहानी से आपको जोड़ना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत बड़ा विजनरी होते हैं। तो आइए इनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। होमर मुलर चंद्रमा पर इंसान पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आज भी जानते हैं। 1960 की बात है जब इस दशक में अमेरिका और रूस के बीच स्पेस रेस चल रही थी। अमेरिका की नासा ने मानव को चंद्रमा तक भेजने का लक्ष्य रखा था और इस महामिशन को व्यवस्थित रूप से पूरा करवाने की जिम्मेवारी दी गई थी होमर मुलर को। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बने जो अपोलो प्रोग्राम की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधक रहे। अच्छा, अपोलो मून मिशन में इनकी जो भूमिका रही वो मुख्य रही और चुनौतियां ये थी कि अपोलो मून मिशन इतिहास की सबसे जटिल परियोजना में से एक थी जिसमें हजारों इंजीनियर काम कर रहे थे, 20,000 से अधिक कंपोनेंट्स थी, कई कंपनियां इसमें जुड़ी हुई थी, करोड़ों डॉलर्स का बजट इसमें लगा हुआ था और समय सीमा बहुत कम थी। नासा में हर कोई जानता था कि एक छोटी गलती भी पूरी मिशन को खत्म कर सकती है। होमर मुलर का नेतृत्व तो इसमें बड़ा काम आया और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में उनकी सबसे बड़ी ताकत सबको मालूम थी। टीम को साथ लेकर चलना ये उनकी खूबसूरती थी, हर विभाग को जोड़कर एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखना ये भी उनके बड़ा ही खूबसूरत तरीके से उसे करते थे। समस्याओं को शांत दिमाग से सुलझाना ये उनकी आदत में शुमार थी। वे हर दिन 80 से 100 मीटिंग के डाटा को कलेक्ट करके अगले दिन टीम को स्पष्ट दिशा देते थे। कहा जाता है कि जब इंजीनियरों में तनाव बढ़ जाता था तो मुलर हमेशा मुस्कुराकर कहते थे, वी आर बिल्डिंग हिस्ट्री, स्टे काम, स्टे करेक्ट, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं, इसलिए शांत रहो, सही काम करो। अब बात आती है, समस्या आ गई जब रॉकेट में खतरनाक वाइब्रेशन हुआ। अपोलो रॉकेट लॉन्च टेस्ट में टेस्टिंग करते वक्त खतरनाक कंपन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, दिखाई दिया कि जिससे रॉकेट फट भी सकता। इंजीनियर इस समस्या का कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे, पर ऐसे में तभी मुलर ने एक सरल लेकिन बहुत ही अनूठा निर्णय लिया। उन्होंने हर विभाग को समस्या का माइंड मैप बनाकर आपसी डेटा मिलाने को कहा। बस फिर क्या था, सभी ने अपना काम किया और 24 घंटे में समस्या का मूल कारण मिला और समाधान तैयार हुआ। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचे और इस ऐतिहासिक मिशन के पीछे कई वैज्ञानिकों के साथ होमर मुलर जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की निर्णायक भूमिका थी। आज भी नासा में उनकी समस्या समाधान शैली को मुलर अप्रोच कहा जाता है। तो है ना कमाल की बात। तो ये थी एक विशेष प्रोजेक्ट मैनेजर की कहानी आपके लिए। तो आप भी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं या इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो इतना बड़ा विजन लेकर आप जरूर आगे चलिएगा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। और आज हम लोग बातें करेंगे करियर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, परियोजना प्रबंधक के बारे में। तो परियोजना प्रबंधन का परिचय अगर दूं तो परियोजना प्रबंधन वो व्यक्ति होता है जो किसी परियोजना को शुरू करने, योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने, निगरानी करने और तय सीमा में सफलतापूर्वक पूरा करने की जिम्मेवारी संभालता है। उसे कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, परियोजना प्रबंधक। उनका कार्य केवल निर्देश देना नहीं होता यहाँ पर, बल्कि वे परियोजना के हर चरण में अपनी रणनीति, विश्लेषण और निर्णय क्षमता का उपयोग भी करते हैं। तो उस व्यक्ति को ही प्रबंधन कहते हैं। तो बात आती है यहाँ पर एक परियोजना प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, आप ये सोच रहे होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। परियोजना की योजना बनाना, परियोजना का उद्देश्य निर्धारित करना, बजट तय करना, विभिन्न चरणों में कार्य का बंटवारा करना, समय सीमा तय करके संभावित खतरों यानी रिस्क का आकलन करते हुए उनसे बचाव, उनकी सेफ्टी सुरक्षा के बारे में जानना और बताना। दूसरी बात आती है टीम का गठन करना और उसको चलाना, विशेषज्ञों की पहचान। जैसे हर व्यक्ति हर काम के लिए नहीं होता, हर व्यक्ति किसी एक खास कार्य करने की क्षमता रखता है, तो ऐसे विशेषता उस व्यक्ति के अंदर की पहचान होना, टीम सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेवारी देना, टीम को प्रेरित रखना और संघर्ष होने पर समाधान खोजना, ये सारी चीजें टीम वर्क में आता है। तीसरी बात आता है संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन हो सकता है, तकनीकी संसाधन हो सकता है, वित्तीय संसाधन हो सकता है, सामग्री और उपकरण का संसाधन भी हो सकता है। इन सारी चीजों को एक साथ अलग अलग जगह पे कैटेगरी वाइज रखने का काम भी प्रबंधन का ही होता है। और संचार, कम्युनिकेशन प्रबंधन, कम्युनिकेशन ये भी एक बहुत बड़ा जो है कार्य करता है योजना को कंप्लीट करने में। क्लाइंट प्रबंधन और टीम के बीच स्पष्ट संवाद और रिपोर्टिंग, नियमित बैठक, अपडेट साझा करना, ये सारी चीजें भी इसमें आती है। और इसके साथ में रिस्क मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही थोड़ी सी बातें बताई थी, भविष्य में आने वाली बाधाओं की पहचान, वैकल्पिक अल्टरनेटिव योजनाएं तैयार रखना, आपत्तकालीन स्थिति में तेजी से निर्णय लेकर समप करने की बात आती है यहाँ पर, या फिर सही तरीके से चीजों को आकलन करते हुए आपत्तकाल में स्थिति को संभालने की पूरी संभावनाएं अपने पास रखनी होती है। और एक और बात यहाँ पर आती है गुणवत्ता, गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी चेक। समय समय पर परियोजना की समीक्षा करना, तय मानकों के अनुसार काम की जांच करना, त्रुटियों की पहचान और फिर उसकी सुधार करना। आखिरी बात आती है यहाँ पर परियोजना को समय पर पूरा करना। सबसे बड़ा काम यही होता है कि समय सीमा पर लगातार नजर रखना, देरी होने पर कारण और समाधान ढूंढना, अंतिम रिपोर्ट तैयार करना, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर का पूरा काम होता है। तो किस किस तरह की बातों पे ध्यान रखना है ये मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीजें बता दी हैं। अब इसमें से जो चीजें आप कर सकते हैं वो तो लिखी हैं, जो नहीं कर पा रहे उसके लिए आप पढ़ना और अनुभव प्राप्त करने से वो भी चीजें आपके हाथ आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक अनुभव होता है, एक असिस्ट करके जब इन चीजों को करके आप ऊपर तक जाते हैं तो उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं आता, आपत्तकालीन समस्याएं नहीं आती है और वो चीजों से आप बच जाते हैं। क्योंकि इसमें बड़ी जो है रिस्क अगर बढ़ जाता है तो नुकसान योजना के लिए हो सकता है और वो योजना के लिए नुकसान बना आपके लिए भी नुकसान। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर की बातें हम लोग कर रहे हैं कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं और इस पद को पाने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है और किस किस तरह के कौशल आपके पास होने चाहिए। अब देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आवश्यक जो स्किल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक तो पहला, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, टीम को दिशा देना, प्रेरित करना और निर्णय लेना। दूसरा, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, सही समय पर काम पूरा करना और टीम के साथ समय का प्रबंधन करना। तीसरी बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक बहुत बड़ा कला है, स्किल है, इसको आपको आना ही चाहिए। समस्या समाधान, तेजी से समस्याओं की पहचान करें और समाधान ढूंढने की क्षमता भी अपने अंदर हो। चौथा है संचार कौशल, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया, कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट, टीम और प्रबंधन से प्रभावी ढंग से बातचीत करना, संवाद करना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने क्लाइंट की पूरी बातें समझ में आ गई हो तो आप प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से उनके अनुरूप करेंगे और वो चीजें आप अपनी टीम को भी सही ढंग से बता पाएंगे। अगर आप क्लाइंट की बात को ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर बाकी सारी चीजें जो है गड़बड़ा जाएंगे, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी, संवाद कला बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पांचवी बात आती है तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आईटी में प्रोजेक्ट मैनेजर को सॉफ्टवेयर और तकनीकी टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। निर्णय में इंजीनियरिंग समझ आवश्यक होती है। एनजीओ में सामाजिक क्षेत्र और फील्ड गतिविधियों का ज्ञान जरूरी है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं, चाहे एनजीओ से मिला हो या कंपनी का इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो या फिर आईटी सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट हो, लेकिन सभी में आईटी और पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है सॉफ्टवेयर और टेक्निकल टूल्स की जानकारी तो चाहिए चाहिए और साथ ही साथ एक इंजीनियरिंग की समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग की समझ जो है हर बारीकी चीजों पर उसकी नजर रहती है, एक्यूरेसी पर नजर होती है, तो वो चीजें उसी ढंग से इन चीजों को कर पाता है। छठवीं बात है संगठन क्षमता, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जिसको कहते हैं, विभिन्न कार्यों को एक साथ व्यवस्थित रखना, को निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की क्वालिटी आपके अंदर है। उसके बाद आती है जोखिम विश्लेषण, रिस्क एनालिसिस अंग्रेजी में कहते हैं इसे, संभवतः चुनौतियों को पूर्व अनुमान लगाना, यानी जो चीजें पहले होने वाली उसके पहले उसकी भनक लग जाए आपको तो आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। आठवीं बात, बजट प्रबंधन यानी बजटिंग स्किल्स जिसको कहते हैं, परियोजना को बजट के भीतर पूरा करना, क्योंकि अगर बजट से बाहर हो जाएगा तो सारा जिम्मा जो है प्रोजेक्ट मैनेजर पर आता है। इसीलिए अगर पहले से आपको परियोजना का पूरा बजट का पता हो और ये बजट आपको इस तरह से लेना है और इस तरह से ये बजट इतने में पूरा करके देना है, अगर इसकी पूरी जानकारी आपके पास हो और उसी अनुसार आप चीजों को करते हैं तो चीजें बेहतरीन हो सकती हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसमें चूक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन शुरू से अगर आप इन चीजों के लिए सतर्क रहते हैं और वहां पर मौजूद रहते हैं कार्यस्थल पर, तो ये चीजें संभल जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स होते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति को 10 रुपए की चीज 100 चीज मंगानी है, 100 आइटम 10 रुपए के मंगाने हैं, तो आप अगर वो आदमी वहां पर है और आप नहीं है और उन्होंने गलती से उसे 20 रुपए में लिया है तो फिर डबल हो गई बजट। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें जो है आपकी बजट को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वहां रहना और खुद ही जो है चीजों को मंगा के लोगों के हाथ में देना, ये बहुत जरूरी है। तो ऐसी बारीकी से चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके चीजें संभल जाती है। और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की अब बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कौन कौन सी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो किसी भी विषय में, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, आईटी, सोशल वर्क या फिर किसी महत्वपूर्ण विकल्प का एक जो है डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। दूसरा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, MBA प्रोजेक्ट मैनेजर, MTech, MCA IT सेक्टर के लिए, MSW NGO क्षेत्र के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
पेशेवर प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जैसे कि ये कोर्स प्रोजेक्ट मैनेजर की मांग बढ़ाते हैं, उनमें से

कुछ कोर्सेस ऐसे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसके बाद आता है एक प्रिंस टू सर्टिफिकेशन, एजिल स्क्रम मास्टर सर्टिफिकेशन या लीन सिक्स सिग्मा, ये भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो आपको प्राप्त करने से आपके प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में या प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में आसानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इन चीज़ों को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो आइए एक और बात मैं बताना चाहूँगा, करियर अपॉर्चुनिटीज लगभग प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत सारी जगह पे खुले हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आईटी सेक्टर में ये चीज़ें बहुत काम करती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशन में, साइबर सुरक्षा में, क्लाउड आधारित प्रोजेक्ट्स में ये आपको काम आता है। दूसरा, निर्माण या इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में आपको बहुत काम आता है, भवन निर्माण के क्षेत्र में, सड़क पुल जल परियोजनाएं बनाने पर या नगर विकास परियोजनाओं में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ तीसरा एक विकल्प आता है जहाँ पर एजुकेशन और रिसर्च में, शिक्षा और अनुसंधान के इस प्रोजेक्ट में भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे विश्वविद्यालय परियोजना बनाना, रिसर्च आधारित प्रोजेक्ट को बनाना। चौथी बात आती है जहाँ पर सरकारी योजनाओं को लागू करना होता है, जैसे कि जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, ग्रामीण विकास परियोजना है, महिला एवं बाल विकास परियोजना, ऐसे बहुत सारे योजनाएं सरकार की होती हैं, वहां पर एक पीएम यानी प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत जरूरत होती है। पांचवी बात आती है एनजीओ और सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य शिविर लगाना, आजीविका विकास करना, आपदा प्रबंधन करना, ट्राइबल आदिवासी विकास परियोजनाएं, इस तरह की चीजों में भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। छठवां आता है मीडिया या इवेंट मैनेजमेंट, कार्यक्रम योजना, फिल्म डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट बनाना या सोशल मीडिया कैंपेन चलाना, इसमें भी पी प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सारी चीजें आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जहां पर आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप कितना कमा सकते हैं ये सारी बातें हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी रहते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बात जमूरे, ये है सच है बात जमूरे, ये सच।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, परियोजना प्रबंधन प्रबंधक कैसे बन सकते हैं, इसके लिए बातें कर रहे हैं। तो चलिए, आपके पास डिग्री भी है, अनुभव भी है और आप किसी प्रोजेक्ट में सफलता पूर्वक अगर काम कर लेते हैं तो फ्रेशर प्रोजेक्ट मैनेजर को 25,000 से 40,000 तक एक महीने में पेमेंट मिलता है। और दूसरा, आपका अगर थोड़ा सा अनुभव हो जाता है तो इसको कहते हैं मिड लेवल पेमेंट, 40,000 से 1,00,000 तक हर महीने आपको मिलता है। फिर थोड़ा सा अगर आपकी और लेवल बढ़ जाती है तो फिर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो तो 1,00,000 से 3,00,000 रुपए महीना आपका पेमेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आप और थोड़ा मेहनत करते हैं तो एनजीओ या फिर सोशल सेक्टर में आप प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं तो 75 से 1,50,000 रुपए प्रति महीना आपको अनुभव के आधार पर दिया जाता है। इसके बाद आपके अनुभव बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऑपरेशन हेड जैसे वरिष्ठ भूमिकाओं में भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपकी स्किल्स बढ़ते जाते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं परियोजना प्रबंधन का भविष्य क्या हो सकता है। तो डिजिटलाइजेशन, स्टार्टअप, सरकारी मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2025 से लेकर 2030 तक प्रोजेक्ट मैनेजर के क्षेत्र में लाखों नई नौकरियां भी बनने का अनुमान है। एआई, डाटा एनालिसिस और रिमोट वर्क के कारण प्रोजेक्ट मैनेजर का महत्व और बढ़ जाता है और आपको आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारे विकल्प जुड़ जाएंगे। और बात करें क्यों चुने प्रोजेक्ट मैनेजर का करियर, है ना, कई बार सवाल आता है कि भाई आप तो रोज शनिवार को आते हैं, हर हफ्ते एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, हर एक हफ्ते एक नए स्किल के बारे में बताते हैं, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही क्यों बनना है, है ना। तो इस सवाल का जवाब ये है साथियों, आपके लिए नेतृत्व और सम्मानजनक भूमिका होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलता है, अच्छी आय और स्थिर करियर है, हर उद्योग में मांग है, निरंतर सीखने और उन्नति के अवसर मिलते हैं, समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा अवसर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में हो सकता है। और खास करके जब एनजीओ प्रोजेक्ट करते हैं या सरकारी मिशन वाले प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें सामाजिक समरसता के साथ साथ समाज में परिवर्तन लाने के लिए आपका बड़ा रोल होता है, लोगों की दुआएं आपको मिलेगी अगर आप इसी योजना को सरकार की बहुत ही उन्नत तरीके से आपने उसको लागू कर दिया और जितने भी किसान भाई बहनों हैं जैसे उनको अगर उसका लाभ मिल जाता है, समाज के गरीब तबके के लोगों को अगर लाभ मिल जाता है तो निश्चित तौर पे आपको बहुत दुआएं मिल जाती हैं। इसीलिए भी प्रोजेक्ट मैनेजर का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए भी आप इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, ऐसे हर एक करियर का जो भी हम लोग बताते हैं वो इम्पोर्टेंट ही रहती है, लेकिन आखिरी में निष्कर्ष यही है एक परियोजना प्रबंधन के रूप में करियर चुनना उन लोगों के लिए उत्तम विकल्प है जो जिम्मेवारी उठाना जानते हैं, समन्वय, योजना, नेतृत्व और रचनात्मक कार्य करने में इंटरेस्ट रखते हैं, पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए काम बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट मैनेजर के बिना कोई भी परियोजना समय पर और सफलतापूर्वक पूरी नहीं हो सकती है। आज का समय कुशल प्रोजेक्ट मैनेजरों का है। यदि आप अपने कौशल को विकसित करके इस क्षेत्र में कदम रखते हैं तो ये करियर आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सम्मान के स्तर पर भी अत्यंत सफल बनाता है। तो साथियों, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस जगह पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आप पढ़ाई करना चाहिए, क्या डिग्री होना चाहिए, किस तरह के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और कौन कौन से कार्य आपको, स्किल्स आपको अंदर होनी चाहिए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कोई बात नहीं, आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9414-1415 इस नंबर पे आप मैसेज करके करियर ऑप्शन लिख कर आप अपना मैसेज डाल देते हैं तो जरूर हम आपको और भी बातें सुनाएंगे। अगर कहीं आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल है और आपको काम नहीं मिल रहा तो भी जरूर बताइए हमें, तो हम आपको अपने स्तर पर जो हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए काफी लोग आते हैं तो उनके इंटरव्यू हम करते रहते हैं, तो उन लोगों तक आपकी जो बात रखेंगे ताकि आपको काम मिलने में भी आसानी हो जाए या कोई प्रोजेक्ट मिलने में आपको आसानी हो जाए, इस तरह का जरिया भी आपको बता सकते हैं। तो हम आपके आपको मदद करने के लिए तैयार हैं और आप मदद लेने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं शुभारंभों के साथ आप बहुत अच्छा करियर बनाएं, ऐसी सुंदर भावना के साथ अपना और देश का नाम रोशन करें, ऐसी शुभारंभ के साथ फिर मिलते हैं एक और नए विकल्प के साथ, करियर ऑप्शन का और जीवन कौशल का लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मस्कर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुजर गूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यार

0: मोती मैं हो गया माशारती तेरे बिना आई आयो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तस्वीर हटाई होगी है।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं एक आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियालिटी ऑफ आवर लाइफ टूडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट साहित्य संगीत गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना। बात पुरानी बड़ी सुहानी फक्त रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: बाल में कुछ काला है।
1: काला?
2: तुम्हारे ख्याल में ये कौन गा रहा है?
0: अरे ये तो मेरा भोला है, वो देख सामने खड़ा।
2: नहीं नहीं, ये तो विद्यापति है।
0: विद्यापति? कौन विद्यापति?
2: मैं इसे जानती हूँ, ये बहुत बड़ा कवैया है।
0: I don't believe it, it's impossible. You have to believe it. चलो मेरे साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

107.8 FM, World Renewal Spiritual Trust का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन। कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का
1: रेडिओ पुणेरी हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
2: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला में हमने ये जाना कि हम किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, रिलेशनशिप्स को एक नए नजरिए से देखा और फिर कई रोल्स जो हम हर रोज अदा करते हैं उनको कैसे हम हर बार चेंज कर सकते हैं वो हमारे अपने हाथ में है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और बात करते हैं रिसोर्सेस की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। हमने तीन पड़ाव तो तय कर लिए इस पूरी श्रृंखला में और एक नई नजर से जो है हम पूरे ना सिर्फ स्व को बल्कि अब जब अपने आप को मैनेज करते हुए हमने अपने रिलेशनशिप्स में और बाहर देखा तो काफी सारे बदलाव दिखते हैं। आपने बात की थी कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं रिसोर्सेस यानी संसाधन, पर वो रिसोर्सेस क्या है?
1: ट्रू, बिकॉज ईच वन ऑफ अस, हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं। यू नो, जो हम कई बार अपने आप को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और हम कहते हैं इनके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं, वट एवर, एक्चुअली हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं। अंतर किस में आ रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करते हैं, एंड दैट विल ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट इन माई लाइफ। कि मेरे पास भी उतना ही है जितना आपके पास है, लेकिन आपका उसको यूज करने का तरीका और मेरा उसको यूज करने का तरीका वो डिफरेंट हो जाएगा। अब हर एक के पास जो रिसोर्सेज हैं सेल्फ के, वो तीन लेवल पर होंगे, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। थ्री रिसोर्सेज जो हम सबके पास है। सो लेट्स से फिजिकल रिसोर्सेज। आज फिजिकल वेलबींग की जितनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, मतलब शायद पहले इतनी नहीं, तो देन डजंट दैट मीन आई एम नॉट यूजिंग द फिजिकल एनर्जी इन द राइट वे। आज ये शरीर मेरे थिंकिंग पैटर्न की वजह से, अगर इसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां, कभी जॉइंट पेन है, किसी को डायबिटीज है, सो वट इज दिस, दिस इज माई फिजिकल रिसोर्स, बट देन आई एम नॉट एबल टू यूज इट इन द राइट वे बिकॉज इट इज इल। सो फिर अगर कॉस्ट्यूम ठीक नहीं है, व्हीकल ठीक नहीं है, तो जीवन की यात्रा में कुछ कुछ तो रुकावट आएगी। सो माई थिंकिंग पैटर्न इज क्रिएटिंग द इलनेस एंड माई चेंज ऑफ थिंकिंग पैटर्न विल हेल्प इन द क्योर ऑफ द इलनेस। वो बहुत बड़ी मदद करता है।
0: वेरी ट्रू। कि
1: जैसे यहाँ आई वुड लाइक टू शेयर, एट द ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स में एक प्रोजेक्ट चल रहा है इन कोऑर्डिनेशन विद DRDO, एंड द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। के जो हार्ट की आर्टरी डिजीज की जो आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, उसको मेडिटेशन, मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो आप लेते रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन और राइट लाइफस्टाइल से किस तरह से हम वो आर्टरी की ब्लॉकेजेस को यू नो ओपन कर सकते हैं। सो एंड द एक्सपेरिमेंट शोज वंडरफुल रिजल्ट्स। इट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड ओवर द बॉडी। कि राइट थिंकिंग से हम जो बीमारी, जिसको हमने समझ लिया था कि ये बीमारी तो चलनी ही है, वो बीमारी पर हम ओवर पावर कर लेते हैं, एंड फिर हमारा ये फिजिकल रिसोर्स, मतलब ऐसे भाई बहने वहां आ रहे हैं जो पहले चार कदम भी ठीक से नहीं चल पाते थे, दे वुड यू नो गेट ब्रेथलेस, वो दो फ्लोर तीन फ्लोर सीढ़ियां आज चल के जाते हैं। तो फिजिकल रिसोर्स है ना,
0: तो फिजिकल रिसोर्स का हमने सही इस्तेमाल फिर किया, उसका एटलीस्ट उसको हमने सेव तो किया, और व्हाई नॉट, वी वांट टू सेव,
1: ऑफ कोर्स, एंड दैट्स व्हाई वी सेड फिजिकल कॉस्ट्यूम सबको मिला है, रिसोर्स सबको मिला है, लेकिन कौन उसको किस तरह से यूज करता है वो फिर हर एक के अपने अपने तरीके।
0: एक बार अगर हमने अपने आप को, फिजिकल रिसोर्स को हमने सेव कर लिया, अब उसका सही इस्तेमाल जो है वो कुछ और अलग होगा, मतलब हाउ डू आई यूज, या इसका मैनेजमेंट कैसे हो
1: ऑफ द बॉडी। बॉडी का तो ध्यान हम रख ही रहे हैं, सी विद आर डाइट, आर एक्सरसाइज, दैट्स व्हाट वी डिडंट डिस्कस दैट बिकॉज उसकी तो ऑलरेडी कितनी डिस्कशन है, कि डाइट हो, एक्सरसाइज हो, आपकी यू नो गुड क्लीनलीनेस हैबिट्स हैं, ये सारी चीजें तो बॉडी का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन जहां हमने ये कनेक्शन नहीं जोड़ा था कि द माइंड हैज एन इफेक्ट ऑन द बॉडी, तब हमने ये नहीं पता चल रहा था कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती है। यू नो आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, फिर भी कहीं ये दर्द, कहीं ये कुछ ना कुछ, बिकॉज साइकोसोमैटिक इलनेस है। आपको ब्लड प्रेशर हो गया, अब वो रहता है लाइफ लॉन्ग, वाई, जब तक आप अपने थिंकिंग पैटर्न को नहीं चेंज करेंगे। सो एनी डिजीज विच इज साइकोसोमैटिक, आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट एट द लेवल ऑफ द माइंड, एट द लेवल ऑफ द साइकी। थॉट पैटर्न चेंज करें, लाइफस्टाइल चेंज, यस, अभी देखो आर्टरी ब्लॉकेज भी होती है तो लोग लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, लेकिन थिंकिंग पैटर्न
0: उस पर तो कोई सोचता ही नहीं कि वो इफेक्ट डाल सकता है.
1: तो डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन थिंकिंग पैटर्न, तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे ये ब्लॉकेजेस के लिए. तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करना पड़ेगा ना, तब वो ब्लॉकेज फिर जाता है. सो हिटिंग एट द रूट ऑफ द डिजीज, दैट इज वेरी फंडामेंटल, दैट विल बी इम्पोर्टेंट.
0: तो ये तो हुआ हमारा फिजिकल रिसोर्स की बात. आगे आपने कहा था कि
1: मेंटल रिसोर्स, तो मेरे को लगता है हम इस पूरे प्रोग्राम में बार बार इसको डिस्कस ही कर रहे हैं कि माइंड इतनी पावरफुल एक शक्ति है जो हमें मिली है. अब इसका हर दिन हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से उपयोग करते हैं. हमने पहले भी ये देखा, लेकिन लेट्स टेक इट अप अगेन टुडे, दैट ऑन एन एवरेज एवरी मिनट वी क्रिएट अबाउट 25 to 30 थॉट्स ऑन एन एवरेज. तो रिसर्च, जो साइंटिफिक रिसर्च आज दिखाती है कि इन अ डे 24 घंटे के अंदर वी आर क्रिएटिंग अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 थॉट्स इज व्हाट देयर इज. अब ये मेरा रिसोर्स है, आई एम क्रिएटिंग 50 to 60,000 थॉट्स इन अ डे. क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? एक एक थॉट. अब कितनी सारा दिन में
0: किस तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहा है? ईच थॉट इज क्रिएटिंग एन एनर्जी, अ वाइब्रेशन. ऑरा जो की बात करते हैं,
1: इट्स बींग यूज इन दैट वे. आप जिस तरह की थॉट क्रिएट करेंगे, फिर उस तरह की फीलिंग, उस तरह की फिर पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस. सो वेन आई एम क्रिएटिंग 50,000 थॉट्स अप्रोक्सीमेटली इन अ डे, शुडंट आई बी अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ दोज थॉट्स? इट्स लाइक यू नो, दिस इज माई कंपनी इन साइड एंड दिस इज द प्रोडक्शन हाउस, एंड प्रोडक्शन कितनी है? 50,000. क्वालिटी कितनी है?
0: किस तरफ जा रही है वो? यस.
1: तो एक फैक्ट्री में भी आप देखो, अगर इतना प्रोडक्ट निकल रहा है तो कुछ एक परसेंटेज रिजेक्ट होता है एंड कुछ एक यूजफुल प्रोडक्ट में जाता
0: तो रहे कुछ है.
1: लेकिन यहाँ कितना रिजेक्ट होता है सारा दिन, बिकॉज एवरीथिंग दैट्स नेगेटिव, एवरीथिंग दैट्स वेस्ट, दिस इज ऑल गोइंग. तो ये अगर हम एक दिन भी अवेयरनेस से चलें कि मेरी थॉट्स की क्वालिटी क्या है, तो माइंड, मन जो है, तो मन आत्मा की, जिसको हम कहते हैं कि मैं आत्मा जब सोचती हूँ तो उसको मन, तो माइंड इज अ पार्ट ऑफ द सेल्फ. लेकिन ये माइंड की जो पावर है, दैट इज टू थिंक. हम यहाँ पे सोचते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस कि वी आर थिंकिंग इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, किसी के लिए ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है, किसी के लिए नंबर्स के फॉर्म में होता है, यू नो वी थिंक एज नंबर्स, और वो यहाँ एक इमेज जैसे बनता जाता है. एंड जैसे जैसे हम वो थॉट क्रिएट करते हैं, फिर वो वाइब्रेशन एनवायरमेंट में जाता है. पहले वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी को मिलता है और फिर वो वाइब्रेशन एनवायरमेंट में जाता है. सो एवरी थॉट आई एम क्रिएटिंग डज नॉट जस्ट स्टे हियर, इट बिकम्स
0: लाइक मूविंग, यस.
1: And it goes,
0: it's doing a lot of work.
1: Yeah, it goes into the environment. And similarly, औरों की जो thoughts हैं,
0: वो हम तक पहुंच रहे हैं.
1: औरों की thoughts को हम लेते हैं, यहाँ पर on the screen of my mind, I create that image, and then I take that thought and I make it your thought. जो हम कहते हैं ना, उन्होंने ऐसा सोचा या उन्होंने ऐसा किया और उसकी वजह से मैंने भी ऐसा करने लग दिया, तो उन्होंने नहीं किया मुझे, लेकिन मैंने उनकी thoughts को लिया और फिर उनको यहाँ क्रिएट करके मैंने आपकी थॉट्स को अपना बना लिया, एंड देन दे बिकम माय थॉट्स. सो नाउ आई हैव टू मूव विद अवेयरनेस इन द होल डे कि मेरा मन सारा दिन में जो इतनी सारी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट, बिकॉज इट्स अ रिसोर्स. हाउ एम आई यूजिंग दिस पावर ऑफ द माइंड? आजकल बहुत इस पर लिटरेचर रिसर्च है कि इट्स द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन द वर्ल्ड, बट मोस्ट अंडर यूज्ड. उसका राइट उपयोग नहीं हो रहा. अगर हम इसकी शक्ति को पूरी तरह से यूज करें तो व्हाट ऑल कैन बी डू. सो लेट मी बी वेरी कॉन्शियस ऑफ एवरी थॉट दैट आई क्रिएट. आजकल विज्ञान भी इसको प्रूव कर रहा है कि पावर ऑफ थॉट ऑन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम एक एक वाइब्रेशन जो देते हैं वो हमारा एनवायरमेंट क्रिएट करती है. मंदिर में जाओ, एनवायरमेंट डिफरेंट है. यू नो, एनी होली प्लेस आप जाओ, एनवायरमेंट डिफरेंट है. थिएटर में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, एनवायरमेंट डिफरेंट है. लोग मोर और लेस वही है.
0: एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री वी फील.
1: या सो हु इज क्रिएटिंग दैट एनर्जी? बिकॉज मोर और लेस लोग तो वही है ना. एक सपोज सिंपल एग्जाम्पल है, आप कोई एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देख लो, उसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक क्लब हाउस भी है और उसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक मंदिर भी है, तो वही सोसाइटी के लोग जाते होंगे ना दोनों जगहों पर.
0: वी गो विद अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस. ओह यस, विद डिफरेंट थॉट.
1: सो जिस थॉट्स के साथ हम उस स्थान में जाते हैं, तो वो जो होली प्लेस है, वहां का जो स्थान है जहां हम जाते हैं, वो स्थान की वाइब्रेशन कैसी होती है, तो वो वाइब्रेशन किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की. इसका मतलब आई हैव द पावर टू क्रिएट इट. नाउ आई कैन यूज दैट पावर टू क्रिएट इट
0: एनीवेयर. यस,
1: इसलिए कहते हैं घर को मंदिर बना लो.
0: क्योंकि आई क्रिएट इट.
1: देखो ना, आप देखो आपकी सोसाइटी बनी जहां आप रह रहे हो. जैसे जैसे आपके अपार्टमेंट्स बने, वैसे ही एक वहां यू नो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है वो भी बना. लेकिन वो वाइब्रेशन कैसे क्रिएट हुआ?
0: सुकून.
1: जब एक एक उस स्थान पर गया विद वेरी प्योर थॉट्स, यू नो विद वेरी क्लीन फोकस्ड थॉट्स, तो उस स्थान का वाइब्रेशन बना. कंस्ट्रक्ट तो वो भी ऐसे ही हुआ था ना, जैसे पूरी बिल्डिंग हो

0: थी, जैसे उस सोसाइटी का एक एक फ्लैट कंस्ट्रक्ट हो रहा था, लेकिन वो एक एक फ्लैट की वाइब्रेशन देखो जाके अब, एंड उस मंदिर की वाइब्रेशन देखो.
1: ऑफ कोर्स फ्लैट्स की वाइब्रेशन में झगड़ा
0: अलग अलग होगा ना. अगेन सी, एवरी फ्लैट विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशन. आप लोगों के घर में जाओ, एवरी हाउस विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशन बेस्ड ऑन पीपल स्टेइंग इन दैट हाउस. तो व्हेन आई अंडरस्टैंड कि ये मेरी क्रिएशन है, ये एनवायरमेंट मैंने क्रिएट किया है, नाउ आई कैन क्रिएट दैट एनवायरमेंट एवरीवेयर.
1: And I can create a good environment.
0: Yeah.
1: I don't have to depend on things, you know. मुझे वो धूप नहीं जलाना, मुझे वो कुछ नहीं करना, मुझे अरोमा नहीं करने की जरूरत. I can do it.
0: Because, see, वो सारे अगेन वो चीजें जो हम सारे कर रहे हैं, those are external aids which I use to be able to create good thoughts, which is okay. I mean, but as long as just remember that you are the creator. आप create कर रहे हैं thoughts. आपके अंदर power है. कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आप जो थॉट क्रिएट करना चाहो. लेकिन अगर हम उस
1: कई जगह पे हम बहुत ऑप्रेसिव फील करते हैं, ऐसा लगता है कि घुटन हो रही है, दिमाग जो है ना वो उसपे, तो वो अगेन यू नो, एंड यस, हमारे थॉट्स वो क्रिएट होने लगते हैं फिर.
0: बिकॉज वातावरण का, आप मंदिर में जाएंगे तो अपने थॉट्स देखो, इट वर्क्स एज अ साइकिल. पहले हम उस स्थान के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और स्थान भी, स्थान के वाइब्रेशन हम पे भी इन्फ्लुएंस करता है. सो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. तो हमने मंदिर का वाइब्रेशन बनाया, और फिर मंदिर के वाइब्रेशन में जब हम जाते हैं तो हमें शांति अनुभव होती है. सेम थिंग एट होम. हम ही पहले अपसेट रहकर, नाराज होकर, यू नो, ये सब आपस में झगड़ा करके हम घर का वातावरण बनाते हैं टेंशन का. फिर हम ही जब शाम को ऑफिस से घर आते हैं तो कहते हैं घर आते ही वातावरण कैसा है.
1: क्रिएट, हाँ.
0: लेकिन ये हमने ही क्रिएट किया है, और अगर हम उसको साथ कंफर्टेबल नहीं है और हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कौन करेगा? हम ही कर सकते,
1: कभी भी कर सकते,
0: कभी भी कर सकते हैं. यस, एक्सटर्नल एड्स, आज बहुत सारे एक्सटर्नल एड्स प्रमोट किए जा रहे हैं कि आप ये करो तो आपके घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, विच इज ऑल ओके, बट हु इज द मास्टर फाइनली?
1: ये अब ये सारे एड्स से हम ही, हमारे थॉट प्रोसेस ही चेंज होगा बेसिकली.
0: एब्सोल्युटली. थिंकिंग फैकल्टी जो मेरी है, जब मुझे रियलाइज हो जाएगा मैं मास्टर हूं एंड आई क्रिएट दिस, इट्स अ न्यू
1: एक्चुअली. मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, ये थॉट आते ही कि आई एम क्रिएटिंग इट, आई कैन क्रिएट इट, एक्चुअली आई कैन फिनिश दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड आई क्रिएट अ न्यू पैटर्न.
0: सो नाउ, लेकिन सारा दिन में अपने घर में, अपने ऑफिस में, ऑफिस का आपका एनवायरमेंट कैसा है? कई ऑफिस में जाओ, इट्स अ वेरी लाइट एनवायरमेंट. कई ऑफिस में जाओ, इट्स अ वेरी हैवी एनवायरमेंट. व्हाई? एनर्जी फ्लो ऑफ द पीपल. सो जबकि हमें ही उस घर में रहना है, हमें ही उस ऑफिस में काम करना है, तो वो एनवायरमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. तो इज इन दैट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वहाँ क्या एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं? लेकिन हम कितना इजिली बैठे बैठे जो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, फिर एनवायरमेंट कैसे बिल्डअप होगा? सो दैट बिकम्स अ वेरी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन फूड, क्योंकि जबकि मन की स्थिति, मन के वाइब्रेशंस का इफेक्ट हर चीज पर हो रहा है, एनवायरमेंट पर हो रहा है, भोजन पर हो रहा है, पानी पर हो रहा है. हमने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी कि जापान के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर इमोटो, उन्होंने रिसर्च ये की है इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन वाटर. और ऑफकोर्स वो ऑन गोइंग रिसर्च बहुत अभी भी चल रहे हैं कि आप पानी के सैंपल्स उन्होंने लिए एंड अलग अलग सैंपल्स को विथ पावर ऑफ माइंड आपने अलग अलग वाइब्रेशंस दिए हैं, एंड फिर वो जैसे किसी को दिया आई लव यू, आई थैंक यू, किसी को आई हेट यू, तो फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी किसी के लिए पॉजिटिविटी, किसी के लिए ग्रेटिट्यूड, किसी के लिए लव, एंड फिर वो पानी के सैंपल्स को जब देखा गया तो द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल वो अलग प्रकार का था. तो जिस पानी के सैंपल्स को पॉजिटिव एनर्जी मिली है, बहुत पावरफुल, वो स्ट्रक्चर्ड, बहुत फाइन डिफाइंड है, बहुत शार्प और डिफाइंड है. और लेकिन जिनको दूसरे प्रकार की एनर्जी मिली है, वो स्ट्रक्चर ही ठीक से नहीं बना है, क्रिस्टल ही शेप नहीं हुआ,
1: क्रिएट ही नहीं हो पाता,
0: वो क्रिस्टल कोलैप्स हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बनता.
1: बिकॉज़ हेट्रेड कैन बी सो डैमेजिंग. ओह यस.
0: नाउ वंस आई अंडरस्टैंड दिस,
1: हाउ मच एट टाइम्स, यू नो, जब हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है या हमें नफरत हो रही होती है, हम, हमारे जो वो वाइब्रेशंस हैं वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो डैमेज कर सकते हैं.
0: अब इसका सेकेंड पार्ट जो हमें समझ में आएगा, बॉडी इज मेड सो मच ऑफ वाटर.

0: और वो मुझसे होके ही तो जा रही है, तो मुझे कितना डैमेज कर रही है।
1: तो ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन आती है। वी कुड एक्चुअली आस्क द होल फैमिली जो हमारे साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर जाकर ये वेबसाइट देख सकते हैं डॉक्टर इमोटो की, क्योंकि उसमें फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, क्रिस्टल्स की बहुत सारी फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, उनकी बुक्स भी हैं वाटर हीलिंग विद वाटर के, तो उसपे ये क्रिस्टल्स की फोटोग्राफ्स दी हैं। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखने से हमें पावर ऑफ माइंड ऑन वाटर जो उन्होंने प्रूफ किया है, वी नीड टू सी दैट बिकॉज वॉटर इज समथिंग विच इज एवरीवेयर, सो मच इन द बॉडी। तो अगर हमें वो समझ में आता है कि वो क्रिस्टल्स ठीक से फॉर्म नहीं होते हैं तो बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। कितने थॉट्स चल रहे हैं सारा दिन, हेट्रेड के, नफरत के, हर्ट के, पेन के, तो उसका शरीर पे असर ऑटोमेटिकली
0: और पता है हमें बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कई बार कि हम कितनी बार से शिवानी कहते हैं उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ वो कहीं ना कहीं मुझसे
1: वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारे सोचने से उसको कुछ नहीं होने वाला है।
0: और सबसे बड़ी बात,
1: सबसे पहले मुझे होने वाला, सी बिकॉज द अदर पर्सन वो उनकी पावर पर डिपेंड करता है कि वो आपकी वाइब्रेशन को कितना इन्फ्लुएंस करने। लेट्स से कि आप मुझे बार बार नेगेटिव भेज रहे हैं, बट समवेयर मेरे पास भी तो एक पावर है कि हाउ मच आई एम गोइंग टू लेट यू ओवर पावर मी। लेकिन जब आप भेज रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले मिल रहा है, और इसलिए जब हम कहते हैं जब हम नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं या पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे को मिले या नहीं मिले पता नहीं, लेकिन मुझे definitely मिलता है। So this is something which we have to experiment with, के and that's why at the Brahma Kumaris एक बहुत important चीज है जिस पर हम बहुत emphasis डालते हैं, and that is जब आप भोजन बना रहे हैं तो आपकी मन की स्थिति क्या है। हमने बहुत बचपन से ये सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न, वो भी तो फिर true हुआ ना। अन्न अगर सात्विक है तो मन सात्विक होगा ये कहा जाता था, लेकिन मन सात्विक होगा तब तो सात्विक अन्न बनेगा।
0: क्योंकि अन्न सात्विक कैसे बन जाएगा, अन्न अपने आप थोड़ा सात्विक हो जाएगा।
1: अभी तक हमें कहा जाता था कि सात्विक अन्न मतलब वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन फूड तो है लेकिन वेजिटेरियन फूड को किस स्थिति में बनाया गया। अगर आप अपसेट हैं, गुस्से में हैं, और उससे आप वो वेजिटेरियन फूड तो बना रहे हैं, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन एनर्जी कुक करने के टाइम कौन सी जा रही है। तो अगर वो भोजन जो मेरे सामने आया अगर उसके अंदर वाइब्रेशंस गुस्से की, चिंता की है, कैन आई कॉल दैट सात्विक फूड इज अ क्वेश्चन आई हैव टू थिंक अगेन। फूड इज मेड सो मच ऑफ वाटर,
0: सो मच ऑफ
1: हर सब्जी हर फल, इसका बेसिक इंग्रेडिएंट तो पानी है कितना सारा, और वो क्रिस्टल हमने देखा कि कैसे फॉर्म होता है। तो फूड की क्या स्टेट होगी, हम किस स्थिति में बना रहे हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान रखें। भोजन बनाते समय बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोग भोजन बनाते हैं, कि आपको अगर किसी बात की चिंता है, टेंशन है, सिट विद योर सेल्फ 2 मिनट्स, सॉर्ट इट आउट विद योर सेल्फ, गो बैक टू योर कुकिंग। ऐसे ही ऐसे ही गुस्से में दर्द में भोजन नहीं बनाना, क्योंकि आप सिर्फ भोजन नहीं परोसेंगे फिर साथ साथ वाइब्रेशन भी ट्रांसमिट होगी, सो इट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। आजकल स्पोर्ट्स में भी पावर ऑफ द माइंड को बहुत यूज किया जा रहा है कि अगर माइंड उसको क्रिएट कर ले, उस पिक्चर को विजुअलाइज कर ले आप, यू नो, एंड इफ यू हैव इट हियर ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड, दैट वॉज वॉट योर रिजल्ट विल बी। जो हम पहले से कह रहे थे कि थॉट विल लीड टू डेस्टिनी, तो स्पोर्ट्स में या हम इसको अब कहीं भी यूज कर सकते हैं, हमें अपना गोल अचीव करना है, क्रिएट अ थॉट, विजुअलाइज इट हियर एंड डू नॉट लेट अ सिंगल थॉट ऑफ डाउट कम बीच में,
0: डाउट एंड फियर
1: वो इनसिक्योरिटी,
0: यू नो कि व्हाट इफ इट विल नॉट हैपन, व्हाट इफ इट विल नॉट हैपन।
1: तो हमारा माइंड जो एनर्जी क्रिएट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, वो होने वाला है। We need to know that. तो हमें कौन सी thoughts create करनी चाहिए?
0: It's like it's going to happen.
1: अगर हम ही thought ये create करेंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, तो फिर अब कई बार भाई बहने कहते हैं मैंने पॉजिटिव सोचा लेकिन वो नहीं हुआ, but then I need to be very clear, क्या सच में मैंने 100% सिर्फ पॉजिटिव सोचा, कहीं भी उसमें फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये भी तो thoughts है। See, it's not that ये thought work करेगी और ये thought work नहीं करेगी, हर thought work करेगी। तो पहले मैंने thought create किया कि I want to get this done, next thought create किया not too sure, तो वो वाले thought भी तो work करेगा, and then somewhere वो रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा मुझे चाहिए। तो ये रिसोर्स है, इसको हम राइट डायरेक्शन में अगर चैनलाइज करें। अब सारा दिन में जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं उसमें जो मेजोरिटी वेस्ट थॉट्स है वो है पास्ट और फ्यूचर को लेकर। पास्ट भी एक यू नो इट जस्ट होल्ड्स मी बैक। साइकाइट्रिस्ट जो है मनोवैज्ञानिक वो बताते ऑन एन एवरेज 80% ऑफ द टाइम वी आर इन द पास्ट 80% एंड 15% समय वी आर इन द फ्यूचर वेरी लिटिल
0: इन द प्रेजेंट।
1: उसमें कई नेगेटिव भी होते हैं तो इसलिए पॉजिटिव की परसेंटेज। तो पास्ट और फ्यूचर को हमें कहीं ना कहीं हल्का करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये मेरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है क्योंकि बोथ ऑफ देम पास्ट एंड फ्यूचर आर नॉट इन माई कंट्रोल एंड मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ दोनों के बारे में सोचने के लिए। तो समवेयर पास्ट की जो भी बातें हैं आई विल हैव टू लेट गो। ये लेट गो हमने बहुत बार बोला है, बहुत सारे भाई बहने कहते हैं हाँ समझ में आ गया लेट गो, लेकिन कैसे करना है लेट गो, कैसे करना होता है?
0: एक्चुअली मैं बताऊं कि जब कोई सिचुएशन आ जाती है ना, चैलेंज आता है, हमने लेट गो किया हुआ है, हमें याद नहीं है पास्ट याद नहीं है सपोज, लेकिन कोई सिचुएशन आ जाती है जिसका कनेक्ट या वो सिचुएशन इसलिए आई है कि और मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे मुश्किल आ रही है तो मैं पास्ट में कहीं रिलेट करने लग जाता हूँ कि ये इस वजह से हुआ एंड देन द होल
1: आई गो बैक टू दैट
0: थिंग कम्स बैक। इट मींस वो सॉल्व नहीं हुआ,
1: आई डिडंट लेट इट गो। सो समवेयर पास्ट को, पास्ट मतलब कोई ग्रज पकड़ी हुई है, किसी के अगेंस्ट कोई बात पकड़ी हुई है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कितनी वैल्यूएबल एनर्जी वेस्ट हो रही है एंड फ्यूचर के लिए भी एक फेथ कि जो होना है वो मेरे साथ अच्छा ही होना है क्योंकि जो थॉट मैं क्रिएट करूंगी वो ही होने वाला है। सो व्हाई नॉट क्रिएट द थॉट दैट एवरीथिंग दैट विल हैपन विद मी विल ओनली हैपन द बेस्ट फॉर मी क्योंकि वैसे भी वही होने वाला है। सो व्हाई नॉट, व्हाई क्रिएट दोस पेनफुल
0: थॉट्स? एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस्ट,
1: एवरीथिंग विल बी
0: व्हेन चैलेंजेस व्हेन सिचुएशंस आर नॉट गोइंग टू टेक ओवर।
1: तो फिर सब चीज कैसे हो जाएगी?
0: बिकॉज़ यू जस्ट एक्चुअली पूरा लर्न किया है हमने लेसन की सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है।
1: और जब हम प्रेजेंट में होंगे ना पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, प्रेजेंट में होंगे क्रिएटिव होंगे, वरी नहीं होगी, फियर नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा। और अगर वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य
0: अच्छा ही होगा। बार बार हमने ये बातें सुनी हुई थी लेकिन अब प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं जिंदगी की, एक्चुअली हुआ ये है आई थिंक कार्यक्रम के दौरान कि अभी तक स्पिरिचुअलिटी में ये सारी बातें, ये जो हम अंडरलाइंड बातें करते हैं, ये हमने सुनी थी अपने बड़ों से, सुनी थी कभी कहीं पाठ हो रहा होता था, कहीं सत्संग होता था, हम ये सब सुनते थे लेकिन ये मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में कैसे यूज होंगे। आज ये सारी बातें मेरे अपने जीवन के अनुभव से निकल के आ रही
1: है। Very much, absolutely.
0: Yeah. So that way, that changes the whole perspective.
1: Because then I understand that spirituality is practical. क्योंकि इट हैज टू बी फॉर माई लाइफ। प्रैक्टिकल मतलब मेरे जीवन से एप्लीकेबल होनी चाहिए। कोई चीज सारी दुनिया के लिए एप्लीकेबल हो लेकिन जब तक वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं देन इट्स नॉट यूजफुल टू मी। एब्सोल्युटली
0: वेरी ट्रू। तो आज जिस तरह से मेंटल रिसोर्सेज के बारे में आपने कहा कि सही तरह से उसे मैनेज करना, सबसे बड़ी बात तो है कि उसकी एनर्जी, उसकी ताकत को समझना। पहले मैंने स्व की ताकत को समझा, अब अपने जो थॉट प्रोसेस है उसकी ताकत को समझ के फिर मैंने किस तरह से उस रिसोर्स को यूज करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकती हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है मेरे पास। जैसे ये शरीर मेरा पावरफुल टूल है वैसे ही मेंटल फैकल्टी मेरी
1: बहुत ज्यादा,
0: तो उसका सही इस्तेमाल करना भी मेरे अपने हाथ में है। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: बिल्कुल हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करें हम इसे, इस पूरे शरीर को, इसकी पूरी जो फैकल्टीज हैं उसे एक फिजिकल रिसोर्स के बारे के रूप में देखें और फिर उस रिसोर्स का सही मैनेज कैसे करना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस रिसोर्स को कहीं डिप्लीट कर रही हैं, कहीं कमजोर कर रही हैं, कहीं बीमार कर रही हैं। दूसरी तरफ मेरी अपनी मेंटल फैकल्टीज, मेरा अपना थॉट प्रोसेस कितना बड़ा रिसोर्स है, किस तरह से मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ अपने इन्हीं थॉट्स को पावरफुल बनाकर उनका सही इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन में। हर बार की तरह हमारे सामने ऑप्शंस हैं, चूज हमें करना है। वी हैव अ चॉइस, हमारे सामने है चॉइस, हम कितना उसे यूज करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। कोई सवाल, कोई मुश्किल आपको इस पूरी यात्रा पर चलते हुए आ रही है, आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमसे फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-555 3446098730999555 हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में अभी कुछ बातें करना और बाकी है, आपसे मुलाकात करेंगे। विदा लेते हैं, ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: इमाम अली खान, अब उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

पेट ही झूठ को संदक में छुपा को, संदक में छुपा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाँ घसको घसा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाँ

लाहर पर तुझको लाको हलालों की हराम कमाई दिया और तू मेरे को ताना दे रही, दो बादाम खिला के बोल रही, अरे बादाम नो लाते।

0: अरे पगली, अगर मैं तेरे को हंसाया तो फैमिली प्लानिंग वाले रोएंगे ना। तू जानती है तू कौन है?
1: क्या हूँ?
0: चिकनी।

0: लौटा।
1: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में स्वागत है आप सबका। नमस्कार। इन दिनों जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो जुड़ा है हमारी जिंदगी से और वो है डिप्रेशन। क्या ये एक बीमारी है? क्या हम और आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? कैसे हमें पता चल सकता है कि हम डिप्रेशन में हैं? या फिर किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपनों से डील कर रहे हैं जो डिप्रेशन में हो? यही सारे मुद्दे हैं जिन पर हम अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं। कई बातें सामने आए हैं, कई आगे आने वाली कड़ियों में सामने आएंगी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो ये कि जब अचीवर्स या वो लोग जो बहुत एम्बिशियस होते हैं अपनी एम्बिशन को नहीं पा पाते, नहीं पहुंच पाते उस मुकाम तक, तब जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, और ऐसी कई और बातें हैं जो बातचीत के दौरान निकल कर आती हैं। तो चलिए बातचीत का ये सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका हार्दिक स्वागत।
3: नमस्कार।
2: और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में बता दें कि 7 किताबें आ चुकी हैं इनकी जो कि जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, पॉजिटिव जो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स कैसे होने चाहिए। 30 साल से ये जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइकोथेरेपी के क्षेत्र में इतना कुछ आप अचीव कर चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छी आप बातें हमारे साथ करते आए हैं। और हमारे साथ हर बार की तरह ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी है, आपका भी स्वागत करते हैं।
4: ओम शांति।
2: ओम शांति। डॉक्टर साहब, आज जो मुद्दा हमने लिया है, इतने ईमेल्स आए हैं, इतने कॉल्स आए हैं हमारे पास, पूरे जो हम डिप्रेशन की बात करते आ रहे हैं वो हम कॉल्स लेंगे, वो ईमेल्स भी पढ़ेंगे। लेकिन जो पहली बात हम करना चाहते हैं कि अचीवर्स जो होते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अचीव करते आए हैं, तब वो जब वहां पहुंचना चाहते हैं और नहीं पहुंच पाते, तब उस डिप्रेशन से या वो जो एक शॉक लगता है कि अरे मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे नहीं मिला, वो एक मेजर शॉक है, उसे कैसे फेस करना है ताकि वो डीप डिप्रेशन में ना जा पाए।
3: बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आप बता रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल सिंपल सॉल्यूशन भी बताता हूँ। पर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, परंतु ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि बहुत बड़ा एम रखिए, अपना गोल है वो बहुत बड़ा रखिए। ऐसा भी लगे कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरा गोल है वह रखिए जरूर, परंतु आज आप जहां भी है वहां पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाइड फील करिए। कॉन्ट्राडिक्टिंग भी लग रहा है, परंतु पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कि आपको बहुत बड़ी चीज अचीव करनी है तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, टाइम को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, यह सब इंग्रेडिएंट्स है। वो कब होंगे? इफ यू आर सेटिस्फाइड। अगर आज मैं असंतुष्ट हूं, समझो मैंने सोचा मुझे 100 किताबें लिखनी है, इट मे बी एन इम्पॉसिबल गोल। अगर मैं वो सोचता ही रहूं तो कुछ भी 10 पेज भी नहीं लिख पाऊंगा। परंतु अगर आज भले मेरी 7 किताबें भी पब्लिश हुई, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, लेट मी डू हार्ड वर्क,
2: आई कैन वर्क स्टिल देयर,
3: या दैट गोल इज देयर। इफ आई एम सेटिस्फाइड आई माइट बी एबल टू वर्क 18 आवर्स अ डे, कुछ अच्छा स्टडी कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, और मे बी 100 पर नहीं पहुंचा, 50, 60, 70 पर तो पहुंच जाऊंगा। तो ये बैलेंस मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी।
2: बहुत आपने आज सुंदर बात ये कही कि गोल्स, कई बार क्योंकि कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या, एक और बात जो आती है कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ वो गोल अचीव करना, क्या मुझ में वो काबिलियत है कि मैं वो गोल तो रख लेता हूँ कि मैंने एक सपना तो देख लिया कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, क्या मुझ में काबिलियत है, ये भी एक सवाल उठता है।
3: तो सब में है, बिकॉज अवर ब्रेन इज सेम।
2: ओके,
3: आइंस्टाइन्स ब्रेन एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स ब्रेन वॉज ऑल द सेम, उसमें कोई फर्क नहीं था। आइंस्टाइन का ब्रेन ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसा ही था। तो परमात्मा ने हम सबको एक जैसा दिमाग दिया है, उसमें तो फर्क नहीं है, सिर्फ अभी उसका उपयोग हम कैसे करें वह महत्वपूर्ण है, और वो हर व्यक्ति कर सकता है ना। तो काबिलियत सबके अंदर है, सिर्फ हमें प्रॉपरली प्लानिंग करनी
2: है। बहुत सुंदर बात सिस्टर शिवानी आ रही है सामने कि गोल हम कितना भी हाई रख सकते हैं, दैट्स लाइक स्काई इज द लिमिट जैसे हम बात करते हैं, लेकिन आज के वक्त में मैं सैटिस्फाइड रह के जहां पे भी मैं हूं, यहीं से मैं अपनी वो जर्नी शुरू करूं वहां तक पहुंचने की, तो उसमें मेरा इंटरनल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत मायने रखेगी।
4: हाँ,
2: यहाँ ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि ये पूरे सफर में भी रहे,
4: क्योंकि सफर करते हुए ऑब्स्टिकल्स आएंगे और हो भी सकता है कई बार बीच में ऐसे लगे कि उधर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, बट लाइक वी शेयर इट इज नॉट द डेस्टिनेशन इट इज द जर्नी. तो हम सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि एक लक्ष्य रख लें, बहुत ऊंचा लक्ष्य रख लें, लेकिन उसमें फर्मली बिलीव करें. यू नो मोस्टली ये हो जाता है कि लक्ष्य रख लेते हैं और पीछे ये थॉट लगती है कि ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं. कई बार आसपास के सभी लोग कहते हैं कि ये असंभव है, आप ये नहीं कर पाओगे, तब डिमोटिवेटेड हो जाते हैं. तो अपनी थॉट्स ही हमें उधर तक पहुंचने में जैसे एक रुकावट बन जाती है. जो चीज हम सोचेंगे फुल कन्विक्शन के साथ, उसमें फुल बिलीव करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं होगा. इम्पॉसिबल कैन हैपन बिकॉज सिचुएशंस, पीपल, एवरीबडी, वो बनती ऐसे जाएंगे कि आपकी थॉट ही जैसे सत्य होती जाएगी, प्रैक्टिकल आपके लिए होती जाएगी, प्रोवाइडेड इट इज 100% कन्विक्शन. एक भी नेगेटिव थॉट बीच में नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये होना है, ये हुआ ही पड़ा, ये मुझे करना है.
2: ये पर अचीव कर पाना कि एक भी थॉट नेगेटिव ना आए, इट्स लाइक अगेन अ बिग अचीवमेंट.
4: नो, बट देन फिर अगर वो नेगेटिव थॉट आ रहा है, देन आई हैवंट सिलेक्टेड माय गोल प्रॉपरली. यू सी, गोल मतलब वो चीज विच आई फर्मली बिलीव कि मैं अचीव कर सकती हूँ. तो अगर मैं ही रखूं कि मुझे 5 साल में ये बनना है और मैं ही उस 5 साल के दौरान सोचूं कि ये तो बहुत मुश्किल है, देन आई हैव नॉट सिलेक्टेड द राइट गोल. तो इसलिए गोल बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच के आप गोल को बनाइए, लेकिन फिर उसके ऊपर 100% कन्विक्शन कि इस पे चाहे कुछ पे हो जाए, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, आई एम गोइंग टू अचीव दिस. तो वी सी के इम्पॉसिबल हैपन, ऑब्स्टिकल्स जो है वो भी खत्म हो जाएंगे. लेकिन अगर मेरी अपनी नेगेटिविटी, इसी इट इज आर थॉट विच अट्रैक्ट्स, जो क्वालिटी ऑफ थॉट होगी वैसी सिचुएशन, वैसे ही लोग अट्रैक्ट मेरी तरफ होते जाएंगे. सो नेगेटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव. तो पॉजिटिव थॉट, फर्म बिलीव एंड लिविंग इन द प्रेजेंट. कई बार हम वो बना के बस उसी में खोए रहते हैं, मुझे ये करना ही है, ये करना ही है, तो उससे एक अटैचमेंट हो जाता है
2: और आज को भूल जाते हैं.
4: एंड इट्स ऑल्सो वी लूज आर आइडेंटिटी इन दैट. इट्स नॉट कि मैं ये हूँ, मुझे वो बनना है, नहीं, मैं वो हूँ. यू नो, जैसे एक डॉक्टर बनने का एम्बिशन रखा, तो वो अपनी आइडेंटिटी ही उसमें समा देते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं. तो कई बार अगर बाय चांस नहीं बन पाते तो अपनी आइडेंटिटी ही फिर खत्म हुई दिखाई देती है, तब वो डिप्रेशन. अगर ये हो कि मैं एक यू नो इंडिविजुअल एंटिटी हूं, ये मैंने अपना रोल चूज किया है, अगर सिचुएशन डिड नॉट परमिट और मैंने वो रोल नहीं प्ले कर पाए, देन देर आर सो मेनी अदर रोल्स. लेकिन इफ आई डिड नॉट मेक इट अ रोल, आई मेड इट दिस इज आई, देन वो फिर बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे.
3: अच्छी बात इसमें शिवानी बेन ने बताई हुआ है, कहीं एक्सपर्ट्स है जो बहुत ही फेमस हुए, हाई अचीवर्स, उन्होंने भी कहा है कि 1-2 मास पहले भी हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज को मैं अचीव कर पाऊंगा, लेकिन हम क्योंकि उसके पीछे लगे रहे, एफर्ट्स करते रहे, तो सचमुच अचानक ऐसी क्षण आई कि जब क्वांटम जंप हो गई और हम उस स्टेज को अटेन कर पाए. और बात यह भी है कि भी अगर हम कोशिश करते रहे ना तो वो होता है.
2: लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब, जो जितने भी आ रहे हैं हमारे पास मेज आए हैं, उसमें बात यही है, स्पेशली 10th, 12th एंड सिविल सर्विस. सिविल सर्विसेज का इतना ज्यादा है लोगों के साथ प्रॉब्लम कि वो वही करना चाहते हैं, उसको अचीव कर लेना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते, तो लगे रहते हैं जितने भी चांसेस आते हैं, उसके बाद देयर इज अ मेजर डिप्रेशन. कुछ और नहीं कर पाते, कुछ और करने की इच्छा ही नहीं रह जाती, कुछ और नहीं करना चाहते और सब कुछ जितना पोटेंशियल था वो भी नहीं अचीव कर पाते. अगर मैंने वो गोल रखा है और मैं कॉन्स्टेंट पॉजिटिव थॉट के साथ, मुझ में आपने कहा कि हर एक में कैपेबिलिटी है, तो मैं करता भी जा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नहीं अचीव कर पा रही,
3: तब यह सोचना है. जैसे अभी ऐसी स्टेज हो गई, जैसे मैं सिविल सर्विस की बात है कि ये स्टेज हो ही गई, तो तब हमें यह सोचना है कि भी मेरी कैपेसिटी तो बढ़ी, इतनी जो पढ़ाई की उसके लिए जो प्रिपरेशन किया उससे आपकी बुद्धि का विकास हुआ है ना, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ी और अब आप और शायद क्षेत्र आपको बदली करना पड़ेगा, मे बी यू विल डू MBA और यू विल डू समथिंग एल्स, और आपने क्या वहां वो काम में आएगा.
2: लेकिन उसमें पीयर प्रेशर इतना हो चुका होता है, यू नो लाइक सारा पूरा समाज हमारे साथ, जो हमारे अपने हैं, उनका भी इतनी हमसे उम्मीदें बन चुकी होती हैं, हम शायद उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, क्योंकि वो उनका जो डाउन, उनको जो डिप्रेशन होता है क्योंकि मैं हम देखा ये गया है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, पूरे का पूरा घर डिप्रेस हो जाता है. सो वो ये मास डिप्रेशन का क्या किया जाए?
3: ना जैसे शिवानी बहन ने कहा वो ठीक है कि मैं वो रोल हूँ ऐसे नहीं कि मैं स्कूल अचीव कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हो गया ही नहीं, आई एम पुटिंग एफर्ट, शायद मैं डॉक्टर नहीं हुआ, मैं और कुछ बन सकता हूँ. बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. वन बिल गेट्स को लीजिए, ही वॉज अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड. कहते उसकी माँ उसको साइकोथेरेपिस्ट के पास बहुत समय तक ले गई, माँ थक गई परंतु बच्चा नहीं सुधरा. परंतु जब उसने अपनी कंपनी शुरू की तो देन ही हैड अ किलर इंस्टिंक्ट कि मुझे नंबर वन होना है, और सचमुच हो गया.
2: नहीं, बिगड़े हुए बच्चे तो सुधर जाए और बहुत अचीव कर जाए वो तो एक बहुत बड़ी बात लगती है. जो अचीवर्स होते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है कि जो फर्स्ट से लेकर टेंथ तक टॉपर रहे हैं, वो जब टेंथ में परफॉर्म नहीं कर पाते या जितनी उम्मीद थी वहां तो नहीं कर पाती, तभी तो सुसाइड्स के केसेस होते हैं. या वो उस पूरे डिप्रेशन को वो कैसे हैंडल करे, फेलियर का हैंडलिंग जो है ना.
4: लेकिन सुसाइड का जो केस है इट इज मोर ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू फेस अदर पीपल, आई फील.
2: हाँ, दैट्स व्हाट इट इज, नॉट इवन एट टाइम्स यू आल्सो,
4: बट इट्स मोर के लोग क्या कहेंगे, या उस टाइम स्टूडेंट में तो ये कहेंगे कि पेरेंट्स क्या कहेंगे. इट्स मोर दैट फियर, वो फियर हमें सुसाइड की तरफ शायद, अगर बच्चे को, क्योंकि बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, फेल तो बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये इंटरनल अश्योरेंस है कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यू नो दैट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, जहां मुझे पता है कि मुझे रिजेक्शन मिलेगा, आई डोंट वांट टू फेस दैट रिजेक्शन.
2: इफ वी लुक बैक, पिछले साल के ही रिजल्ट्स में एक ऐसी बच्ची थी जिसका रीचेक जब किया गया तो उसके 95% आए, और उससे पहले ही वो सुसाइड कमिट कर चुकी थी क्योंकि उसकी परसेंटेज 80s में थी. तो ये इतनी बड़ी एक विडंबना है.
4: लेकिन वो रीचेक करके 95 हुआ, लेकिन अगर नहीं भी 95 होता तो भी क्या
2: क्या था.
3: हाँ, you know, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, आई एम बीन शेयरिंग दिस प्रैक्टिकली, मतलब उसको पॉजिटिव ही लेना इस बात को. जैसे कहते हैं कि जो लोग भी ए ग्रेडर्स है ना, इवन इन मेडिसिन वी नो कि जो फर्स्ट हमारे पास जब MBBS करते गोल्ड मेडल जिनको आए थे, इनफैक्ट नो दे वर्क अंडर बी ग्रेड वालों के.
2: दे हैव टू
3: बी ग्रेड वाले शायद प्रोफेसर बन जाते हैं और उनके अंडर में वो काम करते हैं. कैसे सी ग्रेड वाले हैं ना, वो बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं और उसके ओनर्स बनते हैं, और कहते हैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ले रहा हूँ, कहते डी ग्रेड वाले हैं तो ना पॉलिटिशियन बनते हैं और सारे नेशन को रूल करते. अल्टीमेटली नो इट्स नॉट द ग्रेड विच यू गेट, नो हाउ यू डेवलप अदर एस्पेक्ट्स क्वालिटीज इन योर लाइफ एंड यू कैन अचीव बेटर.
2: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो जो एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, कि एकेडमिक अचीवमेंट्स, हाँ, बट कई बार भारत में तो हम ये देखा गया है कि उसको हम इतना फोकस बना के हम जब चल रहे हैं, खासकर स्कूल तक जो लेवल तक है, और जो एकेडमिकली अचीवर्स हैं वो कल्चरली भी अचीव कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो डिबेट्स में भी अच्छा कर रहे होते हैं, बाकी कॉम्पिटिशन्स में भी होते हैं, लेकिन जहां उनको फेलियर आ जाता है, एनी टाइम कमिंग सेकेंड बिकम्स डिफिकल्ट, यू नो वो डिप्रेशन. क्योंकि काउंसलर से अगर आप बात करें तो दैट इज अ मेजर क्वेश्चन, यू नो लाइक, एक तो वो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा नहीं अचीव कर पा रहे, एक वो जो ज्यादा अच्छे अचीवर्स हैं, उनके लिए सेकंड आना एक मेजर प्रॉब्लम है.
3: किंतु वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में नहीं ले
2: सकते, तो उसको कैसे कर सकते हैं?
4: आई थिंक दे नीड टू टॉक टू देमसेल्फ्स,
2: यस
4: अगेन, बिकॉज आई नो समबडी हु वाज गोइंग थ्रू दिस थिंग एंड शी वाज कमिंग फर्स्ट थ्रू आउट, एंड वो बार बार फर्स्ट आने की एक एडिक्शन से जैसी हो गई थी कि अब फर्स्ट ही आना है, और वो फर्स्ट आने के लिए वो इतना ज्यादा मतलब एफर्ट करती थी, लेकिन एफर्ट करने के दौरान टेंशन भी बहुत हो जाती थी. तो वो जो प्रेशर से जाती थी उस एग्जाम्स के दौरान, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल हर इज इट वर्थ इट कमिंग फर्स्ट लाइक दिस, मतलब अगर आप फर्स्ट आ भी जाते हैं इसके बाद, यू रियली हैवंट एंजॉयड योर ईयर, यू आर नॉट एंजॉयिंग योर कॉलेज लाइफ, टॉक टू योर सेल्फ, क्या होगा अगर आप सेकेंड आएंगे तो.
2: अच्छा, वो कॉन्स्टेंट इस जुगाड़ में भी रहते हैं कि दूसरे के कितने नंबर आए हैं, क्या मेरा आधा परसेंट भी उससे ज्यादा है, क्या वो उसका कम है कि नहीं है, यू नो लाइक इतना ज्यादा कंटिन्यूअस इस प्रोसेस में, और जहां उनका आधा परसेंट भी कम हुआ मेजर डिप होता है, लाइफ स्टेट मेजर डिप्रेशन में चली जाती है इतनी छोटी उम्र में. सो
3: दे शुड टेक इट एज अ चैलेंज.
2: हाँ,
3: जैसे सेकेंड आया तो फर्स्ट वाले ने मेरे से ज्यादा एफर्ट की होगी. आप बोल रहे थे, मुझे मेरा एग्जाम्पल याद आया. I was in fact कहेंगे कि dull student till 7th standard. Even teachers डांटते थे, कह रहे तेरा भाई पढ़ता है तू नहीं पढ़ रहा है. Automatically 8th में ही आया कि मैं बहुत पढ़ना चाहिए, unless I study I don't have future. और फिर बहुत पढ़ने लगा, तो मैं भी 10th में second आई, 11th में first rank आई, तो जब मेरी फर्स्ट टाइम हो तो जिसकी फर्स्ट हमेशा आती थी ही वाज ऑल थ्रू आउट फर्स्ट आई रिप्लेस्ड हिम तो वो सेकंड हो गया तो देन ही वेंट इनटू डिप्रेशन.
2: यस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग.
3: सो नो देयर ही नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बंदे ने बहुत मेहनत की है तब ये मेरे आगे निकल गया थोड़ा तो लेट मी टेक इट एज अ चैलेंज. चलो एक साल तो ये आ गया अभी नेक्स्ट ईयर आई विल पुट मोर एफर्ट देन हिम एंड आई विल बिकम फर्स्ट.
4: नो बट इट्स ऑल्सो दैट लाइक ही सेड He was somebody else was first. फिर ये first आ गए but that doesn't mean कि इस व्यक्ति की performance खराब हो गई. It just meant somebody else came and performed a little better. तो हम अपने आप को demean क्यों करना शुरू कर देते हैं ना कि मेरा अच्छा नहीं हुआ. And it's just that somebody worked a little harder. So I think the process should be कि आप उस year के दौरान आप अपना best effort करें. लेकिन when the result comes, then there should be acceptance. Because उस time turmoil नहीं होना चाहिए. Everything that we want to do, we do it during the year. And usme bhi with enjoyment, you know, internal enjoyment.
2: कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम जो हम ये स्टूडेंट्स को ये बताया जा सके. इनफैक्ट राइट नाउ आई हैव अ मेल मैं इस पर जरूर बात करना चाहती हूँ. ये विनय हैं जो दिल्ली में ही पढ़ते हैं एंड दिस इज वॉट हिज प्रॉब्लम इज ऑल्सो कि 12th तक ही हैज बीन एन अचीवर. हर क्लास में मैं फर्स्ट आता रहा और IIT का एग्जाम मैंने दिया एंट्रेंस एग्जाम दिया उसमें भी फर्स्ट 100 में था एंड आई वाज एन अचीवर. अब फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते अभी उन्होंने IIT ज्वाइन किया है कि अभी आई फील दैट आई डोंट टू डू एनीथिंग दैट्स व्हाट ही सेज कि मुझे लगता है कि सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. आई वॉन्ट टू रिनाउंस द वर्ल्ड यू नो मैं नहीं पढ़ना चाहता मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ. मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊँ ये बात क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. सडनली मुझे लग रहा है कि कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. मैंने इतना कुछ तो अचीव कर लिया क्या हुआ ये क्या है. ये एक्चुअली ये विनय की नहीं ये कई टॉपर्स की मैंने देखा है कि इवन पंजाब यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स के साथ ये एक वर्कशॉप हुआ था तब भी ये बात हुई थी. टॉपर्स के साथ ये भी आज के दौर में प्रॉब्लम आ रही है. दे सडनली फील यू नो इतना अचीव करते करते एक इतनी छोटी उम्र में ही अब कितने 16-17 साल के होंगे कि एक ऐसी वक्त आता है कि वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग. ये क्या है. दिस इज अगेन अ डिप्रेशन.
3: या इट इज डेफिनेटली डिप्रेशन. और भी स्टडी करना चाहिए अगर सचमुच हमें उसे एनालिसिस करना हो तो. लेकिन फिर जो सिम्टम्स है उसके आधार से यही लग रहा है. अभी ऐसे केस में कॉज क्या है कि भी ऑल ऑफ अ सडन कुछ मैं ऐसा सोचने लगा कि भी मैं नहीं कर सकूंगा. मैंने एफर्ट की बट नो एट अ स्टेज पर्सन गिव्स अप.
2: नहीं ही सेज कि आई हैव बीन अचीविंग अभी IIT में भी फर्स्ट 100 में आए. हाँ तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मैं अब छोड़ देना चाहता हूँ सब कुछ.
3: स्टिल इफ इज अचीविंग देन वन रीजन कैन बी दैट एंडोजेनस डिप्रेशन इफ इट हैज हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन देन दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. और बात ये भी संभव है कि भाई वो जो कॉम्पिटिशन उसको फेस नहीं कर पा रहे. कैपेसिटी है लेकिन कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पा
2: रहे. फिर कहीं कभी ऐसा भी होता है कि ऊंचाई पे पहुंच के तो मैं अकेला हूँ मेरे लेवल का तो कोई है ही नहीं. यू नो कई बार ऐसा भी होता है कि
3: इस स्टेज पे नहीं होगा ये और हायर स्टेज पे हो सकता है. नहीं जैसे किसको नोबेल प्राइज मिल जाए तब कई बार ये स्टेज आती है कि सब कुछ पाना था पा लिया. नाउ देयर इज नथिंग. नो आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड
2: एंड आई फील अलोन. यू नो लाइक टॉप पे आप अकेले होते ये एक बिलीफ एक और लेके चलते हैं हम कि हम जब चोटी पर होंगे तो हम अकेले होंगे. सो डज इट रियली हैपन.
4: आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज समवेयर आप मटेरियलिस्टिकली चाहे एजुकेशन चाहे प्रोफेशनली आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं लेकिन आप ये सब कुछ चाहते थे कि ये आपको खुशी दे ये आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन दे. आपको बहुत सारी डिग्रीज मिल गई बहुत सारा धन या सब कुछ मिल गया लेकिन वो नहीं मिला जिसको आप ढूंढ रहे थे. तब कहीं ना कहीं लगने लगता है इतनी मेहनत की इतना सब कुछ पा लिया लेकिन वो नहीं मिला जो ढूंढ रहे थे तो इस सबको छोड़ दो अब उसको ढूंढना शुरू कर दो. यू नो यू जस्ट टेक द एक्सट्रीम पाथ. पहले आप सिर्फ भौतिकता की तरफ ही भाग रहे थे अब आप सोचते हो इससे वो मिल नहीं रहा अब इसको छोड़ दो अब आप संन्यास या जैसे आपने कहा यू नो रेनाउंस द वर्ल्ड. बट इट्स नीदर ऑफ द टू. इट्स सपोज टू बी बोथ. दैट इज द बैलेंस कि आप खुशी संतुष्टता से भी भरपूर होते जाएं और भौतिक जो आपको प्राप्तियां चाहिए उसको भी करते जाएं. जब आप वो करते जाएंगे आई थिंक ये स्टेज कभी नहीं आएगी बिकॉज यू गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस. ये क्या हो रहा है मे बी यू आर नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस. तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसे सपोज हम यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं अगर हम जा रहे हैं द जर्नी इज एब्सोल्युटली मिजरेबल. यू नो आप बिल्कुल जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं आप डेस्टिनेशन पहुंच के भी खुश नहीं होंगे. कहेंगे यू नो दैट होल जर्नी टेक्स इट्स टोल ऑन यू तो यू डोंट एंजॉय वेयर यू हैव रीच्ड. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू एंजॉय थ्रू द प्रोसेस एंड तब वो तभी होगा अगर आप हल्के रहकर पढ़ रहे हैं. यू नो समटाइम्स विद स्टूडेंट्स दैट इज व्हाट इज हैपनिंग कि वो इतना टाइटनेस टू बी फर्स्ट, इतनी एंग्जाइटी, वो सब कुछ डिस्चार्ज कर रहा है उनको अंदर से.
2: वही कि वो मुझे पहुंचना, मुझे वो एडिक्शन ना,
4: बिल्कुल
2: फर्स्ट आने की एडिक्शन.
4: वो फर्स्ट आना भी वो खुशी नहीं देगा जो उसे देनी थी, क्योंकि आपने पूरा साल एंजॉय नहीं किया, तो वो प्राप्ति भी बहुत ज्यादा सुख नहीं दे सकती. एंजॉय, आई थिंक वी नीड टू लर्न टू एंजॉय लाइफ, एंजॉय इन द सेंस इंटरनली बींग वेरी हैप्पी एंड एक्सेप्टिंग. एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी, मतलब एक कला है जो हमें सीख लेनी चाहिए, और वो संपूर्ण विश्वास के साथ कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल सही हो रहा है, बिकॉज इट एक्चुअली हैपेंस लाइक दैट. अगर हम डिटैच्ड होकर देखें, हमारे साथ जो कुछ हर स्टेप पे हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट एंड बेनिफिशियल, जिसके लिए हम कहते हैं ड्रामा. ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है, दिस इज एक्यूरेट, परफेक्ट एंड बेनिफिशियल. इसमें कुछ भी चेंज होने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है. एंड व्हेन आई लुक एट इट लाइक दैट, आई रियलाइज एवरी सीन, इससे अच्छा सीन
2: और नहीं हो सकता,
4: और नहीं हो सकता था.
2: तो विनय को आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि सिस्टर शिवानी ने तो यही कहा कि जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो जर्नी है, जो जर्नी हमने ली है, उसे दोनों तरफ का बैलेंस बना के, कि एक स्पिरिचुअलिटी का एक एस्पेक्ट तो है ही, कि एक हम इंटरनलाइज कर लें कि भाई मैं खुशी मेरे अंदर ही है, उसे ही अचीव करूं, और जरूरी नहीं है हर कदम पे ही फर्स्ट आना है, हर बार फर्स्ट आना है. आपने कहा कि वो सेकंड टाइप की ये हो सकती है, यू नो सेकंड टाइप का डिप्रेशन हो सकता है जिसमें केमिकल चेंजेस की हमने बात की थी, एंडोजेनस जो है, तो उसमें इनको क्या सलाह देंगे?
3: एंडोजेनस डिप्रेशन में तो मेडिसिन की जरूरत है. एक बार एक्सपर्ट है वो, कोई प्रोफेशनल उसको जज कर पाएगा. अपने आप भी भले कोशिश करे और ये ट्राई करे कि भी कहां पर मेरे विचारों में गलती है. नहीं, वास्तव में यह प्रॉब्लम विचारों से, अगर स्टिल इफ इज अचीवर, वहां कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो फिर तो उसको एंजॉय करना सीखे. इफ ही फील्स कि भी शायद मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो इनसिक्योरिटी के थॉट्स भी हो सकते.
2: इतना बड़ा अचीवर साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा, ये भी एक मिथ है. ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम नहीं है. आई एम रियली थैंकफुल ही मेल्ड इट टू अस, अदरवाइज वी ऑलवेज फील वी आर वेरी इंटेलिजेंट कि हमें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है. या एक और बात की, अगर हमें ड्रग्स लेते हैं तो वो हैबिट फॉर्मिंग है. यू नो हमें ड्रग्स नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रग्स लेंगे तो हमें हैबिट हो जाएगी. ये दो मिथ हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये सही है या गलत.
3: बहुत अच्छा कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में फायदा ही है. नहीं, और अच्छा साइकियाट्रिस्ट आपको ऐसी दवाई नहीं देगा. इफ यू डोंट नीड ही विल टेल यू कि भी आपके स्टेज परफेक्ट, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये दो तीन और स्टेप्स अपनाइए, और अगर आवश्यकता है तब ही वह देंगे. दूसरी बात, जो मेडिसिन है वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है. एक्चुअली दिक्कत कहाँ होती है पता है, कि भाई सचमुच जो न केवल डिप्रेशन और सारी की सारी साइकेट्रिक बीमारियों को आप देखो, तो अगर ठीक से इलाज किया जाए शुरू में तो 80% बिल्कुल ठीक हो जाते. लेकिन जो 80% ठीक हो गए वो किसी को नहीं बताएंगे कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया या मैं ठीक हुआ. ही विल नॉट टेल अ सिंगल पर्सन.
2: But why? This is again
3: it's sort of a stigma.
2: Belief system.
3: और वो जो 20% जो सिर्फ ठीक नहीं हुए ना, उसी को हम बार बार देख रहे हैं. ये तो ठीक नहीं हो, देखो 6 साल से दवाई ले रहा है, 10 साल से ले रहा है, ठीक नहीं हुआ. इसलिए हमें लगता है कि psychiatric medicines are habit formed. अगर properly ली जाए एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत लंबा नहीं लो, 1 साल भी, 1.5 साल लेनी पड़ती है वास्तव में कई बार. उतना समय आप लो तो नो, इट्स नॉट एट ऑल हैबिट फॉर्मिंग. इवन इन ओल्ड एज समटाइम आई से इवन इफ यू हैव टू टेक इट लॉन्गर डोंट वरी, क्योंकि और उसकी कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं है.
2: अच्छा, और इतनी यंग एज में भी? हाँ,
3: यंगर वंस को हम कहेंगे कि टेक इट फॉर अ शॉर्ट वाइल, लंबा नहीं लो,
2: लेकिन लेना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
3: लेना ही चाहिए.
2: और ओवर इंटेलिजेंट लोगों के लिए, यू नो, लाइक चलते चलते हम ये बात करना चाहेंगे कि ओवर इंटेलिजेंट यूथ, ओवर इंटेलिजेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, वी कैन डू इट, वी कैन हैंडल एवरीथिंग, एंड देन व्हेन दे आर नॉट एबल टू हैंडल, जब नहीं हो पाता तब सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है. हाउ टू,
4: दे आर नॉट बीइंग रियलिस्टिक, दे आर ट्राइंग टू बी परफेक्शनिस्ट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. यू नो हम एक एम रख सकते हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑन द वे. हम कई बार अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हमारे से गलती कैसे हो सकती है, हमें कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है. सो ये मतलब, यू नो, टू मेक योर सेल्फ वेरी टाइट कि आई एम परफेक्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट विल ओनली मेक माई लाइफ डिफिकल्ट. अगर हमें परफेक्शन अचीव करनी है, देन आई कैन बी परफेक्ट इन माई स्टेट ऑफ माइंड. दैट्स पॉसिबल, क्योंकि उस पर कोई और सिचुएशन का कंट्रोल नहीं है. मेरे एम पर, मेरे जो गोल पर है, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं. माई फैमिली, माई सिचुएशन, माई ओन हेल्थ, बहुत सारी बातें. लेकिन मेरे स्टेट ऑफ माइंड इज दी ओनली थिंग जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. सो इफ आई रियली वॉन्ट टू एम फॉर परफेक्शन, आई एम देयर. तो उससे क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर कोई भी गोल अचीव हो या नहीं हो, आई विल स्टिल बी हैप्पी. एंड आई वॉज अचीविंग माई गोल ओनली टू बी हैप्पी. सो इफ आई कैन बी हैप्पी विदाउट रियली रीचिंग देयर, where's the damage done? I'm still happy.
2: Yes.
4: So the whole aim was to be happy.
2: Yeah.
4: But I thought I'll be happy only after reaching there. But I can be happy without reaching there. And I can be happy while going there.
2: In the process, actually, I'm happy. तो डॉक्टर साहब, एक जो हमारे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जितने भी लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, एक बात जो सामने आई यूथ के लिए जो थी कि अचीवमेंट की, दूसरा है मोहब्बत, प्यार, रिलेशनशिप्स. यू नो, नेक्स्ट कड़ी में, नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर उस पर बात करेंगे कि मेजर डिप्रेशन का कारण जो यूथ में है वो एक है कि प्यार में धोखा, या प्यार में अचीव ना कर पाना, या फिर प्यार ना मिल पाना जो वो सोच रहे हैं. एंड व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ लव एक्चुअली, यू नो, एंड रिलेशनशिप्स. तो आज हमने अचीवर्स की बात की और ये बात सामने आई कि गोल रखा जाए, गोल एक बड़ा होना चाहिए सामने, लेकिन जो आज जिस सिचुएशन में है वो रियलिटी भी हमारे सामने होनी चाहिए, उसे रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. डिप्रेशन एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम और आप रूबरू होते हैं, लेकिन इस पूरे सफर में हम ये जान रहे हैं कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते. आज अचीवर्स की बात की, अचीवमेंट की बात की. अचीव करना चाहिए, एम्स होने चाहिए, बड़े गोल्स रखिए, लेकिन आज अपनी सच्चाई जो है उससे भी वाकिफ रहिए. हमने आपसे वादा किया अगली कड़ी में मोहब्बत को लेकर आएंगे कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह से मोहब्बत को देखती है, किस तरह से प्यार के रिश्तों को देखती है, और किस तरह से जब उनमें असफल हो जाती है तो डिप्रेशन की तरफ बढ़ सकती है, कैसे उससे निकल सकते हैं, इसके बारे में अगली कड़ी में बात करेंगे. लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: श्री अरविंद स्कॉलर, आलोचक, दार्शनिक, क्रांतिकारी, कवि, योगी और ऋषि, इन सभी का एक अलौकिक मिश्रण थे। वे भारतीय समाज को संस्कार और आध्यात्म का आधार देकर मजबूत करना चाहते थे। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो व्यक्तियों को उनके वास्तविक चित्त से जोड़ सके। उनकी प्रतिभाओं में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने के अद्वितीय साहस का समावेश भी था। अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता में 15 अगस्त 1872 को हुआ था। दिन खास था क्योंकि 75 साल के बाद देश को इसी दिन आजादी मिली थी। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र को हिंसा द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, यदि वो ऐसा करने में समर्थ हो या इसे छोड़कर कोई और उपाय न बचा हो। उन्होंने अपने विचारों को वंदे मातरम और नवशक्ति अखबार का संपादन करते हुए लोगों तक पहुंचाया था। उनके उग्र विचारों ने गोरी सरकार की दमन नीति में बाधा डाली और उन्हें राजद्रोही बना दिया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हुआ। पांडिचेरी में एकांतवास के दौरान उनका सार्वजनिक रूप से राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना छूट गया, पर गुप्त रूप से उन्होंने आंदोलन से संबंध बनाए रखा। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रबल होने पर भी उनका जोर इस बात पर रहा कि क्रांति की भावना जागृत रहे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने भारत के संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को एक अभूतपूर्व बल प्रदान किया था।
2: देखना,
3: अरे दिवाली की तैयारियां चल रही हैं भैया, बच्चे लोग पहले ही से फटाके फोड़ने लग गए।
4: दिवाली आने के पहले ही फटाके फूट रहे हैं।
2: करतिया, आज रात तुम्हारा ढाबा ना बचेगा काका।
5: मेरा ढाबा क्या अंग्रेजी हुकूमत है मियाँ, हैं? बात करते हो।
4: अरे काका, हमने तो सुना है कि देश को आजाद करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े थे।
5: अरे तुम लोगों को तो सब आधा अधूरा पता है, और तुम लोग तो चट्टान तोड़ने वाले छोटे मोटे बमों से ही डर जाते हो, डरपोक कहीं के।
6: अरे विष्णु, तेरा टेप रिकॉर्डर बंद कर बे, पटर पटर कर रहा है कब से। अरे शांति अच्छी नहीं लगती क्या तेरे को?
7: हाँ काका,
5: पता है हमारे देश के क्रांतिकारियों के लिए ये बम और बंदूक तो खिलौने की तरह होती थी।
7: हाँ काका, ये बात तो है।
4: सही बात है।
5: अच्छा छोड़ो भाई, ये बताओ कि तुम लोग आ कहाँ से रहे हो और जा कहाँ रहे हो?
4: बता भाई।
7: अरे काका, वही चक्कर है, इधर से आओ उधर जाओ, उधर से आओ इधर जाओ।
2: अरे काका, मैं तो कई बार मार लेकर पांडिचेरी गया हूँ, और मैंने अरविंद आश्रम भी देखा है काका।
5: अरे वाह, पांडिचेरी, अरविंद आश्रम। अरे अरविंद घोष तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे।
7: अरे वाह काका, आपके ढाबे पे आने का यही तो मजा है, हर बार एक नए क्रांतिकारी के बारे में सुनने को मिलता है। आप तो सुनाओ काका।
4: हाँ सुनाओ काका।
7: लेकिन ध्यान रखना, इस बार हर बार की तरह रुलाना मत मेरे को।
4: तू भी यार।
5: नहीं बेटा, नहीं नहीं, वो तो हम इस बहाने याद कर लेते हैं, उन्हें प्रणाम कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। अरे वो तो तुम लोग आ जाते हो, मुझे छेड़ छेड़ के सबरी बातें पूछ लेते हो, वरना कौन सुनता है।
7: अरे कोई सुने या ना सुने, अपने को क्या, हम तो सुनते हैं ना। अरे आपका ढाबा खींच ही लाता है हमें।
5: हाँ तो सुनो बेटा, अरविंद घोष बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जितने होशियार थे कि उनकी होशियारी से अंग्रेज भी चमत्कृत हो गए थे। उनके पिता तो उन्हें सरकारी अफसर बना देना चाहते थे।

0: एक होशियार बेटे से पिता की ये अपेक्षा उचित ही थी, पर बेटा जब अरविंद घोष हो तो इस अपेक्षा का पूरा होना कहां संभव था। भारत मां की गुलाम दशा हरदम अरविंद के मन को व्यथित किए रहती थी। भारत मां की इस कुशाग्र संतान के मन में क्रांति की लहरें उठने लगी थी।
1: अरविंद, मैं तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश हूं और चाहता हूं कि तुम इंडियन सिविल सर्विस के इम्तिहान में बैठो। तुमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। अंग्रेजी के साथ साथ लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच भाषाओं पर भी तुम्हारा अच्छा अधिकार है। तुम्हारा चयन आसानी से हो जाएगा।
2: हाँ, जानता हूं, पर मैं अंग्रेजों की गुलामी के बंधन में नहीं बंधना चाहता।
1: गुलामी का बंधन? इंडियन सिविल सर्विस अंग्रेजी राज की सबसे बड़ी नौकरी है। उसकी आन बान और ठाट बाट का कोई मुकाबला नहीं। राज करोगे राज।
2: माफी चाहता हूँ पिताजी, पर मैं ICS की परीक्षा में ना बैठूंगा। एक हिंदुस्तानी होकर अंग्रेज को हिंदुस्तान पर राज करने में मदद करूं, ये मुझसे ना हो सकेगा।
1: ये मेरा यानी तुम्हारे पिता का आदेश है। क्या पिता के आदेश की अवहेलना करोगे?
2: पिता के आदेश की अवहेलना भला मैं कैसे कर सकता हूँ।

0: धर्म संकट था अरविंद के सामने, एक तरफ देश और दूसरी ओर पिता। कहा करूं, कित जाऊं? परीक्षा के लिए आवेदन करने का समय कम बचा था। बुद्धिमान अरविंद बड़ी से बड़ी दुविधा से पार पाने में समर्थ थे। आवेदन कर दिया, सफलता में कोई संदेह न था।
1: अरे काका, अरविंद घोष अगर अंग्रेजी राज में अफसर बन गए थे तो अभी तो आपने कहा था कि वो क्रांतिकारी थे।
2: अरे सुनो तो सही, होशियार तो वो थे ही। पिता की बात रख ली, बहुत अच्छे नंबरों से आईसीएस का इम्तिहान पास किया, मगर घुड़सवारी का इम्तिहान भी पास करना बहुत जरूरी था। अरविंद जानबूझकर उस इम्तिहान के लिए देर से पहुंचे, नतीजा अंग्रेजों ने उन्हें फेल कर दिया।
3: अरविंद बेटे, आईसीएस तो बन नहीं पाए, अब क्या सोच रहे हो?
4: पिताजी, बड़ौदा के राजा मुझे अपना निजी सचिव नियुक्त करना चाहते हैं।
3: ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं तुम्हारे जाने का शीघ्र इंतजाम कर देता हूँ। मैं चाहूंगा अपने छोटे भाई वारिंद को भी ले जाओ।
4: जी पिताजी।
0: अरविंद की तरह वारिंद्र की शिक्षा दीक्षा भी इंग्लैंड में हुई थी। बड़ौदा के राजा साहब ने बाद में अरविंद घोष को बड़ौदा कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बना दिया।
4: वारिंद्र, देश की गुलामी मुझे सालती है। अगर हमारे जैसे नौजवान चाकरी करते रहे तो देश को गुलामी की जंजीरों से कौन मुक्त कराएगा?
5: आप ठीक कहते हैं भैया, पर बड़े बड़े नेता लोग अंग्रेजों का विरोध कर तो रहे हैं।
4: प्रार्थनाओं और हाथ जोड़ने से भला कोई देश को आजाद करा सकता है? आजादी मिलती है बमों से, बंदूकों से, समझे?
5: खतरनाक रास्ता है भैया।
4: और उस पर तुम चल रहे हो।
5: क्या मतलब?
4: पगले, तुम्हारा बड़ा भाई होकर छोटे भाई के बारे में क्या इतना भी ना जानूंगा?
5: ओह, तो आप सब जानते हैं।
4: हाँ, कि तुम क्रांति के खतरनाक रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हो, पर क्या इसका परिणाम जानते हो?
5: मौत।

अरविंद और वारिंद्र दोनों भाई एक पिता की दो संतानें क्रांति पथ के पथिक बन चुके थे। पिता ने जिस उद्देश्य से दोनों पुत्रों को ऊंची शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी वो अब पूरा न हो सकता था। देश की आजादी के लिए बलिदान ही लक्ष्य था दोनों भाइयों का। पिताजी की उम्मीदों को लेकर भी उनमें बातें होती।

0: पिताजी के सपनों का क्या होगा?
1: मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भैया, जबकि मैं जानता हूँ कि आप खुद उसी रास्ते पर हैं।
2: अरे तो बड़े भाई की जासूसी करते हो?
1: आपका छोटा भाई हूँ आखिर।
2: पिताजी मुझसे नाराज होंगे कि छोटे भाई को भी बिगाड़ दिया।
1: नहीं भैया, उन्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि उनकी दो दो संतानें भारत माता की सेवा कर रही हैं।

अंग्रेज सरकार ने बंगाल को दो टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र रचा, जिसके खिलाफ सारा बंगाल सुलग उठा। अरविंद घोष राजा साहब की नौकरी छोड़ बंगाल लौट गए। कलकत्ता के निकट यादवपुर के राष्ट्रीय महाविद्यालय में अरविंद घोष प्राचार्य बन गए। साथ में वंदे मातरम नामक अखबार का संपादन भी करने लगे। पर यह बाहरी चेहरा था, असल में तो अरविंद घोष सशस्त्र क्रांति दल का न सिर्फ नेतृत्व कर रहे थे, वरन नौजवानों को भी इसके लिए प्रेरित और दीक्षित कर रहे थे।

0: साथियों, अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। इनसे प्यार से नहीं, मार से निपटा जा सकता है।
1: लेकिन दादा, मार के लिए हथियार चाहिए।
2: दादा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
1: दादा, ये हेमचंद्र दास है, हमारे ही पथ का राही।
0: स्वागत है। बोलो हेमचंद, क्या कहना चाहते हो?
2: हथियारों के लिए हमें आत्मनिर्भर होना होगा। यहाँ वहाँ से छुटपुट हथियार मंगा कर हम कब तक लड़ सकते हैं?
0: ठीक कहते हो। तुम्हारी राय में क्या करना चाहिए?
2: हमें खुद ही हथियार बनाना सीखना होगा।
1: पर हमें सिखाएगा कौन?
0: फ्रांसीसी और रूसी विशेषज्ञ।
2: पर दादा, वो हमें क्यों सिखाएंगे?
0: उसकी चिंता मत करो, श्याम जी कृष्ण वर्मा और विनायक सावरकर विदेश में ही हैं। वो फ्रांसीसी और रूसी विशेषज्ञों की व्यवस्था करेंगे। पर
2: क्या दादा?
0: इसके लिए बहुत से धन की आवश्यकता होगी। वो कहाँ से आएगा?
2: उसकी चिंता ना करो, वो मैं देख लूंगा।
3: हेमचंद्र ने पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा बेच दिया और इस तरह धन जुटाकर जा पहुंचा विदेश बम बनाने का प्रशिक्षण लेने।

0: हथियार बनाने में आत्मनिर्भर होना सशस्त्र क्रांति के लिए बेहद आवश्यक था। बाहर से हथियार मंगाना खर्चीला तो था ही, खतरनाक भी था। पर देश में हथियार बनाना सीखने वाला कोई नहीं था। देश से बाहर जाने की राह में कई कठिनाइयां थीं। सबसे बड़ी कठिनाई थी धन की, जो बहुत अधिक लगना था। फिर प्रशिक्षण के लिए कुशल व्यक्ति की तलाश।
1: हेमचंद, तुमने बम बनाने की पूरी ट्रेनिंग कर ली है
2: क्या दादा? कहिए तो आप पर ही बम चलाकर दिखा दूं।
1: अरे नहीं, डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं चलाने की नहीं, बम बनाने की बात कर रहा हूँ।
2: इतना जोरदार बम बनाऊंगा कि जब फटेगा तो वायसराय माय कुर्सी के सीधे इंग्लैंड की रानी पर गिरेगा।
1: बहुत खूब।
0: हथियार बनाना तो सीख लिया, पर उन्हें बनाने के लिए जगह की तलाश थी, धन भी काफी लगना था। बिना इन दो चीजों के सारा प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाता। सभी साथी इन कामों में जुट गए। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। धन भी इकट्ठा हुआ और स्थान की तलाश भी पूरी हुई।
3: दादा, अब देखना होगा एक सुरक्षित स्थान जहां बम बनाए जा सके, यानी एक कारखाना।
1: सवाल फिर धन का है।
3: चिंता ना करें दादा, हमारे साथियों ने बहुत सा धन जुटा लिया है, अभी का काम चल जाएगा।
1: बात की देखी जाएगी।
4: तो दादा, स्थान की तलाश प्रारंभ करें?
1: तलाश कर ली है। मुरारी पुकुर का बगीचा।
0: कलकत्ता के मुरारी पुकुर बगीचे में बम कारखाना स्थापित हो गया। अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से प्रतिशोध लेने की योजनाएं बनने लगी और क्रियान्वित भी होने लगी।

कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने किंग्सफोर्ड के धोखे में एक अंग्रेज वकील कैनेडी के परिवार पर बमों से प्रहार कर दिया।

0: अफसोस है कि किंग्स फोर्ड बच गया।
1: हमारे दोनों साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
2: दादा, मुझे खबर मिली है कि पुलिस घर घर जाकर तलाशी ले रही है।
0: आप उन्हें बम से उड़ाओ और वो तलाशी भी ना ले। साथियों, हमारे लगातार हमलों ने पुलिस और सरकार की नींद हराम कर दी है। वो हमें जगह जगह सूंघते फिर रहे हैं। हेमचंद
2: जी, दादा,
0: अपने सभी साथियों से कह दो कि सतर्क रहें।
2: दादा, वो सभी सतर्क हैं।
1: और मेरा ख्याल है कि हमें हमले बढ़ा देने चाहिए।
0: रणनीति कहती है कि हमला तब करो जब दुश्मन गाफिल हो। कुछ समय के लिए हम सभी को भूमिगत होना पड़ेगा। जब वो हमें ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, निराश होने लगेंगे, तब हम दोबारा हमला करेंगे।
1: वाह दादा, बढ़िया प्लान है।

क्रांतिकारियों और पुलिस में लुका छिपी का खेल जारी था। मुखबिरों का जाल बिछा रखा था अंग्रेजी सरकार ने। रोज नई खबर और उस खबर पर रोज पुलिस नए छापे डालती। क्रांतिकारी पुलिस के हत्थे न चढ़ते, पर उनकी कार्रवाइयों की गति धीमी हो गई थी, जिससे क्रांतिकारियों में भी बेचैनी थी। अरविंद कुशल रणनीतिज्ञ थे, इसलिए खूब समझते थे कि चोट कब, कहां, किस पर और किस समय की जानी चाहिए।

0: हमारा प्लान कामयाब रहा।
1: हमारे बमों ने अंग्रेज सरकार को झिंझोड़ दिया है।
0: हम एक हिंदुस्तानी की जान के बदले 100 अंग्रेजों की जान लेंगे, तभी इन्हें हमारी ताकत का एहसास होगा
1: और वो अधिक सतर्क हो जाएंगे, ये मत भूलना।
2: और अंग्रेज सरकार बेहद सतर्क हो गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पहले ही अंग्रेजों के हत्थे चढ़कर फांसी चढ़ा दिए गए थे। एक दिन अंग्रेज सरकार मुरारीपुर बगीचे में स्थित बम कारखाने का पता लगाने में सफल हो गई। अरविंद घोष अपने साथियों सहित पकड़ लिए गए और अब वे सभी जेल की सीखचों में बंद थे। सभी पर मुकदमा चला।
3: झूम झूम बदलियां, झूम झूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही। झूम झूम बदलियां, झूम झूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचले मचा रही।

0: वारिंद्र, अंग्रेज बड़े होशियार हैं। फैसला पहले लिख लेते हैं और मुकदमा बाद में चलाते हैं।
1: तुम कारा इंडियन गोरा लोग पर बम फेंकता है।
2: और ये सुनिए दादा, हम तुमको फांसी पर लटका देगा, अंडरस्टैंड?
0: फर्मी लॉर्ड, अंग्रेज सरकार सारी दुनिया में खुद को इंसाफ पसंद कहता फिरता है।
3: ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हम केस चलाता है।
2: तुम देखेगा हम कितना अच्छा नाटक खेलता है। अभी हम कोर्ट कोर्ट का खेल खेलता है, बाद में फांसी फांसी का खेल खेलेगा।
0: दादा सही है।

न्यायप्रिय दिखने के लिए सजा के पहले मुकदमे का नाटक जरूरी होता है। अंग्रेज सरकार इसमें माहिर थी। नाटक चल रहा था, ऐसा नाटक जिसके अंतिम सीन के डायलॉग पहले ही लिखे जा चुके थे। जेल में क्रांतिकारी उस नाटक का नाटक खेलते। जेल की सीखचों के पीछे ये बढ़िया मनोरंजन था जिसका आनंद ये मतवाले खूब उठाते।

0: मिलॉर्ड, अरविंद घोष एक खतरनाक मुजरिम है। ये अंग्रेजों का दुश्मन है और दूसरे नौजवानों को भी अंग्रेजों के खिलाफ भड़काता है।
1: मिलॉर्ड, मैं मिस्टर नॉर्टन से गुजारिश करूंगा कि बिना सबूत मेरे मुवक्किलों पर इल्जाम ना लगाएं।
0: वकीले सफाई, मिस्टर चित्तरंजन दास को मालूम होना चाहिए कि मैं मिस्टर नॉर्टन सरकारी वकील हूँ,
1: इसलिए अदालत में बिना सबूत कुछ भी कहने को आजाद हूँ।
0: मैं सबूत के तौर पर एक पत्र अदालत के सामने पेश कर रहा हूँ।
1: ओ, मुझे लगा कोई पिस्तौल या बम पेश करेंगे।
0: ये पत्र अरविंद घोष के नाम उनके छोटे भाई वारिन घोष ने लिखा है।
1: मैं हिंदुस्तान के सारे छोटे भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि बड़े भाइयों को पत्र ना लिखे, वरना सरकार उन्हें खतरनाक मुजरिम मान सकती है।
0: मिस्टर चित्तरंजन दास, इस पत्र में वारिन ने लिखा है अभी मिठाइयाँ बांटने का समय है।
1: हो सकता है मिलॉर्ड, मिस्टर किंग्सफोर्ड की जान बचाने की खुशी में वारिंद्र ने ऐसा लिखा हो।
0: ये सभी खतरनाक मुजरिम हैं जो किंग्सफोर्ड की जान लेना चाहते थे। यहाँ मिठाइयाँ का मतलब है बम से।
2: क्या बात है, मिठाइयाँ और बम।

0: मिस्टर मार्टिन ने अरविंद घोष और उनके साथियों को सजा दिलवाने के लिए अनाप शनाप दलीलें दी। अरविंद घोष का बचाव कर रहे थे उस समय के प्रख्यात वकील चितरंजन दास। मिस्टर मार्टिन ने अपना पूरा जोर अरविंद को खतरनाक मुजरिम और हत्यारा साबित करने में लगा दिया। अरविंद के बचाव में चितरंजन दास ने बचाव करते हुए कहा,
1: मिलॉर्ड, मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि उस समय जब ये विवाद खामोशी में डूब जाएगा, उस समय जब ये व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो जाएगा, तो एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाएगा। इसकी वाणी न केवल भारतवर्ष में वरन सारे संसार के कोने कोने में ध्वनित और प्रतिध्वनित होती रहेगी।

0: और बहस के दौरान वकील सफाई का कहा एक एक शब्द कालांतर में सही साबित हुआ। अरविंद घोष पर कोई जुर्म साबित न हो सका और अंग्रेज सरकार को मजबूर होकर उन्हें निर्दोष घोषित करना पड़ा। चितरंजन दास के कहे शब्द अरविंद के मस्तिष्क में गूंजते रहे और उन्हें मथते रहे।
1: ये देश निश्चित ही एक दिन गुलामी से मुक्त होगा। मुझे मानव कल्याण का पथ खोजना है, खोजना है वो पथ जहां जगत मात सुख शांति का अनुभव करे।
0: और अरविंद घोष ने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया जिसे आज हम अरविंद आश्रम के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1872 को इस धरती पर अवतरित हुई ये आत्मा 5 दिसंबर 1950 को धरती से विदा हो गई। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी इज विद अस। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति, और आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
2: थैंक यू
1: सिस्टर। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि जैसे एक सपोजिंग मेरा एक्सीडेंट होता है और मैं अपना टूटा हुआ हाथ लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मुझे लेक्चर दे कि बारिश में गाड़ी क्यों चलाया, ऑयल गिरी होती है सड़क पर, इतनी रात को क्यों किया, मैं वो इरिटेट हो जाऊंगा कि भाई साहब आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर होंगे, मुझे आपके पास इलाज नहीं कराना है, मैं जा रहा हूँ। तो हम लोग भी यही करते हैं कि बच्चा जब दर्द लेकर आता है उसको उसकी बात सुनने के बजाय उसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं।
2: अब या तो है कि बच्चा अपना दर्द लेकर आता है, मतलब बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम में है, उससे कोई गलती हुई है, तो फिर उसकी अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, फियर में है, हर्ट में भी है, वो पेन लेकर आ रहा है और हम उस टाइम जजमेंटल हो जाते हैं। अब वॉट अगर बच्चा कोई पेन में नहीं है, वो सिंपली अपनी बात लेकर आया है और वो बात उसके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल राइट है, और अगर बच्चा अपनी राइट बात, और ये सिर्फ बच्चा नहीं, एनीबडी, मतलब कोई भी, इट कैन बी हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, बॉस, कोलीग, एनीबडी, जब कोई अपनी राइट बात हमारे सामने रखे और हम उसको रॉन्ग कहें तो कॉन्फ्लिक्ट हैज स्टार्टेड। वी हैव टू अंडरलाइन टुडे आज इस बात को कि अगर खुश रहना है और हम चाहते हैं कि दूसरे भी खुश रहे, तो ये राइट एंड रॉन्ग सारा दिन जो, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, बट हु इज राइट इन दिस, यू नो, कभी डिस्कशन में भी बैठते हैं बट फाइनली हु इज राइट, बिकॉज वी ऑलवेज फील कि एक राइट होना चाहिए ना फाइनली, तो वो एक राइट को ढूंढो कि वो एक राइट कौन सा है। आज मुझे अपनी सोच में और अपनी वोकैबुलरी में भी, शब्दों में भी एक लाइन को चेंज करना है, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, ये हटाकर अब हमें जो लाइन लानी है वो ये, वी आर डिफरेंट, हमारी सोच अलग है, आपकी ओपिनियन मेरी ओपिनियन अलग है, आप भी राइट है अपनी साइड से, आप भी राइट है, मैं भी राइट, ये भी नहीं कि अच्छा ठीक है आप राइट मैं रॉन्ग, हर बात में हमें कईयों को आदत पड़ जाती है, ठीक है आप राइट मैं रॉन्ग, जिनके अंदर हीन भावना होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो बहुत जल्दी कहेंगे दूसरा राइट मैं रॉन्ग, जिसके अंदर
1: मैं तो हूँ ही गलत, मैं तो पैदा ही गलत हुई थी,
2: अंदर भी फील करते हैं कि मैं रॉन्ग, एंड ऑल द अदर वन, ठीक है आप रॉन्ग मैं राइट, ईच वन एवरी टाइम इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज ऑलवेज, ये तो मतलब आप कोई भी सिचुएशन में डाल दीजिए। जब काउंसलिंग के लिए दो लोग आते हैं तो काउंसलिंग के टेक्निक में क्या होगा, हम पहले एक की बात सुनेंगे, फिर एक को कहेंगे आप थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, हम दूसरे की भी बात सुन लेते हैं क्योंकि वो अकेले में अपनी बात अच्छी तरह से कहेंगे। पहले जब पहली बार ये करना शुरू किया तो जो व्हेन आई हर्ड द फर्स्ट पर्सन आई वाज लाइक, तो बिल्कुल राइट बोल रही है, दिस वाइफ इज एब्सोल्युटली राइट, वो जो कह रही है, उसके हस्बैंड बहुत तंग करते हैं, हस्बैंड ऐसे हैं, उसको समझते नहीं, तो उनकी बात सुनने के बाद आई वुड प्रिपेयर माई माइंड कि शी इज एब्सोल्युटली राइट, अब ये जब दूसरे आएंगे अंदर मुझे उनको बताना है कि उनको क्या क्या चेंज करना है अपने अंदर। लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति आके बैठे और वो अपनी बात बोलना शुरू करे, लाइक ये भी तो बिल्कुल राइट है, तो व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट, वेयर इज द प्रॉब्लम, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है, प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम ये, इनको उनका नजरिया नहीं दिखाई देता और इसको उसका नजरिया नहीं दिखाई देता। काउंसलर का रोल सिर्फ ये है कि इन दोनों को जो ऐसे देख रहे हैं, जिनको सिर्फ अपना राइट दिखाई दे रहा है, इनको थोड़ा सा ऐसे करना है, इसका पर्सपेक्टिव, मतलब इसकी सोच उनको दिखानी है और उनकी सोच इनको दिखानी है, बाकी चीज वो करेंगे दोनों, विच मीन्स एम्पैथी, इसको हम कहते हैं एम्पैथी, जब हम कहते हैं अपनी पोजिशन से हटके अपने आप को दूसरे की पोजिशन में रख के फिर देखो कि उसको क्या दिखाई देता है। आप उस तरफ बैठे हैं, मैं इस तरफ बैठी हूँ, मेरे लिए जो राइट है वो एक कम्प्लीटली अलग सीन है, एंड फॉर मी दिस इज 100% राइट, 100% ट्रूथ, राइट भी नहीं, 100% ट्रूथ, एंड आपका ट्रुथ एक कम्प्लीटली अलग साइड है. अब हम इस चीज पर जीवन भर आर्ग्यू कर सकते हैं,
1: धूलती चेहरे पे और आईना साफ करते
2: हैं. बिल्कुल. अब करना क्या है इस रिश्ते में, कि दोनों में से एक अपने पोजीशन से हटके
1: दूसरे
2: की पोजीशन में जाए और फिर देखे और फिर कहेगा अच्छा यू आर ऑल्सो राइट. अब कई बार ये होगा कि हम दूसरे की पोजीशन देख ही नहीं पाते हैं, मुझे, क्योंकि इफ आई एम स्टक हियर एंड आई एम स्टक टू दिस चेयर एंड यू आर स्टक टू दिस चेयर, देयर इज नो वे आई कैन सी दिस.
1: अब मैं जो कैमरे से आपको देख रहा हूँ और आपके पीछे क्या है सिर्फ मैं देख सकता हूँ.
2: अब मेरे को क्या करना होगा, अब मुझे क्या करना होगा,
1: या तो
2: यहाँ आना पड़ेगा. अब कई बार मैं नहीं उठकर वहां सकती, विच मीन्स मुझे आपकी सोच समझ नहीं आती, आपको क्या दिखाई दे रहा है मुझे समझ ही नहीं आता. ये भी हो सकता है कि जीवन भर मुझे आपकी बात, वो बात किसी एक टॉपिक पे मुझे आपकी बात, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी ओपिनियन समझ ही नहीं आए और आपको मेरी समझ ना आए, विच मीन्स हम अपनी अपनी कुर्सी से कम्प्लीटली अटैच्ड है. ऐसे टाइम पर हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, सिर्फ एक. आई कैन नॉट सी व्हाट यू कैन सी, यू कैन नॉट सी व्हाट आई कैन सी, बट आई ट्रस्ट दैट व्हाट यू आर सेइंग इज द ट्रूथ, दैट्स ऑल. मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका, आपको नहीं समझ में आ रहा मेरा, इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वो आपके लिए संपूर्ण सत्य है और संपूर्ण सही है. ये रिस्पेक्ट चाहिए. मुझे नहीं दिखाई दे रही आपकी बात, मैं कितना भी ट्राई करूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये क्यों, यू नो समटाइम्स वी ट्राई टू थिंक फ्रॉम द अदर पर्सन साइड, क्या सोचकर ऐसा किया होगा, उस टाइम ऐसा नहीं सोचा, अच्छा ऐसा सोचा, बट कैसे ऐसा सोचा, मतलब दूसरे की सोच नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आए.
1: सोचे भी क्यों,
2: सोचे दूसरे को समझने के लिए, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू.
1: ठीक है, दूसरे को समझने का भी एक, उसकी भी एक लिमिट होती है, दूसरे को समझने की.
2: दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग,
1: दूसरे को गलत समझने के लिए सोच रहे हैं.
2: ये अगर हम सारा दिन में ये भी करके देखे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि कई बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखे, ट्राई टू गेट इन टू द अदर पर्सन माइंड.
1: अभी मैंने ऐसे उंगली की थी तो मैंने सोचा पीछे के कैमरे में मेरा शायद हाथ आए तो आपका, आपको कवर ना हो जाए, तो कैमरामैन ने ये सोचा कि मैंने बोला कि उसके भरोसे, भगवान के भरोसे,
2: तो
1: मैंने उंगली उठाई यूं.
2: हाँ.
1: कि आवाज प्लेन जा रहा है, प्लेन की तुम्हें आवाज आ रही है के ऊपर, और मैं बार बार ऐसे दिखा रहा हूँ तो वो समझ रहे आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि भगवान के भरोसे, भगवान बता रहे हैं वो,
2: तो
1: कौन राइट है कौन रॉन्ग है.
2: अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये सारा दिन में हम करके देख सकते हैं कि अपनी सोच से दूसरे को नहीं एनालाइज करें, दूसरे के मन में घुसकर देखने की कोशिश करें कि वो कैसा सोचता होगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम.
1: लेकिन मैं तो यहाँ हंस दिया.
2: हाँ.
1: लेकिन फिर मैं ये भी सोच सकता था ना, मैं यूं यूं बता रहा हूँ तुमको सुना ही नहीं देता क्या, ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है, ये का मतलब क्या मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं तो एयरक्राफ्ट सुना रहा हूँ तुमको, मतलब झगड़ा शुरू हो सकता है किसी भी बात, और मैं हंस दिया.
2: हाँ, क्योंकि आपने कहा अच्छा आपको ये लगा, बट एक्चुअली तो मैं ये कह रहा था, सिंपल.
1: नहीं, मुझे फनी लगा कि मैं एयरक्राफ्ट बता रहा हूँ वो भगवान बता रहे.
2: लेकिन तो वो सही है ना, वो सही है ना. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना है या कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना है, ये कम्प्लीटली हमारे हाथ में है. जिस क्षण आप एक बार अपने माइंड में ये लाइन डाल देंगे ना, the other person is also right, even if I'm not liking it, ये तक भी हम पहुंचेंगे कि मुझे आपकी बात पसंद भी नहीं आ रही, वो मेरे लिए कम्फर्टेबल भी नहीं है, आपकी उस बात से मेरा कई गुना नुकसान होता जा रहा है, मेरी कई जीवन में प्रॉब्लम्स आती जा रही है, लेकिन फिर भी आप जो कर रहे हैं वो आपके संस्कारों के वश, आपके दृष्टिकोण से आप उस क्षण अपने लिए राइट कर रहे हैं, एनर्जी डिफरेंट होगी.
1: आपकी ये जो बात है ना संस्कारों वर्ष, उसमें सबसे अच्छी मुझे ये लगती है कि भाई पास्ट कार्मिक अकाउंट,
2: बहुत बड़ी
1: जब बात है. इसकी एक लाइफ अलग है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरी बेटी ये करे, मेरा बेटा ये करे, मेरा बेटा ऐसा क्यों करता है, मेरी बेटी उसको बुद्धि क्यों नहीं है, पूजाएं कराओ, फलाने के बस ले जाओ, इससे अब उसका भी एक कार्मिक अकाउंट है ना, उसकी उसका जीवन अलग है ना.
2: एंड अगर
1: मैं कैसे बना सकता हूँ उसके जीवन,
2: बिल्कुल नहीं, पर मेरा रोल क्या है, मेरा रोल है अब उनको गाइड करके, उनको एम्पावर करके, एक उनके लिए जो सही दिशा है उस पर जाना, लेकिन उसके लिए फर्स्ट

0: accept the present. Till I resist the present, I cannot change the next minute.
1: आप जरा ये समझाएंगे बात.
0: अगर मुझे आपके अंदर कोई बात अभी ठीक नहीं लग रही, सपोज, एंड मुझे आपको एज अ फ्रेंड गाइड करना है या एडवाइस देनी है कि नेक्स्ट क्षण हम ऐसे कर सकते हैं, यू नो, हम ऐसे भी कर सकते हैं. अगर आप ऐसे करके देखें तो मे बी इट विल डू अ वंडर फॉर यू. लेकिन नेक्स्ट क्षण, नेक्स्ट मिनट में एक चेंज लाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. चेंज लाना है ना, एनर्जी चाहिए. ये एनर्जी कैसी चाहिए? हार्मनी की, रिस्पेक्ट की, ट्रस्ट की, प्यार की. तब कुछ चेंज आएगा, वेदर इट्स चेंज फॉर माई सेल्फ और चेंज फॉर अनदर पर्सन. लेकिन वो एनर्जी क्रिएट करने के लिए मेरा प्रेजेंट मोमेंट कैसा होना चाहिए? स्टेबल. अगर मैंने इस मिनट रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रिजेक्शन क्रिएट किया, तो प्यार, रिस्पेक्ट ये ब्लॉक हो गया. जैसे ये ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट मिनट में जो चेंज मुझे लाना है वो नहीं आएगा. दैट विल नॉट कम. तो फर्स्ट मिनट में, हर क्षण, मे बी नेक्स्ट मिनट ओनली वी हैव टू चेंज, लेकिन इस मिनट एक्सेप्टेंस मीन्स यहां पे स्थिरता. एक्सेप्टेंस मीन्स स्टेबिलिटी, मीन्स ऐसे ऐसे ऐसे नहीं हो रहा, क्यों, क्या, कैसे. स्टेबल रहकर यूज दैट एनर्जी टू क्रिएट चेंज.
1: Beautiful.
0: For yourself also, not only for other people, for yourself.
1: For yourself means?
0: Means अभी मेरे से कोई गलती हुई है, मुझे चेंज होना है, मुझे चेंज होना है. I realized this is not the way, this is the way. तो पहले मुझे इस मोमेंट को, इस गलती को, अपनी इस कमजोरी को पहले एक्सेप्ट करना होगा कि यस, दिस इज इट. लेकिन उस क्षण मेरे लिए वो राइट था.
1: जैसे मुझे हर बात पे गुस्सा करने की आदत है, तो क्या एक्सेप्ट करूं इसमें?
0: क्यों, मेरे संस्कार है, मैंने पास्ट कैरी फॉरवर्ड किया है, वो मेरा बहुत डीप रूटेड संस्कार है. आई अंडरस्टैंड इट नाउ. पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूं.
1: मैं तो पनिशमेंट में ही बिलीव करता था कि आई एम गोइंग टू पनिश मायसेल्फ. आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आज मैंने ये गलती कर दी.
0: उससे नहीं चेंज होगा संस्कार, मीठा नहीं खाने से या खाना नहीं खाने से संस्कार नहीं चेंज होगा.
1: पनिश नहीं करना है अपने आप को.
0: पनिश विल नॉट ब्रिंग अबाउट चेंज. पनिश नहीं करना है. एक्सेप्ट, मेरे अंदर ये संस्कार है एंड इट्स ओके.
1: बचपन से जब एनसीसी, एसीसी और मिलिट्री जो भी है हम लोग करते थे स्कूल में, 5 मिनट लेट आते थे, 3 राउंड्स रन, और 10 मिनट लेट आए, 5 राउंड रन रन. पनिशमेंट तो हर एक चीज की मिलती थी. स्टैंड अप ऑन द बेंच, क्लास में बात किया, ये तो पनिश पनिश पनिश पनिश. फिर बाद में सुनते थे गॉड पनिशेस यू. तो पनिशमेंट की इतनी आदत पड़ी हुई है ना.
0: पनिशमेंट का जो तरीका है, जो हम बच्चों के साथ भी करते हैं, होमवर्क नहीं किया, बेंच पे खड़े हो जाओ, ऐसे कान पकड़ के क्लास के बाहर खड़े हो जाओ. लेट मी आस्क माई सेल्फ, वॉट इज द इंटेंशन. लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं हम? चाहते हैं कि जो आज हुआ, जो इस बच्चे ने आज किया या जो मैंने आज किया, वो दूसरी बार फिर से नहीं होना चाहिए. यही चाहिए ना. लक्ष्य तो क्लियर है ना. व्हाट हैपेंड शुड नॉट हैपन अगेन. अब अगर वो छोटी बात है कि होमवर्क नहीं किया या कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसे कर दिया, उसमें हमने मेथड कौन सा यूज किया? फियर, कि ये करोगे तो नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा होगा. इसलिए इस डर से नहीं करो कि अगर होमवर्क नहीं करके आओगे तो बेंच पे खड़ा होना पड़ेगा 1 घंटा. ये एक बार इनके साथ हो जाए तो इस डर से ये नेक्स्ट टाइम नहीं करके आएंगे. इवन उन चीजों में वो डर वाला मेथड यूज नहीं होता, क्योंकि आत्मा की ताकत, हम अपने आप को इमेजिन करें, अगर हम एक बहुत बड़े ग्रुप में बैठे हैं, एक मीटिंग चल रही है, हमने कुछ गलत बोल दिया और जो मीटिंग का लीडर है हमें कहे कान पकड़ के खड़े हो जाओ 1 घंटा सबके सामने, या हॉल के बाहर जाकर आप खड़े हो जाइए, आप मीटिंग में आपस में कैसे बात कर सकते थे इस तरह से? दिस इज इनडिसिप्लिन. आपका मोबाइल बजा कैसे मीटिंग के अंदर? इनडिसिप्लिन. प्लीज गो एंड स्टैंड आउटसाइड फॉर 1 आवर.
1: हाउ विल वी फील?
0: बट हाउ विल वी फील? अपने लिए, एक छोटे बच्चे के लिए नहीं. अगर हमारे साथ ये एक्शन लिया जाए, ये पनिशमेंट हो कि आप कान पकड़ के बाहर खड़े हो जाइए 1 घंटे के लिए, व्हाट इज द फीलिंग? क्या फील होगा उस टाइम? इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, आत्मा की शक्ति, ऐसे मुझे

0: कैसे सब लोग देख रहे हैं, व्हाट एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम एवरीबॉडी, मैं खुद कितना ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा हूँ। शक्ति डाउन एंड चाहते हैं परिवर्तन अप। परिवर्तन लाने के लिए शक्ति जहां थी
1: उससे ऊंची करनी चाहिए,
0: उससे बढ़ानी है। हम क्या कर रहे हैं, लो करके नाउ चेंज, लो करके नाउ चेंज, एंड फिर कहते हैं कितना भी पनिश करो, अब तो इसके ऊपर पनिशमेंट का भी असर नहीं होता है, ढीठ हो गया है।
1: क्या है, उसको डांट डूंट के और डिप्रेस कर दिया, अब बोलते डिप्रेशन से बाहर आओ,
0: तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। किसी भी संस्कार को, किसी भी बात को एक्सेप्ट करके, स्पेशली संस्कारों के लिए, फिजिकल चीज होमवर्क नहीं किया ये स्टिल इजियर कि आज नहीं किया कल से करेंगे, लेकिन ये कहना कि आज गुस्सा किया कल से नहीं करूंगा इज नॉट दैट इजी, बिकॉज इट्स अ डीप ग्रूव, एक बहुत डीप पैटर्न है जिसको मैं लेकर आया। तो जितना मैं उसके प्रति, अपने संस्कार के प्रति क्रिटिकल, गिल्ट, पनिशमेंट, मैं अपनी शक्ति को यहां से यहां लेकर आ रहा हूं।
1: तो क्या करना है,
0: एक्सेप्ट दैट इट इज फाइन।
1: हाउ कैन इट बी फाइन,
0: एब्सोल्युटली इट्स फाइन, ये बिल्कुल।
1: मैं मेहनत कर रहा हूँ पिछले 20 साल से,
0: हाँ,
1: टू इम्प्रूव
0: दिस संस्कार इज ओके, क्योंकि ये मेरा बहुत डीप पैटर्न है जो मैंने कैरी किया है, और बहुत सारी चीजें और बातें हुई होंगी जिसकी वजह से ये बना, अब ये है एंड इट्स फाइन, विच मीन्स ये क्यों है, क्यों मैं ऐसा हूँ, ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए, ये थॉट्स नहीं चलने, फुल स्टॉप।
1: तो इम्प्रूव कैसे करें,
0: नेक्स्ट मिनट है ना इम्प्रूवमेंट, तो इसके लिए अपने को कोसना नहीं है, दिस इज इम्पोर्टेंट, इट्स फाइन, ये है, इट्स ओके, ये है, क्यों है, कैसे है, मैं बुरा हूँ, दूसरों में तो नहीं है, दूसरों को मेरे संस्कार से कितनी तकलीफ होती है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही खत्म हो जाऊंगा, मेरा नहीं चेंज, दिस इज नॉट नीडेड। ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे ये सारे, ओनली डिप्लीट्स एनर्जी,
1: अपने आप को बद्दुआ देते रहते हैं।
0: सो इन वन लाइन, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई हैव दिस संस्कार, इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर मी, ये मुझे तकलीफ देता है, बट ये है, इट्स अ पार्ट ऑफ मी, इट्स फाइन, यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: आज आपसे बात करते हुए मुझे अपनी वाइज मदर की बात याद आती है, जब भी मैं बोलता था ये बच्चा ऐसे कर रहा है, भाई ऐसे कर रहा है, इट्स ओके, आप भी ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद ठीक हो जाए। मैं हमेशा कहता था तुम कमजोर हो, बहुत कमजोर है, ना डांटती है, ना गुस्सा करती है, ना कुछ, मारो दो थप्पड़ ठीक हो जाएगा। नहीं पुत्र, ठीक हो जाएगा। आठ भाई बहन सबको एक्सेप्ट करते थे।
0: मदर का एक्सेप्टेंस संस्कार सबसे हाईएस्ट होता है, लेकिन अब हम अपने मन की मदर है, वी सेड मन बच्चा है, तो हमें इस बच्चे को,
1: ये बड़ा अच्छा पॉइंट है,
0: हाँ, हम मदर,
1: मैं अपने मन का माँ बाप हूँ,
0: तो हमने कहा मन बच्चा है,
1: तो मैं मन बच्चा इतना सुन लिया,
0: हाँ, तो लेकिन
1: मन
0: किसका
1: का
0: बच्चा?
1: अच्छा रिलेशनशिप का दूसरा भाग देख रहे हैं, सी हाउ इट माइंड वर्क्स, मन बच्चा है तो मैंने सोचा हाँ ठीक है बच्चा है, हाँ, लेकिन मेरा ही अपना बच्चा है, मैं उसका पेरेंट हूँ, वाह,
0: मेरा मन है ना, तो मुझे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना है, प्यार ब्लॉक नहीं करना, हील करना है, फिर एडवाइस भी देनी है, और फिर धीरे से उस तरफ लेकर जाना है। ये सब कुछ मुझे अपने मन के साथ पहले करना है, एक बार अपने मन के साथ करना शुरू किया तब औरों के मन के साथ करना इजियर होगा।
1: तो इसका मतलब ये है, जब मैं अपने मन को हेट करने लगता हूँ, अपने आप को गालियां देता हूँ, अपने आप को पनिश करता हूँ, तो फिर मैं फैमिली के साथ भी यही करता हूँ, दुनिया नौकर के साथ भी ऐसे करता हूँ,
0: क्योंकि वो मेरा बिलीफ सिस्टम है, दिस इज द वे। अगर कोई गलती करे उसको कर्स करो, क्रिटिसाइज करो, डांटो, फिर उसको ऑर्डर करो कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था,
1: और 10 बार याद दिलाओ तुमने उस दिन ये कर दिया था गलती,
0: सो दैट्स नॉट द वे, तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो पहले एक्सपेरिमेंट अपने साथ, और जब दिखाई देगा कि अच्छा दिस इज द वे इट वर्क्स, फिर वो नेचुरली आप दूसरों के साथ करेंगे, फिर वो करना नहीं पड़ेगा, इट विल बी नेचुरल। जब आप एक्सेप्ट करेंगे अपने आप को कि हाँ संस्कार चेंज करना इतना ईजी
1: नहीं
0: होता है, मैं लॉजिकली भी कुछ सोचूं तो भी मेरे संस्कार मुझे किसी और डायरेक्शन में पुश करते हैं, मेरे कार्मिक अकाउंट मुझे किसी और डायरेक्शन में पुश करते हैं, जैसे मेरे मन को ऐसा होता है तो फिर दूसरे के मन को भी ऐसा ही होता होगा, तो एक्सेप्ट करना कितना इजी होगा। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे लॉजिकली सही कह रहे थे कोई बात, फिर भी मेरा मन उनकी बात को समझ ही नहीं पा रहा था, मेरा मन एक कम्प्लीटली अलग डायरेक्शन में जा रहा था, जो पूरी दुनिया को उस टाइम लगता कि इलॉजिकल है, लेकिन आपके मन ने कहा मेरे लिए ये कम्प्लीटली सही है, जैसे मेरा मन ऐसे वर्क करता है वैसे मेरे बच्चे का मन भी ऐसे ही वर्क करता होगा। अब मैं एज अ पेरेंट अपने बेटे को बेटी को कितना भी बोलू कि क्या राइट है, उनके मन में राइट की डेफिनेशन तो कुछ और होगी, तो शुड आई नॉट एक्सेप्ट दैट? देन व्हाई एम आई सेइंग कि वो समझते नहीं है, वो ऐसे है, वो दे आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज मन ऐसे वर्क करता है, मैंने अपने मन को देखा है ऐसे वर्क करते हुए। अपने मन के साथ ही खेलना है सारा दिन, फिर दूसरे के मन को समझना बहुत इजी होता जाएगा। तो पहले कोसना नहीं, गुस्सा नहीं होना, बुरा नहीं फील करना, गिल्ट में नहीं जाना, पूरी एनर्जी इस पे लगाना। अब नेक्स्ट परिस्थिति आएगी ना, अभी नेक्स्ट बात भी तो आने वाली है, 5 मिनट में ही आएगी कोई और बात, नाउ आई विल प्रिपेयर। अब ये बात आएगी ना, आई एम गोइंग टू डू इट कम्प्लीटली अ डिफरेंट वे, पीसफुल, लवफुल, जो भी मैंने अपने लिए तरीका देखा, मुझे उस तरह से उस परिस्थिति को अब फेस करना है। पास्ट इज पास्ट, ओवर कम्प्लीटली ऑन द नेक्स्ट मिनट। अच्छा, नेक्स्ट मिनट में हो सकता है फिर गलती हो जाए, कोई बात नहीं, पास्ट इज पास्ट, ओवर कम्प्लीटली इन द नेक्स्ट मिनट। मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी सारी एनर्जी को परिवर्तन में लगाएंगे, तो धीरे धीरे वो संस्कार चेंज हो जाएगा। और सारा दिन में ये अब पकड़ के रखना है, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, ये इम्पोर्टेंट है। दैट मोमेंट आई एम राइट, नेक्स्ट मोमेंट आई एम रेडी टू चेंज। लेकिन इस मिनट जो मैंने कहा, उस क्षण वो मेरी सोच थी, वो मेरा संस्कार था, सामने वाला जो कह रहा था वो भी राइट था। अब जैसे हमने पहले देखा कि बेटी अपनी कोई बात लेकर आती है या कोई और अपनी कोई बात लेकर आता है, वो कहेगा वो ऐसे करते हैं, वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ये किया। अब आप पेरेंट हैं, आपकी अटैचमेंट बेटी के साथ है, जैसे आपको आपकी अपनी बात राइट लगती थी, अब आपको अपनी बेटी की बात राइट लगेगी। क्योंकि ये भी हमने हमेशा देखा है, जब दो लोग होते हैं, दोनों में से जो पहले आकर अपनी बात सुनाता है, आपको उसकी बात राइट लगेगी। और अगर आप दूसरी बात सुनते नहीं, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन जैसे ऑफिस में, कहीं भी जहाँ लोगों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जो लीडर है या जो पेरेंट है, उसको ये बहुत ध्यान रखना है कि दो में से एक की बात नहीं सुननी है सिर्फ, कभी भी नहीं सुननी है। एक बहुत बायस्ड डिसीशन हो जाएगा फिर, ये बिल्कुल अनफेयर होगा उसके लिए भी जिसने आकर अपनी बात सुनाई, और उसके लिए भी जिसकी बात आपने नहीं सुनी। क्योंकि एक साइड देखकर अगर आपने अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट कर दिया और डिसीशन ले दिया, इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली इन अनदर डायरेक्शन। तो हमेशा दूसरी साइड देखनी है, क्योंकि दूसरी साइड एक अलग पिक्चर लेके आएगी कम्प्लीटली। अब जब बेटी अपनी बात लेकर आ रही है, हो सकता है आप दूसरी साइड तो नहीं देख सकते, यू कैन नॉट गो एंड आस्क द मदर इन लॉ आपको मेरी बेटी से क्या प्रॉब्लम है, यू डोंट नीड टू आस्क ऑल्सो। इम्पोर्टेंट है एज अ पेरेंट, आपका रोल है अपने बच्चे को गाइड करना, एम्पावर करके वापस भेजना। हम क्या कर रहे हैं आज, अच्छा उन्होंने तेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरी मदर इन लॉ ऐसी है तो उसको ऐसे बोलना, हस्बैंड ने ऐसा किया, हस्बैंड ऐसे, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बच्चे को हम ये कह रहे हैं कि जो तुम फील कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, तुम सही हो।
1: साथ ये भी सिखा रहे हो कि तुम बार बार एक चीज को बर्दाश्त करते जाओगे तो उनकी आदत पड़ जाएगी तुमको बोलने की, कभी फाइट फॉर योर राइट।
0: तो ये हमने कौन सी एडवाइस देकर वापस भेज दिया,
1: और झगड़ा करो।
0: हमने एक्चुअली, हमें लगता है कि हमने पावरफुल बना के भेजा, बट एक्चुअली हमने कमजोर बनाकर वापस भेज दिया। हम अगर एडवाइस थोड़ी भी इधर से इधर हो जाए तो उसका रिजल्ट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। हमें लगता है हम उसको पावरफुल बनाकर उसके घर भेज रहे हैं। पावर इज नॉट हियर कि वो जो बोलेगी जो करेगी, पावर इज हियर।
1: मदर मेरी साइड लेते हैं लेकिन डैडी मेरे हस्बैंड की साइड लेते हैं,
0: एंड वो अच्छे नहीं लगेंगे। जो हस्बैंड की साइड लेंगे या जो मदर इन लॉ की साइड लेंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसमें साइड लेने की भी बात नहीं है, क्योंकि साइड भी तब ली जाए जब हम कहें अच्छा बच्चे तुम रॉन्ग हो, तुम्हारी मदर इन लॉ राइट है, वो भी तो बात राइट नहीं है। सच क्या है, तुम भी राइट हो, माई मदर इन लॉ भी राइट है, तुम भी राइट हो, तो माय हस्बैंड भी राइट है, तुम भी राइट हो, तुम्हारा बच्चा भी राइट है। अब जो आपके पास एडवाइस लेने आए हैं, सपोज आपकी डॉटर आपके पास एडवाइस लेने आई है, तो आपका रोल है बात को सुन लेना। पूरी बात पहले सुनो, अगर सुनेंगे नहीं तो सामने वाला आप कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं है। पहले सब सुन ले, सारा सुन ले, जब तक वो अपना खाली कर ले अंदर बात, और उसके बाद एडवाइस मीन्स आप बिल्कुल सही हो। व्हाट यू आर सेइंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको तकलीफ हो रही है ना उस घर में, आपको ये सब हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल राइट हो। लेकिन एक मिनट के लिए क्या हम उनका साइड देखें कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। एक मिनट उनका देखें दृष्टिकोण। पेरेंट का रोल है या जो फैसिलिटेटर काउंसलर है उसका रोल है इनको दूसरे का पर्सपेक्टिव दिखाना कि वो भी कैसे राइट है, फिर उनको दोनों को छोड़ देना। अब वो बात को वो लोग ठीक करेंगे, थर्ड पर्सन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट चेंज रिलेशनशिप्स, वी कैन नॉट चेंज कार्मिक अकाउंट्स, ये हमारा रोल नहीं है, क्योंकि वो दो आत्माओं का बात
1: था। लास्ट का क्या था, दोनों को अपना अपना,
0: दोनों को जैसे बेटी है उसको आप मदर इन लॉ का पर्सपेक्टिव दिखा के फिर आपको छोड़ देना होगा।
1: यानी कि अगर आप उसकी एक गलती बताओगे मुझे, हाँ, तो उसकी लिस्ट में मांगो, हाँ, तो वो आपकी 10 बताएगी, तो दोनों के पास लिस्ट है,
0: है। तो दोनों को ये दिखाना। सपोज बेटी कहे कि मैं सास के साथ इतना एडजस्ट कर रही हूँ, मैं ये भी एडजस्ट करती हूँ, मैं वो भी, तो फिर आप उसको बताओ, आपको पता है आपकी सास आपके साथ कितना एडजस्ट करती है, वो आपकी इस बात के साथ भी एडजस्ट करती है, वो आपकी इस बात के साथ भी, उसने कितनी सारी बातें आपकी सहन की है। दिस ये दूसरा पर्सपेक्टिव, राधा देन से अच्छा तुम इतना एडजस्ट करती हो, तुम्हारे ऊपर इतना वहां पे टॉर्चर होता है, दिस इज दिस एम्पावरमेंट। अब दोनों को दिखाकर, क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट उनका है, रिजोल्व भी उनको करना है, हम एक ही चीज तरफ कर सकते हैं, इनको उनका दृष्टिकोण दिखा दे और उनको ये सिखा दे कि आपके दोनों की एनर्जी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप अच्छी थॉट क्रिएट करो, वो भी वहां से अच्छी थॉट क्रिएट करना शुरू कर देंगे, ये करके दोनों को छोड़ दो, द रेस्ट दे विल डू।
1: थैंक यू सो मच, लेट अस हैव गुड थॉट्स फॉर ईच अदर एंड फॉर द यूनिवर्स।
0: थैंक यू, ओम शांति।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच।
2: व्हेन द अदर पर्सन इज राइट अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव and we feel they are wrong, conflict has begun. Two souls are different, not right or wrong. Each is always right from their perspective. Empathy means to detach your own perspective and see the situation from the perspective of the other person. This creates understanding and compassion. Even if we cannot understand the other person's perspective, let us always remember that what they are saying is the truth for them. This is the first step towards conflict resolution. Accept your negative sanskar or the sanskar of the other person. Acceptance means no negative thoughts and energy of love keeps flowing. This love and power helps to create a new sanskar. Acceptance is the first step to realization and transformation.
3: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कोयल फड़क के मस्त करे, जब अलाप से दिल के वलवले दब जाएंगे, तबले की था
1: शामे फुरका, शामे फुरका का ढले।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती हैं खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योति सिंह MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं मौन के ऊपर। 100 सवालों का एक जवाब होता है, वो होता है मौन। ऐसे हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों पर आप अपने शब्दों की शक्ति का जो है उसको आप व्यर्थ ही खर्च करते हैं, जो वास्तव में आपकी चुप्पी की बात है। कभी कभी आपके सबसे शक्तिशाली शब्द आपका मौन ही है, अर्थात मौन कभी कभी वाचालता की प्रतिध्वनि बन जाती है। 100 सवालों का एक जवाब मौन होता है, परंतु 1000 सवालों से घिरे व्यक्ति का एक जवाब मौत है, जो सभी सवालों से मुक्त ही नहीं कर देती, बल्कि सवाल कर रही दुनिया को मौन कर देती है। जिसके मन में नित्य सवाल ही सवाल उमड़ते घुमड़ते हैं, वह अति दुर्बल मन का होगा। मन की दुर्बलता शरीर की दुर्बलता का कारण बनती है और शरीर की दुर्बलता अकाली मौत का कारण बनती है। जो व्यक्ति सवालों में घिरा रहता है, वह जरूर अकर्मण्य है, क्योंकि कर्मण्यता प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करती है। कर्मण्यता दिखाती है कि वह संतुष्ट है, संपन्न है और बेफिक्र है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रश्न के उत्तर जो होते हैं वो भी कि उसकी भी एक कीमत 2 वर्षों का मान है। संत तिरुपा के बारे में कहा जाता है कि उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास हर प्रश्नों का उत्तर है। यह सुनकर मालूम पुत्र नाम का एक दार्शनिक उसके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने आया। तिलोपा ने उसके सारे प्रश्न सुने और कहा कि सारे प्रश्नों के उत्तर देने को मैं तैयार हूँ, परंतु इसकी कीमत पहले अदा करनी होगी। मौलुक ने सोचा कि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर आज तक कोई दे नहीं पाया, और यह व्यक्ति हिम्मत लेकर यदि उत्तर दे सकता है तो कीमत अदा करने में कोई नुकसान नहीं है। अतः उसने कीमत देना स्वीकार किया। संत ने कहा कि कीमत है 2 वर्ष का समय जो तुम्हें मेरे साथ रहकर बिताना होगा, और इस दौरान तुम चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, चाहे कैसी भी कष्टदायक परिस्थिति क्यों ना हो। मौलुक ने यह बात भी स्वीकार कर ली। वह 2 साल तक संत के पास रुका रहा। इन 2 सालों में उसके चरित्र में, संस्कार में और उसकी सोच में काफी परिवर्तन आया। उसे अब सुख मिलने लगा और वह यह भूल ही गया कि कितना समय गुजर गया और उसके क्या प्रश्न थे। परंतु एक दिन संत ने उससे कहा कि आज 2 साल पूरे हो गए, तुम अपने प्रश्न पूछो। मालुक ने कहा कि मुझे सारे उत्तर अनुभव हो गए, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा मालुक ने क्या किया। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।
3: प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया,

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योतिषी फिर से आपको स्वागत करती हूँ और हम चर्चा अपनी जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सत्यता जो होती है, सत्यता शोर नहीं मचाती। सत्य के अन्वेषकों के लिए मौन सर्वाधिक मददगार है। मौन से उन अति सूक्ष्म आवाजों व तरंगों का वो सुना जा सकता है, वो उसको पकड़ा जा सकता है जो निरंतर आत्मा को गहन गहराई से उच्चारित या संप्रेषित हो रही है। अंतरात्मा की आवाज मौन में अस्पष्ट सुनाई देती है। आत्मा का स्वरूप शांति व शक्ति का है और शांति में टिक कर ही सत्यता की शक्ति का अनुभव व प्रयोग किया जा सकता है। सत्य की खोज में लगा पुरुषार्थी पहले स्वयं के स्वरूप का ही अनुभव कर ले, अन्यथा कस्तूरी मृग की तरह वह भटकता ही रहेगा। सत्यता व मौन में करीबी रिश्ता है, क्योंकि सत्यता शोर नहीं मचाती, लेकिन जब इसे बोलना पड़े तो यह सर चढ़कर बोलती है। सत्यता अद्वैत है, निर्विकल्प है। हाँ, संशय जो है इनके बीच संशय और भेदभाव रहित भी है। सत्यता का ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु, अर्थात माया अविद्या या फरीब का आवरण हटते ही मन बुद्धि सत्यता से जो है आलोकित तो हो सकते हैं, परंतु ऐसे आलोकित मन बुद्धि पुनः अज्ञानता के अंधकार में नहीं डूब सकते। किसी की दैहिक मृत्यु होने पर परिजन राम नाम सत्य है का उद्घोष करते हैं, अर्थात यह स्वीकार करते हैं कि एक ईश्वर का जो नाम है राम का नाम, वही सत्य और वह अस्मरण की ही आत्मा की गति सदगति कर सकती है। यह गति अर्थात मुक्ति यानी कि मोक्ष एवं सदगति अर्थात जीवन मुक्ति ही आत्मा का असली मुकाम है। और इस सत्य को जीवन जीते हुए यदि मनुष्य जो है मनुष्य आत्मा समझ ले तो उसके कर्म विकर्म ना बने, वह सदकर्मों की खेती करता हुआ पुण्यों की पूंजी जो है वो साथ ले जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्यवादी जो होता है अस्पष्टवादी होता है। यदि कभी मौन व्रत धारण किया हो तो अंदर से कभी यह नहीं बोलते रहना चाहिए कि मैं बोलूंगा नहीं। मौन एक सहज स्थिति हो, न कि आयोजित हट। मौन का भाव अंदर से बना रहे, अन्यथा बलपूर्वक रखे गए मौन से आत्मा की सहज स्वरूप एवं हट स्वरूप में झगड़ा होता रहता है। यदि मन को सत्य में निवास कराया जाए तो मौन रखना नहीं पड़ता, बल्कि मौन स्वतः आ जाता है, क्योंकि मन को विकल्पों की खुराक मिलनी बंद हो जाती है। सत्य में निवास करने से विकल्प नहीं उठते, सत्य में निवास करने से हम फिजूल के कितने ही रिश्ते संबंध वह संबंधों का जो ताना सिमटने लगता है और केवल सच्चे मित्र संबंधी ही संबंध बनाए रखते हैं। सत्यवादी अस्पष्टवादी होता है और वह वाद विवादों में कभी नहीं उलझता। यहाँ पर हम देखते हैं कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, ये कहावत है एक चुप

और 100 सुख। अर्थात चुप रहने वाला बहुत से विवाद फसाद आदि से बचा रहता है और सुख का अनुभव करता रहता है। यह भी कहावत है कि एक चुप 100 को हरावे, अर्थात यदि एक सच्चे इंसान के पीछे 100 झूठे पड़ जाए, सच्चे को झूठा साबित करने के लिए दलीलें दे हो और जो होता है हो हल्ला मचाए, तो सच्चे का मौन उन सबको शांत करने के लिए काफी है। यदि सच्चा व्यक्ति अपनी सफाई तर्क व समझाने प्रस्तुत करे तो झूठे उस पर भारी पड़ते हैं। सच्चे का साथ समय देता है, परंतु सत्यता सही समय आने पर ही प्रत्यक्ष होती है और तब तक सच्चे को गलत बातों को सहन करना पड़ता है। कहावत है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। महान जो मनुष्यों के बोल उनके गुजर जाने के बाद भी दोहराए जाते हैं, उनका स्मरण किया जाता है, परंतु झूठे मनुष्य के बोल तो पिसार दिए जाते हैं कि झूठे वक्ता के धुआंधार भाषण पर एक बार तालियां तो बज जाती है, परंतु श्रोताओं के द्वारा उन बातों को याद नहीं रखा जाता, अतः उनका लाभ भी नहीं लिया जाता। इसके विपरीत मंच से श्रोताओं को मौन दृष्टि देते हुए उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना व प्रेम के प्रकंपन देना उन्हें विस्मरणीय शांति की अनुभूति कराता है। ऐसे वक्ता के गिने चुने शब्द ही श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो मौन के ऊपर हम बातें कर रहे थे, देखते हैं हम कि गर्भ में पिछले जन्म का मौन अभ्यास का काम आता है। मृत्यु एक सत्य है, आत्मा का मृदा या मिट्टी से बनी देह को त्यागना ही मृत्यु है। मृत्यु आत्मा का नौ जीवन में जाना है, परंतु अज्ञानी इससे भयभीत होते हैं। मृत्यु के उपरांत आत्मा मौन यात्रा पर निकलती है। यदि जीवित रहते उसने समय समय पर मौन धारण कर आत्मा अवलोकन किया होता है तो मृत्यु उपरांत गर्भधारण तक की उसकी यात्रा मौन व शांति से पूरी होती है, अन्यथा आत्मा को घोर यातना का अनुभव होता है। आत्मा जब गर्भ में लगभग 3 माह के भ्रूण में प्रवेश करती है तो उसे 6 माह मौन में पूरे करने होते हैं और पिछले जन्म का मौन अभ्यास उसके काम आता है। इस दौरान उसके मन में पिछले जन्म की बातें घूमती रहती हैं। गर्भस्थ शिशु और उसकी माता 6 माह शरीर से जुड़े रहकर मौन वार्ता करते रहते हैं। दोनों को एक दूसरे की हलचल, संकल्प व भावनाओं का आभास होता रहता है। नवजात शिशु अपनी बात रोककर, मुस्कुराकर या मौन में रहकर अभिव्यक्त करता है, परंतु माता को सब समझ में आ जाता है। पालने में लेटा शिशु जब रोता है तो माँ काम छोड़कर आती है और कोई गीत या लोरी गुनगुनाकर उसे दुलारती है। शिशु को

लोरी का अर्थ नहीं पता होता, उसे तो माँ के वात्सल्य भावना चुप कराती है। रात्रि विश्राम करती माता की मौन उपस्थिति शिशु को वैसे ही बेफिक्र बनाती है जैसे कि शिव की याद एक पुरुषार्थी को बेफिक्र बादशाह बनाती है। एक तरफ हम देखते हैं यहाँ पर कि संगीत में शोर को मौन में और मौन को शांति में बदल देने की शक्ति है। मारी मीना, दिया त्रेच, अंग्रेजी में फ्रांसीसी फिल्मों की प्रख्यात पार्श्व गायिका थी। वह एक बार वह अपना जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने में पेरिस गई तो पेरिस में उसने देखा एक बड़े हॉल में मंच पर उसका स्वागत किया गया और संक्षिप्त भूमिका के बाद मारी लीना ने गाना शुरू किया। तभी हॉल के में सामने की लाइन में बैठी एक महिला की गोद के बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। श्रोताओं व आयोजकों की बड़ी झुंझलाहट हुई और स्वयं मारी लीना ने भी गाना रोक दिया। बच्चे की मां ने उसे चुप कराने का असफल प्रयास किया और फिर शर्मिंदगी सबके साथ उठकर हॉल के बाहर जाने लगी। तभी माइक पर मारी लीना की मधुर आवाज गूंजी, बहन बाहर मत जाइए, बच्चे को रोने दीजिए। वह महिला वापस आकर बैठ गई। बच्चे के शोर में ही मारी लीना ने एक भावपूर्ण मीठी लोरी गाई जिसे सुनकर बच्चा चुप हो गया और जल्दी ही सो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि गहन मौन छाते ही मारी लीना ने फिर तय गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो संगीत में वह शक्ति है जो शोर को मौन में और मौन को शांति में बदल दे। यदि आपके मन में किसी घटना से उथल पुथल मची हो तो आप एकांत में संगीत सुने, मन मौन होकर शांति में टिक जाएगा। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर जो ज्ञानमय गीत बजाए जाते हैं वह मन को मौन में और फिर शांति में लाकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराते हैं। इससे फिर सुख व शांति के सागर शिव की याद में बिकना आसान हो जाता है। यदि एक बार मन को मौन की टेव पड़ गई तो जीवन में अलौकिकता व सहजता छा जाती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। आज का हमारा विषय है 100 सवालों का एक जवाब है मौन। तो आज हम मौन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे परम धाम जो है आत्माओं व परमात्मा का मूल निवास स्थान है, जहाँ अखंड मौन का वातावरण होता है। वहाँ आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा शिव का साथ मिलता है, जिससे आत्माओं की जन्म पुनर्जन्म से आई थकान दूर होती है। जिस प्रकार एक सर्जन शरीर को अचेत करके ऑपरेशन करता है, उसी प्रकार परम धाम में शिव का सानिध्य ही उपचार है। परंतु इससे वो सतयोगी प्रारब्ध नहीं बनती जो संगम युग पर साकार में ईश्वरीय सानिध्य से बनती है। साकार में जब पुरुषार्थी आत्मिक स्थिति में मौन धारण कर शिव से योग युक्त होता है, तो वह निरोगी व पावन होता है। महाविनाश के बाद प्रकृति व बचे हुए जीव जंतु मौन व शांत हो जाते हैं, क्योंकि मौन उपचारात्मक होता है। गंभीर बीमारी के बाद मरीज जितना मौन व शांति में रहता है, उतना ही शीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले पाता है। यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि क्षमा प्रीति से हृदय में मौन व शांति का वास होता है। मौन और शांति में काफी समानता है, परंतु दोनों में अलग अलग। मौन में रहते हुए व्यक्ति अंदर से अशांत हो सकता है, और अशांत वातावरण में रहते हुए भी व्यक्ति शांति के अनुभव में रह सकता है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति है मौन। मौन में रहते हुए शांति का अनुभव करना, इसके निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अशांत वातावरण में रहते हुए भी मौन व शांति दोनों अखंडित रख सकता है। आज मनुष्यों को छोटी छोटी बातों पर चिखना चिल्लाना और अशांति फैलाना घर घर में देखने में आ रहा है। जो बच्चे ऐसे माहौल में पले बड़े हुए हों और ऐसे उपद्रवी संस्कार से ग्रसित हों, वह अपने जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं? हाँ, ऐसे बच्चे या बालिक जब ब्रह्मा कुमारियों के संपर्क में आते हैं, तो उनके लिए अशांति के जो जन्मजात संस्कार को छोड़ना आसान हो जाता है। यदि शांति चाहिए तो मतभेद, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, नाराजगी आदि के संकल्पों से मौन अर्थात दूर रहना होना पड़ेगा, और क्षमा प्रीति को विकसित करना होगा। जिस हृदय से क्षमा प्रीति का वास है, जिस हृदय में जो होता है क्षमा प्रीति का वास है, उसमें मौन व शांति का वास सहजता से होगा। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। हाँ, नमस्कार, ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप नहीं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

अनुराधा, ओ अनुराधा, क्यों री पगली? अरे इस तरह रोने से क्या होगा? ओ, तुम आंसू पोंछ रही हो, मगर मुझे हिचकियों की आवाज तो सुनाई दे रही है। अच्छा सुनो, तुम्हें एक कहानी सुना, बहुत दिन हुए एक बार

मगर सबसे ज्यादा दुख जानती हो किसे हुआ था? अनुराधा जैसी एक राधा थी, बिचारी बिचारी रो रो कर कहती थी।

लता जी, लोग कहते हैं भाई तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है। तो ना लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इन मुल्क को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम हुआ।

0: और जब सवेरा होगा तो हंसेगा इस रोने पर।
1: किसी के रोने पे हंसना अच्छा नहीं।
0: इसलिए हंसेगा कि महज एक सपना रुला गया।
1: जो सपना देखता है वही जानता है उसको टूटना क्या होता है।
0: जब सपना टूट जाए तो आंखें खोल लेनी चाहिए।
1: क्या देखने के लिए? अंधेरा?
0: नहीं, ये देखने के लिए कि रात बीत रही है, सवेरा जरूर होगा।
1: तो भी जख्म जो है उसे भरते भरते वक्त लगता है।
0: इलाज करने से जल्द भर जाता है।
1: डॉक्टर बनकर आए हैं आप?
0: ऐसे जख्म के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, दोस्त की होती है।

da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da जित का पर नाच कृष्ण कन्हैया गोपी के संग राज जावत नाच जावत दाता ते या ते ते या ते या गेंद से गेंद की दी यमुना विच नित्य कियो था नाग न थैया गोप के इंद्र चढ़ो विच ऊपर गोप सब सब हा हा थैया साय उठाय दियो गिर नक पर बंक सजावत गेंद चढ़ैया जब से मोहन मन ने माये नित्य सरित राधा राधा राधा सा धारा धारा धा सा धारा।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदार।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ सॉरी।
3: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
4: नमस्ते।
3: जय हिंद ओ पिताजी।
4: जय हिंद।
3: नमस्ते नमस्ते है सबको।
5: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।